FM 103 MHz पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 अगस्त सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 26 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की पहली

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रा स्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुगरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: और जानों के बाद स्वागत है आपका। पेश है कार्यक्रम खेती की बातें। जैविक कीटनाशी एवं इसके फायदे पर जानकारी दे रही हैं प्रतिमा वर्मा।
2: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें जैविक कीटनाशक की। कृषि में कीट और रोग हमेशा ही किसानों और वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती रहे हैं। दुनिया भर में कीट व रोग नियंत्रण के रास्ते

0: वैज्ञानिक तरीके बुरी तरह नाकामयाब साबित हो चुके हैं। महंगे कीटनाशकों का खर्च उठाना किसानों के बस की बात नहीं रही। आज ये साबित हो चुका है कि रसायनों का प्रयोग खेती में जमीन, भूमिगत जल, मानव स्वास्थ्य, फसल की गुणवत्ता और पर्यावरण हेतु बहुत नुकसानदायक है। कीटों व रोगों के नियंत्रण का एकमात्र स्थायी समाधान है कि किसान भिन्न भिन्न फसल चक्रों को अपनाए ताकि प्रकृति पर आधारित कीट और फसलों को आपसी प्राकृतिक सामंजस्य बना रहे और प्रकृति का संतुलन ना गड़बड़ाए। खेती में लगातार रसायनों के प्रयोगों से जमीन जहरीली हो चुकी है। पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जहरीले और महंगे रासायनिक कीटनाशकों और रोग नियंत्रकों के लिए किसान कर्जे के बोझ में दब रहे हैं। इससे बाहर निकालने के लिए जरूरी है कि वे खेती में जैविक विकल्पों को अपनाएं। जैविक कीटनाशक रोग और कीट को कम से कम या खत्म करने के साथ साथ जमीन की उर्वरता ही बढ़ाते हैं। यह हमारे अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों द्वारा अपने हाथों से तैयार होते हैं। इनसे किसानों की बाजार पर निर्भरता भी खत्म होती है। किसानों के द्वारा प्रयोग किया कुछ सरल और जांचे परखे तरीकों का प्रयोग कर खेती में रोगों और कीटों से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, कीट और रोग नियंत्रण और प्रबंधन हेतु आवश्यक है कि उत्तम गुणवत्ता वाले देसी बीजों और कंपोस्ट खादों का प्रयोग करें। भूमि में जैविक तत्वों को बढ़ाकर केंचुए और सूक्ष्म जीवों के अनुकूल वातावरण बनाएं। कीटों के प्राकृतिक दुश्मनों की रक्षा करें और प्रकृति में विविधता बनाए रखें। भूमि के एक हिस्से में ऐसी फसल उगाएं जो कीट भक्षक प्राणियों को आकर्षित करती है या फिर दूर भगाती है। इसके अतिरिक्त अपने खेतों का नियमित भ्रमण कर फसल का अवलोकन करते रहें ताकि समय रहते उपचार किया जा सके। अनेक प्रकार के रोगों और कीटों से नियंत्रण के लिए नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एकड़ जमीन में छिड़काव के लिए 10-12 किलो पत्तियों का प्रयोग करें। इसका प्रयोग कवक जनित रोगों, सुंडी, माहू वगैरह के नियंत्रण के लिए बहुत लाभकारी होता है। किसान भाइयों, नीम की गिरी का 20 लीटर घोल तैयार करने के लिए 1 किलो नीम के बीजों के छिलके उतार कर गिरी को अच्छी प्रकार से कूटे। कूटी हुई गिरी को एक पतले कपड़े में बांधकर रात भर 20 लीटर पानी भिगो दें। अगले दिन इस पोटली को मसल मसल कर निचोड़ दें और इस पानी को छान लें। इस पानी में 20 ग्राम देसी साबुन या 20 ग्राम रीठे का घोल मिला दें। यह घोल दूध के समान सफेद होना चाहिए। इस घोल को कीट और फफूंद नाशक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नीम के तेल का 1 लीटर घोल बनाने के लिए 15 से 30 मिलीलीटर तेल को 1 लीटर पानी में अच्छी तरह घोलकर इसमें 1 ग्राम देसी साबुन या रीठे का घोल मिलाएं। एक एकड़ की फसल में 1 से 3 लीटर तेल की आवश्यकता होती है। इस घोल का प्रयोग बनाने के तुरंत बाद करें। ऐसा नहीं करने पर तेल अलग होकर सतह पर फैलने लगता है जिससे यह घोल प्रभावी नहीं होता। नीम के तेल की छिड़काव से गन्ने की फसल में तना बंधक व सीरस बंधक बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। किसान भाइयों, करंज फलीदार पेड़ है जो मैदानी इलाकों में पाया जाता है। इसके बीजों से तेल मिलता है जो कि रोशनी के लिए जलाने के काम भी आता है। इसकी खल को खाद और पत्तियों को हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। करंज के तेल, पत्तियों, गिरी और खल का घोल बनाने के लिए मात्रा और छिड़काव की विधि भी नीम के जैसी ही है। गोमूत्र कीटनाशक के साथ साथ पोटाश और नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत भी है। इसका ज्यादातर प्रयोग फल, सब्जी और बेल वाली फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। गोमूत्र को 5 से 10 गुना पानी के साथ मिलाकर छिड़कने से माहू, सैनिक कीट और शत्रु कीट मर जाते हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में ये हुई बातें जैविक कीटनाशक की। इसी के साथ कार्यक्रम खेती की बातें से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। समय हो चुका है तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस गान का। आइए सुनते हैं कड़ी संख्या 228।

श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति किसी से छिपी नहीं है। फिर भी राजा जनक अपनी रानी सुनैना से भरत के गुणों का बखान करते हैं। रानी की मनोदशा भांप कर राजा जनक भी यही चाहते हैं कि भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि भरत ने स्वार्थ तथा निजी सुखों की ओर स्वप्न में भी नहीं ताका है। उधर श्री राम के मन में ये विचार आता है कि मिथिलापति जनक अयोध्या वासियों तथा माताओं को चित्रकूट में वन प्रवास के कष्ट सहते कई दिन बीत गए हैं। वो कुल गुरु वशिष्ठ से निवेदन करते हैं कि अब वे जो उचित समझें आदेश दें।

अभी आप सुन रहे थे तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस कांड। समय हो चुका है चिंतन कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सदाचार के महत्व पर चिंतन। आलेख और वाचन स्वर अनुपमा तिवारी का।

कोई आपकी ईमानदारी, सच्चाई, बुद्धिमत्ता के बारे में नहीं जान सकता जब तक आप अपने कार्यों से उदाहरण प्रस्तुत ना करें। प्रत्येक परिवार तथा उसके सदस्य एक समाज के अंग हैं। इस समाज से संबंधित कुछ नियम और मर्यादाएं हैं। इन मर्यादाओं का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। सत्य बोलना, चोरी न करना, दूसरों का भला करना और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, स्त्रियों का सम्मान करना, कुछ ऐसे ही गुण हैं जो सदाचार के अंतर्गत आते हैं। सदाचार का अर्थ यह है कि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण किए बिना अपना गौरव बनाए रखे। सदाचार का अर्थ है उत्तम आचरण। सदाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, सत और आचरण। सदाचार शब्द में सत्य आचरण की ओर संकेत किया गया है, ऐसा आचरण जिसमें सब सत्य हो और बिल्कुल भी असत्य ना हो। जिस व्यक्ति में सदाचार होता है उसे संसार में सम्मान मिलता है। सदाचार की चमक के आगे संसार की समस्त दौलत की चमक भी फीकी पड़ जाती है। सदाचार एक ऐसा अनमोल हीरा है जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। ईसा मसीह, गुरु नानक, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्या सागर तथा महात्मा गांधी के पास कोई दौलत नहीं थी, फिर भी वे बादशाह थे। उनके पास सदाचार रूपी अनमोल हीरा था। जब वे जीवित थे तो उन्हें पूरे विश्व का सम्मान प्राप्त था। सदाचार और सद्व्यवहार के कारण ही वे संसार में हमेशा के लिए अमर हो गए। जहाँ सदाचार मनुष्य को सम्मान दिलाता है, वहीं दुराचार मनुष्य को घृणा दिलाता है। भारत में ही नहीं अपितु पूरे संसार में राम की पूजा होती है। राम जैसे सदाचारी का उदाहरण संसार में नहीं मिलता। सदाचारी बनना आसान नहीं है। सदाचारी बनने के लिए घोर प्रयत्न करने पड़ते हैं। सदाचार के बीज बचपन में ही डाले जाते हैं, इसीलिए भारतीय जीवन शैली में ब्रह्मचर्य आश्रम की व्यवस्था थी। 8 से 25 वर्ष की आयु तक बालक गुरु के पास रहकर ही शिक्षा ग्रहण करता था और सदाचार के गुणों पर चलने का अभ्यास करता था। वह विद्वान लोगों की संगति में रहता और बुरे वातावरण से दूर रहता था, क्योंकि अच्छे चरित्र के निर्माण में वातावरण और संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। सत्संगति अगर एक वृक्ष है तो सदाचार उस वृक्ष का फल है। इसलिए बुरी संगति की अपेक्षा अकेले रहना अच्छा है। एक तरफ सत्संगति तो दूसरी तरफ अभ्यास तथा प्रभु की सहायता से धैर्य, संतोष, अहिंसा, संयम, क्षमा, मन और वचन से एकता, विद्या, विनम्रता और क्रोध न करना आदि सदाचार के गुण उत्पन्न होते हैं। परिवार, समाज तथा देश की उन्नति के लिए प्रत्येक मनुष्य में सदाचार के गुण अनिवार्य रूप से होने चाहिए।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। समय हो चुका है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भेंट वार्ता डॉक्टर विजय कुमार सिंह से, स्वस्थ किडनी स्वस्थ सेहत।

0: मित्रों, किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और हमारा किडनी सही प्रकार से कार्य कर रहा है तो आप यकीन मानिए आप स्वस्थ हैं। और वर्तमान समय की हम बात करें तो आजकल किडनी की बीमारी हर जगह दिखलाई पड़ रही है, यहाँ तक कि हमारे युवा वर्ग भी इस बीमारी से अछूता नहीं है। तो आज का हमारा विषय है स्वस्थ किडनी स्वस्थ सेहत। क्या कारण है कि किडनी की बीमारी अधिक बढ़ रही है, लक्षण क्या है और खान पान में किन किन चीज़ों का सेवन करें और कौन कौन चीज़ों से हम दूरियां बनाएं ताकि हमारी किडनी स्वस्थ रहे और हम स्वस्थ रहें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार सिंह। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, ये किस प्रकार कार्य करता है?
1: हमारे शरीर में मुख्यतः दो किडनियाँ होती हैं जो बीन के आकार की होती हैं। हमारी किडनी के मुख्य कार्य में आता है खून की सफाई करना, जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट हैं।

0: जो हमारे शरीर में गंदगी जनरेट होती है उसकी सफाई करना। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है हमारे शरीर में एक्सेसिव जो पानी होता है उसको बाहर निकालना। और तीसरा कार्य होता है हमारे शरीर में मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखना। चौथा काम होता है हमारी किडनी कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसमें मुख्यतः एक इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन होता है जो कि हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा को मेंटेन करने में मदद करता है।
1: आजकल की वर्तमान जीवन शैली पे हम थोड़ी सी बातचीत करें। हमारा खान पान बिगड़ गया है और हमारे काम करने के तरीके में भी काफ़ी परिवर्तन आ गया है। लगातार हम बैठ कर कार्य करते हैं और बहुत सारी बीमारियों के हम शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे में किडनी की जो बीमारियां हैं उसके संकेत क्या हैं और क्यों ये बीमारियां इतनी बढ़ती जा रही है और हमारे युवा वर्ग भी इससे ग्रसित होते जा रहे हैं?
0: एक्चुअली आज के समय में जितने भी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं जैसे खान पान से संबंधित और लाइफस्टाइल में हमारे जो चेंजेज आए हैं वो सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो उससे रिलेटेड ही किडनी की बीमारी भी बढ़ रही है। जैसे अभी किडनी की बीमारी की वर्ल्ड वाइड या इंडिया में कहें सबसे मुख्य कारण है मधुमेह, डायबिटीज। तो डायबिटीज अगर बढ़ता है तो साथ में वो किडनी की बीमारी को भी बढ़ाता है। हाइपरटेंशन है, साथ में मोटापा है, तो ये सब खान पान से रिलेटेड बीमारियां ही हैं। और किडनी की बीमारी और अंगों की बीमारियों से भी जुड़ी होती हैं, जैसे अगर हमें हार्ट का दिक्कत होता है, लीवर का दिक्कत होता है, तो उससे भी किडनी पे प्रभाव पड़ता है। बाकी बीमारियां जैसे बढ़ रही हैं उसी से रिलेटेड किडनी की बीमारी भी बढ़ रही
1: है। हमारे युवा साथी इस बीमारी से क्यों ग्रसित होते जा रहे हैं? पहले ये बीमारियां एक खास उम्र के लोगों को हुआ करता था, लेकिन युवा साथी भी इस बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं।
0: इसका दो कारण है। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज युवाओं में भी बढ़ रहा है। अभी हम लोग जल्दी इस बीमारी को पता लगा पा रहे हैं, अर्ली डायग्नोसिस हो रहा है फैसिलिटी बढ़ने की वजह से, तो ये बीमारी अर्ली भी पता चल रही है। शायद ये बीमारी पहले युवाओं में या मुख्य तौर पे पता नहीं चलती थी ज़्यादा केस में, तो अभी अर्ली पता चल जाता है। और दूसरा कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज युवाओं में भी बढ़ रहा है, अभी काफ़ी कम उम्र में भी लोगों को हार्ट की बीमारी और डायबिटीज होने का संभावना बढ़ रहा है, उससे किडनी की दिक्कत भी सामने आ रही है।
1: पहचान क्या है किडनी की बीमारी का, इसके प्रमुख लक्षण क्या है ताकि हम सावधान हो जाएं और इसका उपचार हम शुरू कर दें?
0: एक बहुत बड़ा इशू है, या उसको कह सकते हैं अभी लैकिंग है हमारे फील्ड में, कि किडनी की बीमारी बहुत देर से पता चलती है। एक्चुअली इसमें कोई सिम्टम्स जो होते हैं किडनी की बीमारी में, लक्षण जो होते हैं बहुत देर से आते हैं, फिर भी जो लक्षण आते हैं उसमें सामान्य लक्षण है भूख का कम लगना, सुबह सुबह आप जब ब्रश करते हैं तो जी मिचली होना या उल्टी का होना, थकावट और कमजोरी लगना, पैरों में सूजन का आना या आँखों के चारों तरफ सूजन का आना, पेशाब में जलन का होना या पेशाब संबंधी कोई भी समस्या किडनी की दिक्कत को बढ़ा सकती है। अगर किसी के किडनी में पथरी की शिकायत या पेशाब की नली में पथरी रहती है तो उससे दर्द हो जाता है कभी कभी, तो उससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं हमारे बैक साइड में पीछे में दर्द होता है। एक और लक्षण है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। अगर किसी को मुख्यतः ब्लड प्रेशर की बीमारी हमारी 50 साल के बाद होती है, 40 साल के बाद होती है, लेकिन अगर किसी को काफ़ी यंग एज में ब्लड प्रेशर बढ़ा रह रहा है और ब्लड प्रेशर 2-3 दवाओं से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मोस्टली वो उसको किडनी की बीमारी हो सकती है। किडनी की बीमारी को पता लगाने के लिए जांच काफ़ी सिंपल टेस्ट है जिसको किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। उसमें सीरम, क्रिएटिनिन, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब जांचें आती हैं और एक रूटीन यूरिन की जांच होती है। ये पहला टेस्ट है हमारा। अगर इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आता है तो हम एक लोग किडनी का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जो काफ़ी सिंपल टेस्ट है और कहीं भी आपका हो सकता है किसी भी जगह पर। क्रिएटिनिन एक मेज़र करने का तरीका है किडनी के बीमारी का, वो एक वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी में जमा होता है। वैसे हजारों वेस्ट मटेरियल बॉडी में जमा होते हैं, बट क्रिएटिनिन एक स्टैंडर्ड तरीका है हमारे किडनी के फंक्शन को मेज़र करने का। अगर ये बढ़ता है तो हम लोग मानते हैं कि किडनी की परेशानी है लोगों को। इसका नॉर्मल लेवल 0.6 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है जी। अगर इससे ज़्यादा है, कम है तो प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा है तो इसका मतलब किडनी की बीमारी किसी न किसी वजह से है
1: जी। अब डॉक्टर साहब, हम बात करें उपचार की। जांच के उपरांत ये मालूम पड़ता है कि हमें किडनी की बीमारी है, हम समस्या से ग्रसित हैं, तो इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है, क्या इसकी दवाइयां लगातार

0: लेनी पड़ती है या फिर इसके आरंभिक लक्षण दिखने के बाद कुछ समय तक दवाइयाँ लेनी पड़ती है और हम ठीक हो जाते हैं?
1: जी, ये डिपेंड करता है कि आप हमारे पास किस स्टेज में आते हैं, किडनी बीमारी के किस स्टेज में आते हैं। और इस बार हमारा वर्ल्ड किडनी डे मार्च में जो मना रहे हैं हम लोग, उसका बेसिक उद्देश्य भी यही है कि हम लोग जो भी किडनी के उपचार है वो सामान्य जनता तक पहुंचा सकें, सभी लोगों तक पहुंचा सकें, और दवाइयां हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकें सभी लोगों तक, जो सबको एक साथ मिल सके। तो इसमें अगर अर्ली स्टेज में किडनी डिजीज एक्यूट किडनी डिजीज होता है और क्रोनिक किडनी डिजीज होता है। एक्यूट किडनी डिजीज के इनफाइनाइट कॉज है, तब बहुत सारे कारण हैं, तो उसको अगर उस कारण को ठीक किया जाता है तो ये बीमारी पूरी तरह से सही हो सकती है। क्रोनिक किडनी डिजीज, अगर कोई भी आपका किडनी का फंक्शन का टेस्ट 3 महीने के ऊपर अगर गड़बड़ाता है, 3 महीने से लगातार वो बीमारी चल रही है, तो सामान्यतः ये माना जाता है कि ये रिवर्सिबल नहीं होगा। तो फिर उसको हम लोग कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास जल्दी कोई मरीज आ जाता है तो उसको हम लोग किडनी के फंक्शन को डिक्लाइन को हम लोग डिले कर सकते हैं दवाइयों के द्वारा। अभी रिसेंट हाल फिलहाल के सालों में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आई हैं जिससे हम लोग किडनी के डिजीज के बढ़ने को रोक सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, किडनी हमारी स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहें, और किन किन चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए और किन किन चीज़ों से हमें दूरियां बनानी चाहिए?
1: खान पान की बात करें तो जो भी लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज है सबके लिए एक ही एडवाइस है, हमें अपने खाने में फाइबर की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, वसा की मात्रा को कम करना चाहिए। नमक, हमें रिकमेंडेड नमक है कि सोडियम को 2300 मिलीग्राम पर डे लेना है, मतलब एक छोटा चम्मच नमक पर डे लेना है। तो सॉल्ट को कम करना है हमारे खाने में, वसा को कम करना है, फाइबर को बढ़ाना है, और जो हमारा कैलोरी है उसको कम करना है। व्यायाम सभी बीमारियों के लिए ज़रूरी है, जो रिकमेंडेड हमारा है कि 40 मिनट पर डे का एक ऐसा एक्सरसाइज होना चाहिए जिसमें हमें पसीना आ जाए, मेहनत करना पड़े, और वो वीक में कम से कम 5 दिन होना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, हमारे सुनने वाले सभी साथियों को आप क्या कहेंगे कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ताकि आपकी किडनी स्वस्थ रहे, और आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार, समाज और देश भी स्वस्थ रहेगा।
1: जी, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनको भी अगर मधुमेह की बीमारी है या किसी को परिवार में किडनी की दिक्कत है, तो उसको अलर्ट रहना चाहिए अपनी किडनी को लेके, उसको रेगुलर किडनी फंक्शन टेस्ट कराते रहना चाहिए, जैसे कि 3 महीने पे, 6 महीने पे, इस तरह से।
2: स्वास्थ्य चक्र के तहत आप सुन रहे थे स्वस्थ किडनी स्वस्थ सेहत, इस विषय पर भेंट वार्ता डॉक्टर विजय कुमार सिंह से। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। आइए, समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस ली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार।

तैयार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। दोनों पक्ष अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर भी सहमत हुए। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए उज्बेकिस्तान को भारत के विस्तारित पड़ोस का महत्वपूर्ण अंग बताया। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंध कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई वार्ता उसके लिए समझौता करने और उस पर अमरीकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमेरिका की चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खाड़ी सहयोगी कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के आग्रह पर ईरान के खिलाफ नए बड़े हमले करने के आदेश को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। असम में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में आए 7 जिलों चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाहाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर में 380 गांव जलमग्न हैं। प्रशासन 38 राहत शिविरों का संचालन कर रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब से बस कुछ ही पलों के बाद 7:15 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम और राग रंग। हम आपको सुनवाएंगे बांसुरी वादन। स्वर सरिता कार्यक्रम का समय है 7:45। कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह व मिताली सिंह। सुबह के 8 बजे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज 8:15 रिले होंगे। 8:30 पर रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 8:45 पर पुराने फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गुंजन। आज इस कार्यक्रम को हमने सजाया है किशोर दा के गीतों से। सुबह के 9 बजे कार्यक्रम आप सुनेंगे जोहार पलामू। 9:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुबह के 10 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

दिन के 1 बजे हिंदी समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 1:20 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। दिन के 2 बजे दिल्ली केंद्र से पुनः आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर हिंदी समाचार। 2:30 विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से, 2:55 पर रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 3 बजे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रमों के तहत आप सुनेंगे सखी सहेली। शाम 4 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 4:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे। शाम 5 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार और 5:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे। शाम 5:30 पर हमारे स्टूडियो से पुनः होगा कार्यक्रम विवरण। पाँच बजकर 35 मिनट पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी। विधि के क्षेत्र में रोजगार और बाल श्रमिक ज्वलंत समस्या पर चर्चा होगी। साथ ही आप वार्ता सुनेंगे इंटरनेट विशेषताएं और इसके लाभ पर। शाम 6 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 6:02 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा। 6:30 पर आप सुनेंगे किसानवाणी कार्यक्रम। शाम 7 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आज कल। 7:15 पर आप सुनेंगे फिल्म गीतों का कार्यक्रम एक रंग। 7:45 पर खुला आकाश कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे वार्ता गहराता जल संकट। वार्ताकार होंगे राजा लोक सिन्हा। रात्रि 8 बजे दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा। 8:15 पर फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। रात्रि 8:30 देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात्रि 8:45 पर दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 9 बजे अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 9:15 पर दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। रात्रि 9:30 विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे मुंबई केंद्र से। रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल और कुछ फिल्मी गीत रजनीगंधा कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे। रात्रि 11 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले होंगे। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और हमारी सभा की समाप्ति होगी रात्रि के 11:10 पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। समय हो चुका है शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम और राग रंग का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बांसुरी वादन के एस गोपाला कृष्णन से।

अभी आप सुन रहे थे जागरण कार्यक्रम के तहत के एस गोपाला कृष्णन को। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर सरिता। कलाकार है भूपेंद्र सिंह व मिताली सिंह।

स्वर सजता कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह व मिताली सिंह को। इसके साथ ही आज का सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है समाचारों का। आइए हम आपको दिल्ली के अंदर लिए चलते हैं, जहां से आप सुनेंगी समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज, और 8:30 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे 8:45 पर।

0: साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी की मांग की है।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के ये नियम बड़े सख्त हैं, और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी।
0: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
2: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है, ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: Deeply appreciate that the government and people.
3: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय सैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
4: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
5: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन किया है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
6: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
7: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहाँ लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलिथिन सीट और अन्य मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
8: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कचार, दिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वीर शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुन मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और ऋतिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
9: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं, छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजर अहमदाबाद पर, भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट, डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Parliamentary committee criticizes Meta over removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook, seeks apology from CEO Mark Zuckerberg. NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi this morning. Supreme Court says state governments can close or withdraw FIRs against students involved in recent protests. U.S. President Donald Trump warns Iran of last chance to reach an agreement with Washington. Tehran denies reports of negotiations. And Indian shuttlers to begin their campaign at Korea Masters 2026 badminton tournament today. And now the news in detail. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. BJP MP and chairperson of the committee, Nishikant Dubey, criticized Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta CEO Mark Zuckerberg to apologize for this, and if he does not do so, then the safe harbor protection under Section 79 should be withdrawn from him.
11: ये माफी नामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए।
10: Prime Minister Modi has underlined that talents are honed and refined through continuous effort and dedication. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi noted that today the youth of the country are imbibing these very qualities and illuminating India's name across the world. The National Democratic Alliance or NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting known as Mangal Milan will be held in the Parliament House this morning. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an aim to demonstrate complete alliance unity. The meeting last took place on the 28th of July. MPs from Trinamool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India, NCPI, had also participated in the alliance meeting. The second meeting of the BRICS Anti-Corruption Working Group and the BRICS Expert Network on Asset Recovery will begin in Hyderabad, Telangana today. Secretary of Department of Personnel and Training, Rachna Shah, will inaugurate the meeting. This meeting builds upon the outcomes of the first BRICS Anti-Corruption Working Group meeting held virtually in June. More from our correspondent.
12: The two-day meeting is being organized in line with the theme of India's BRICS presidency, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The event is expected to witness participation from BRICS member countries along with senior policymakers, experts, practitioners and representatives of anti-corruption and law enforcement agencies. During the meeting, BRICS members will deliberate on strengthening international cooperation for asset recovery, combating cross-border corruption, enhancing transparency and accountability in governance. With Rishu Jaiswal, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
10: The government has revised the special additional excise duty on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel or ATF. The government has notified the new rates for the next fortnight, saying that the export duty on diesel will now be 25.5 rupees per litre, including 1.5 rupees road and infrastructure cess, while the export duty on ATF has been raised to 22 rupees per litre. Meanwhile, the export duty on petrol has been increased to 3.5 rupees per litre. The revised rates notified by the Finance Ministry came into effect yesterday. However, there is no change in the existing excise duty on petrol and diesel meant for domestic consumption. The Supreme Court has clarified that the Delhi government and various state governments are free to close or withdraw FIRs registered against protesters involved in the recent student protests at Delhi's Jantar Mantar and elsewhere in the country. We have a report. Moving on, a three-judge bench led by Chief Justice Suryakant explained that its 28th of July order permitting the prosecution of protesters with criminal antecedents was intended to apply only to those accused of grave and heinous offences. Families of injured police officers had also approached the top court seeking action against protesters for allegedly assaulting police personnel. Ministry of Road Transport has provided a draft notification proposing an amendment to the Central Motor Vehicles Rules 1989 to bring two-wheeled road ambulances for emergency medical care. The ministry underlined that the proposed emergency ambulance service will support faster emergency response and improve access to emergency medical care in remote areas. Food regulator FSSAI has prohibited Dabur India from selling many products such as honey, cow ghee and edible oils using 100% claims, saying that such labeling is against the law. In a social media post, the Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has informed that it has issued a prohibition order to Dabur India Limited over the sales of food products carrying misleading 100% claims, including honey, apple cider vinegar, virgin coconut oil, sesame oil, cow ghee, coconut water, coconut milk and other such items. Dabur India said in a statement that the company has received the FSSAI notice and are in the process of checking the content mentioned in the notice on the website. Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupinder Yadav has announced the designation of Glaw Lake in Arunachal Pradesh as India's 101st Ramsar site. In a social media post, the minister described the development as an important step for biodiversity conservation, water and climate security, and sustainable livelihoods. Mr. Yadav said that this pristine freshwater lake in the eastern Himalayas is a biodiversity hotspot nestled within the Kamlang Tiger Reserve and Wildlife Sanctuary. He said every new Ramsar site strengthens the government's resolve to protect nature while securing the future of communities that depend on these invaluable ecosystems. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Morning News. India and Uzbekistan have agreed to expand their strategic partnership by strengthening cooperation in critical minerals, mining, trade, energy, infrastructure, defense and education during high-level talks held in New Delhi yesterday. The discussions took place during the four-day official visit of Uzbekistan's Foreign Minister Bakhtiyor Saidov, who met External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. On foreign policy issues, Dr. Jaishankar noted that India and Uzbekistan share similar perspectives on terrorism, extremism and drug trafficking. He appreciated Uzbekistan's firm stand against terrorism, stating that both countries have consistently maintained a policy of zero tolerance towards terrorism, including cross-border terrorism and terror sanctuaries.
2: Deeply appreciate that the government and people of Uzbekistan have taken a strong stand on combating terrorism in all its forms and manifestations. You have your own challenges and your own experiences, but we know that both of us have shown zero tolerance towards sanctuaries and towards cross-border.
10: The India Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall in Meghalaya and Arunachal Pradesh today and tomorrow. The weather system is likely to impact several districts of Assam, particularly those bordering the two neighboring states. More from our Assam correspondent.
8: The IMD has stated that the resulting weather conditions may affect Kachar, Dimahasao, West Karbianglong, Biswanath, Lakhimpur, Dhemaji and Tinsukia districts of Assam. The IMD has also issued a yellow warning for most districts of Nagaland bordering Assam, which could impact Saraideo, Sivasagar, Jorhat and Golaghat districts. The Assam State Disaster Management Authority has asked people in the concerned districts to take all necessary precautions and remain vigilant. Meanwhile, with the flood situation improving and flood waters receding in the worst affected districts of Sivasagar, Jorhat, Saraideo and Golaghat, most inmates of the relief camps have returned to their homes. However, around 11,000 people continue to stay in relief camps in Sivasagar district. With two more flood-related deaths reported yesterday, the death toll in the state has risen to 87. Rakesh Dole, Akashvani News, Guwahati.
10: In Orissa, the flood situation is steadily improving with water levels receding in major rivers and their tributaries. Chief Minister Mohan Charan Manjhi has announced an initial relief package of 110 crore rupees for flood-affected people. More from our correspondent.
7: The flood situation in Odisha is gradually returning to normal as water levels in major rivers continue to recede. The Hirakud Dam authorities have closed four more sluice gates and flood water is now being released through 13 gates in a regulated manner. Relief, rescue and rehabilitation work is continuing on a war footing, especially in Baleswar, Bhadrak and Jajpur districts where people are in a very difficult situation. The state government says food, safe drinking water, health care, veterinary services, polythene sheets and other essential assistance are being provided to affected families. As flood waters recede, schools have reopened in several districts with cleaning and restoration underway before regular classes resume. Chief Minister Mohan Charan Manjhi has announced an initial relief package of 110 crore rupees and directed officials to provide immediate financial assistance based on the preliminary damage assessment. Meanwhile, the India Meteorological Department has issued a warning to a number of districts for heavy rainfall, with very heavy rainfall in Mayurbhanj districts for today. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
10: In Kerala, an orange alert of heavy rainfall has been declared in 12 of 14 districts for today. More details from our Thiruvananthapuram correspondent.
13: Orange alert indicating very heavy isolated rainfall has been issued for all districts in Kerala except Thiruvananthapuram and Kollam. Yellow alert indicating heavy isolated rainfall is in effect for Thiruvananthapuram and Kollam districts. A total of 353 relief camps are functioning across the state with 13,496 people. A total of 56 houses have been completely destroyed while 499 houses have been partially damaged. 16 deaths have been reported and 5 people remain missing. Meanwhile, the IMD has informed that the intensity of rainfall across the state is expected to decrease from Wednesday onwards. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
10: According to the Met Department, parts of Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh are also likely to receive moderate to heavy rainfall during the day. In international news, U.S. President Donald Trump said Iran has been given a last chance to reach an agreement with Washington, claiming that a planned military strike was paused after Iran and several Gulf countries urged diplomacy. Speaking at the Oval Office, Trump said the U.S. was prepared to launch a major attack on Iran, but delayed the action after receiving calls from Saudi Arabia, UAE, Qatar, and Iran to continue discussions.
14: We're going to hit them very hard yesterday, harder than any attack, I think I can say, General, from a point of knowledge, any attack since World War II. That's pretty big. And we were set to go, and they called. And in addition, Saudi Arabia called, and UAE called, Qatar called. I called some numerous people.
10: However, Iran's foreign ministry spokesperson Ismail Baghaei denied reports of direct or indirect negotiations with the U.S., saying Tehran was not holding talks with Washington. On to sports now. India's badminton stars will begin their campaign today at the Korea Masters 2026, a BWF Super 300 tournament beginning today in South Korea. The tournament will run until the 9th of this month. All eyes will be on 17-year-old Tanvi Sharma, who enters the tournament after winning her first BWF World Tour title at the Taipei Open. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
15: Thank you, Saira. BJP loses Bankipur bastion, fails to unseat Congress in Dathia, writes Hindustan Times, while the Hindu headlines, Prashant Kishore breaches BJP's fortress in Bankipur. Delhi court acquits Brij Bhushan Sharan Singh in wrestler sexual harassment case, writes the Statesman. Delhi girl faces rape threats, online abuse after viral video at CJP protest, writes the Tribune. The Tribune also carries an exclusive as Kavar Yatra returns, devotion disruption travel side side by side. Business Standard writes, tax bill to widen steps to attract foreign investment. The Indian Express quotes the Supreme Court in its headline, live-in relationship a reality, law on cruelty to partner supplies. And finally, Spider-Man, brand new day, scored the largest opening weekend in Hollywood history, beating Marvel's Avengers Endgame. Financial Express writes, Spider-Man lands top opening weekend ever with $360 million. And with that, it's back to you, Saira.
16: Thanks, Chagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliamentary committee criticizes Meta over removal of Prime Minister Modi's video from Facebook, seeks apology from CEO Mark Zuckerberg. NDA Parliamentary Party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi this morning. Supreme Court says state governments can close or withdraw FIRs against students involved in recent protests. US President Donald Trump warns Iran of last chance to reach an agreement with Washington. Tehran denies reports of negotiations. And Indian shuttlers to begin their campaign at Korea Masters 2026 badminton tournament today. And with that, we end the morning news. Have a great day.
17: आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार बस थोड़ी ही देर में।
18: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
19: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
20: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
19: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
17: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी जेएसएससी विवाद की सीबीआई जांच की मांग तेज, भाजपा ने सरकार को घेरा। 7 अगस्त को विधानसभा घेराव करेंगे आक्रोशित छात्र। राज्य के आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में स्थापित होंगी 11 डेटा एवं एआई लैब। केंद्र सरकार ने रोजगार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दी मंजूरी। रामगढ़ के लुकैयाटांड़ में आज दिग्गज नेता स्वर्गीय शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर भव्य कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल। देवघर श्रावणी मेला की पहली सोमवारी पर रिकॉर्ड 3,17,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। देवघर और बासुकीनाथ के बीच आज से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। और रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आज डुरंड कप का बड़ा मुकाबला। जमशेदपुर एफसी और एससी दिल्ली के बीच होगी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर झारखंड के छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। छात्र संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर आगामी 7

0: आप ब्रिगेड में एक आंदोलन भी आपको करना होगा। कहा नहीं मामला खत्म हो रहा है, जब एससी का किसी की भी सरकार हो, या हेमंत सोरेन की सरकार हो, या भाजपा की सरकार हो, या गठबंधन की सरकार हो, जब एससी विवाद में रहता है अब नहीं सहेगा, क्योंकि भारत का युवा जातिया है।
1: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने झारखंड में युवाओं के मुद्दों और परीक्षा गड़बड़ियों को लेकर विपक्ष पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी कहा है कि युवाओं के आंदोलन को देखते हुए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए।
2: युवा किसी देश की ताकत होते हैं और उस ताकत को ही अगर आप तोड़ने का प्रयत्न करें, इससे दुखद ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। वही हालत आज झारखंड की है, क्योंकि जेएसएससी या जेपीएससी एक प्रशासनिक दक्षता के साथ कार्य करने वाली टीम होती है, तो वो टीम यदि इस तरीके से आएगा तो वो राज्य को खोखला भी करेगा और राज्य का नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती।
1: झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रांची, धनबाद और हजारीबाग सहित 18 ठिकानों पर छापेमारी कर लैपटॉप, एडमिट कार्ड और कई ओएमआर शीट्स बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी अभय तिवारी द्वारा कई बड़ी परीक्षाएं पास कराने के दावों की जांच के लिए एसआईटी ने परीक्षा एजेंसियों से रिकॉर्ड मांगे हैं। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन एलख्यांगते से लगातार कल चौथी बार करीब 7 घंटे पूछताछ की। उन पर बिना सदस्यों के हस्ताक्षर के रिजल्ट जारी करने और ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम सौंपने का आरोप है। हालांकि ख्यांगते ने सभी आरोपों को खारिज किया है। केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत झारखंड के आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 11 डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और 8 एआई फेलोशिप भी स्वीकृत हुई है। इससे छात्रों को रोजगार और नवाचार के अवसर मिलेंगे। रांची के सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बरियातू में नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। माई भारत की ओर से हुए इस कार्यक्रम में कई स्कूल कॉलेजों के युवाओं ने हिस्सा लिया। अतिथियों ने युवाओं से नशामुक्त समाज बनाने की अपील की। सभी ने नशामुक्ति की शपथ भी ली। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
3: सावनी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
4: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
5: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोले।
4: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड आंदोलनकारी और पद्मभूषण से सम्मानित स्वर्गीय शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर आज रामगढ़ के लुकैयाटांड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस अवसर पर एक विकास मेले का आयोजन कर परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं।
6: माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार के इस कार्यक्रम के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण और व्यवस्था बनाए रखने जिला पुलिस

0: सब प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस क्रम में रोट लाइन कार्यक्रम स्थल के चारों ओर पुलिस पदाधिकारियों मजिस्ट्रेटों की जो प्रतिनियुक्ति की गई है। रोड इसके अलावा कुछ अलग अलग प्रकार के वाहनों के लिए पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं।
1: देवघर के राजकीय श्रावणी मेला 2026 की पहली सोमवारी पर आस्था का नया रिकॉर्ड बना है। बाबा वैद्यनाथ धाम में रिकॉर्ड 3,17,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। उपायुक्त सौरभ भुवानिया ने बताया कि 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाह्य और 1 लाख से अधिक ने आंतरिक अर्घा का उपयोग किया।
2: जो मजिस्ट्रेट्स हैं, सहायता केंद्र है, सब अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। पानी और जो भी मेडिकल एड कोई भी सुविधा है वो हम लोग दे रहे हैं। लास्ट का जो कुछ 1 किलोमीटर बचता है उसमें पेशेंट्स को लूज नहीं करें और बहुत अच्छे से यहाँ पे मंदिर में आके वो जलार्पण करें। और हम लोगों ने भी यहाँ पे क्लियरली मैसेज दिया हुआ है कि जो बिहेवियर है सबको अपने बेस्ट बिहेवियर पे रहेंगे, कोई पेशेंट्स प्रशासन पुलिस से लूज नहीं करेगा।
1: राज्य सरकार आज से देवघर और बासुकीनाथ के बीच बहुप्रतीक्षित हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर रही है। इस सेवा के शुरू होने से श्रावणी मेले में आने वाले तीर्थयात्री अब हवाई मार्ग से बाबा वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ के सुलभ दर्शन कर सकेंगे। इससे बुजुर्ग और बीमार श्रद्धालुओं को विशेष सुविधा मिलेगी। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राज्य के पलामू, चतरा और बोकारो सहित कई जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग की ओर से इन इलाकों में वज्रपात और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आज डुरंट कप के मुकाबले में जमशेदपुर एफसी और एससी दिल्ली की टीमें आमने सामने होंगी। मैच दोपहर बाद 4 बजे से शुरू होगा, जिसके लिए दर्शकों का प्रवेश 2 बजे से ही शुरू हो जाएगा। आयोजकों के अनुसार लगभग 30,000 दर्शकों के आने की संभावना है। सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेपीएससी विवाद मामले में सीआईडी द्वारा 5 जिलों के 18 ठिकानों पर छापेमारी की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, अभय तिवारी की टीम कोचिंग सेंटर ले जाती थी ओएमआर शीट, जहां तैयार होता था जवाब। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जेपीएससी और जेएसएससी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए स्टेडियम में निकाला फ्लैशलाइट मार्च। हिंदुस्तान के शब्द हैं, कोडरमा में आईबी का छापा, 6 संदिग्ध लिए गए हिरासत में। दैनिक जागरण लिखता है, रांची एयरपोर्ट पर 3 उड़ानें घंटों प्रभावित, विमान में तकनीकी खराबी से यात्री परेशान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी जेएसएससी विवाद की सीबीआई जांच की मांग तेज, भाजपा ने सरकार को घेरा, 7 अगस्त को विधानसभा घेराव करेंगे आक्रोशित छात्र। राज्य के आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में स्थापित होंगी 11 डेटा एवं एआई लैब। केंद्र सरकार ने रोजगार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दी मंजूरी। रामगढ़ के लुकैयाटांड में आज दिग्गज नेता स्वर्गीय शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर भव्य कार्यक्रम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल। देवघर श्रावणी मेला की पहली सोमवारी पर रिकॉर्ड 3,17,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। देवघर और बासुकीनाथ के बीच आज से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। और रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आज डुरंड कप का बड़ा मुकाबला, जमशेदपुर एफसी और एससी दिल्ली के बीच होगी भिड़ंत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

समाचारों के बाद स्वागत है आपका। पेश है फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम को हमने केंद्रित किया है महान पार्श्व गायक और अभिनेता किशोर दा पर। जी हाँ, किशोर कुमार की का आज है जन्म दिवस। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे थे और उनका निधन 13 अक्टूबर 1987 को मुंबई में हो गया था। पिता कुंजालाल गांगुली एक वकील थे और माता गौरी देवी एक प्रतिष्ठित परिवार से थी। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे किशोर दा। उनके बड़े भाई अशोक कुमार एक मशहूर अभिनेता थे और दूसरे भाई अनूप कुमार भी फिल्मों से जुड़े थे। किशोर दा को बचपन से ही KL सहगल के गाने सुनने और उनकी नकल करने का शौक था। उन्होंने साल 1986 में फिल्म शिकारी से बतौर अभिनेता अपने करियर की शुरुआत की। चलती का नाम गाड़ी और पड़ोसन जैसी फिल्मों में उनकी कॉमेडी आज भी लोग पसंद करते हैं। उन्होंने 1948 में फिल्म जिद्दी के गाने मरने की दुआएं क्यों मांगू से एक गायक रूप में अपनी शुरुआत की। उनकी गायकी में एक खास अंदाज योडलिंग था जिसे उन्होंने विदेशी रिकॉर्ड से सीखकर अपनी आवाज़ में ढाला था। किशोर दा को सर्वश्रेष्ठ गायक बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। और भी बातें होंगी किशोर दा की, आइए सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत किशोर और लता की आवाज़ में।

किशोरदा की क्या बात करें हम, उनकी तो हर बात निराली थी। उनकी आवाज़ सबसे अलग थी और किसी गाने में किस जगह क्या डालना है यह वो बखूबी जानते थे। 70 का दशक हो या फिर आज का समय, किशोर कुमार के गाने हर युग के लोगों के होठों पर रहते हैं। और किशोर के साथ बहुत सी फिल्मों में काम कर चुके संगीत निर्देशक बप्पी लहरी के मुताबिक, किशोर के गानों में कॉमेडी, रोमांस और बहुत सारे भाव होते थे। उनके अनुसार किशोर कुमार रिकॉर्डिंग के समय ही बोल देते थे कि गाना हिट होगा या नहीं। वो मानते हैं कि किशोर कुमार जैसा न कभी कोई हुआ है और न कभी कोई होगा। संगीत निर्देशक राजेश रोशन ने किशोरदा को याद करते हुए कहा था कि वे इतना डोप कर गाते थे कि गाने का क्या रूप और रंग होना चाहिए यह वो संगीत निर्देशक से भी बेहतर समझते थे। और आज तक उनका सबसे पसंदीदा गीत हिट फिल्म जूली का गाया हुआ गाना दिल क्या करे। बतौर एक्टर किशोर कुमार ने चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट, पड़ोसन और झुमरू जैसी कई फिल्मों में काम किया। फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा कहते थे कि किशोर न सिर्फ गायक थे बल्कि एक एक्टर, प्रोड्यूसर, निर्देशक, निर्माता, लेखक और कंपोजर सभी कुछ थे। उन्होंने बताया कि जिस तरह से किशोर अपने गानों में फिल्मों के सीन के पूरे भाव डाल देते थे वो बेमिसाल था। यश चोपड़ा उन्हें याद करते हुए कहते हैं कि बेहद शरारती भी थे किशोरदा।

सिंगर मन्ना डे कहते हैं कि किशोर दा ने संगीत की शिक्षा नहीं ली थी, उनकी गायकी उन्हें ईश्वर की देन थी। मन्ना डे ने कहा था कि हालांकि मन्ना डे खुद संगीत में पारंगत थे, फिर भी जब वो किशोर के साथ गाते तो वो कमर कस के गाते थे। उन्होंने कहा कि किशोर की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। मन्ना डे ने बताया कि फिल्म पड़ोसन के हिट गीत चतुर नार की रिकॉर्डिंग में तो पूरे 12 घंटे लग गए, जिसमें सबसे 3 घंटे तो किशोर दा की बातों पर हंस हंस कर सबका पेट दर्द हो गया। तभी तो हरफन मौला भी उन्हें कहते थे। रेडियो की जानी मानी हस्ती अमीन सयानी ने बीबीसी को बताया था कि बड़े ही मजेदार आदमी थे किशोर दा। उनका दिल बहुत अच्छा था, बेहद शरारती भी थे। हंसने हंसाने वाले किशोर दा सभी को बेहद पसंद आते थे और उनका यह खूबसूरत अंदाज सभी के दिलों में बसता था। सचिन देव बर्मन भी उनसे काफ़ी प्रभावित रहते थे और उनसे पहली मुलाकात की नकल करके भी बताया करते थे। तो ऐसे किशोर दा को उन्हें जन्मदिवस पर हम याद कर रहे हैं और नमन कर रहे हैं कार्यक्रम के आखिरी गीत के साथ।

0: फिल्म मसाल किस गीत के साथ ही आज के गीत गुंजन कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है जोहार पलामू कार्यक्रम का, आइए सुनते हैं कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

जोहार पलामू कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। कार्यक्रम की शुरुआत आज के सुविचार से। सुबह का सकारात्मक विचार दिन बदल देता है। हर सुबह की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ करें। बात करें मौसम की, अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल यानी कि 5 तारीख को अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। बारिश और तेज हवा की भी संभावना है। आज भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। और मौसम की जानकारी के बाद कार्यक्रम का पहला गीत आइए आपको सुनवाते हैं।

और सावन की रिमझिम बरसातों के बीच इस गीत को भी आप सुन रहे थे, लेकिन इस गीत से निकलकर आइए आसपास की खबरों से हम आपको अवगत कराते हैं, और ऐसी खबरों से भी जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा दिशोम गुरु का महापरियान दिवस। बरलंगा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे प्रतिमा का लोकार्पण। जल जंगल और जमीन के संघर्ष का पर्याय रहे दिशोम गुरु शिबू सोरेन। लाभुकों को सौंपेंगे परिसंपत्तियां। विकास योजनाओं का करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि आज रामगढ़ जिले के बरलंगा स्थित लुकैया टाँड शहीद स्मारक परिसर में श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिन में 11 बजे आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे शहीद स्मारक परिसर में स्थापित 15 फीट ऊंची शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सोरेन विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे, साथ ही राज्य के विभिन्न विकास कार्यों का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इस अवसर पर राज्य सरकार के मंत्री, विधायक, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थकों के शामिल होने की संभावना है। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम को लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वेक्टर जनित रोगों पर सख्त हुई झारखंड सरकार, अंतर विभागीय समन्वय पर जोर। टास्क फोर्स की बैठक में ACS बोले मलेरिया, डेंगू और फाइलेरिया की रोकथाम बने जन आंदोलन। राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से मलेरिया, लिम्फेटिक फाइलेरिया तथा अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक गुरुवार को रांची के डोरंडा स्थित नेपाल हाउस में हुई। योजना एवं विकास विभाग के सभागार में बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने की। बैठक में राज्य के वेक्टर जनित रोगों की वर्तमान स्थिति, संचालित रोकथाम एवं नियंत्रण गतिविधियों, अंतर विभागीय समन्वय तथा आगामी रणनीतियों की समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि मलेरिया, लिम्फेटिक फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसे वेक्टर जनित रोगों का नियंत्रण केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। इन रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम जनों को भी आगे आना होगा। शिवालयों में पहली सोमवारी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सावन की पहली सोमवारी पर पलामू के सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं और शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक कर हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयघोष के साथ पूजा अर्चना की। अहले सुबह ही शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगने लगी। श्रद्धालुओं ने उपवास रखकर शिवलिंग पर जल, भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। कुशवा में किसान गोष्ठी, संतुलित उर्वरक और श्री अन्न की खेती पर जोर। किसानों को दिए गए खरीफ फसल प्रबंधन के सुझाव। प्रखंड के कुशवा गांव में सोमवार को आत्मा के सौजन्य से खरीफ फसलों के बेहतर प्रबंधन को लेकर एक दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को कम वर्षा की स्थिति में फसलों के चयन तथा संतुलित मात्रा में उर्वरकों के उपयोग की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रखंड तकनीकी प्रबंधक BTM जय गोविंद यादव ने कहा कि फसलों में उर्वरक का अत्यधिक उपयोग मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ ही ऐसे खाद्यान्न के सेवन से मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए किसानों को हमेशा संतुलित मात्रा में ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस साल अल नीनो के प्रभाव के कारण सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में किसानों को उच्च एवं मध्यम भूमि पर अंतर्वर्तीय खेती अपनानी चाहिए, साथ ही 100 से 115 दिनों में तैयार होने वाली धान की किस्मों का चयन करने अथवा धान की सीधी बुआई करने की भी सलाह दी गई। नगर निकायों की विकास योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश। PM निवास, पेयजल और सफाई कार्यों की हुई समीक्षा।
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिले के विभिन्न नगर निकायों द्वारा संचालित विकास योजनाओं एवं नागरिक सुविधाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेदिनी नगर निगम सहित विभिन्न नगर परिषद एवं नगर पंचायतों में संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत वर्टिकल 3 के ब्लॉक ए एवं ब्लॉक डी में पूर्ण फ्लैटों की स्थिति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी कर अगले माह लाभुकों को गृह प्रवेश सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। बैठक में चियाकी पार्क के विकास कार्य तथा निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने दोनों परियोजनाओं को निर्धारित समय के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराने का निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न नगर निकायों में पेयजल आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने तथा नागरिकों को निर्बाध जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। बैठक में FSTP फिकल सल्ज ट्रीटमेंट प्लांट सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रीट लाइट व्यवस्था साफ सफाई होल्डिंग में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली पार्क विकास शहरी आधारभूत संरचना तथा अन्य विकास योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई। उर्दू मध्य विद्यालय करीमनडीह में प्रबंधन समिति का पुनर्गठन रिजवाना बनी अध्यक्ष। हैदरनगर की खबर है। प्रखंड में उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय करीमनडीह में सोमवार को विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। कार्यक्रम जिला शिक्षा अधीक्षक पलामू के निर्देश एवं प्रखंड संसाधन केंद्र हैदरनगर के पत्र के आलोक में आयोजित किया गया। पहली सोमवारी पर राजा पहाड़ी शिव मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हजारों शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। श्रावणी मेले का हुआ शुभारंभ। श्री वंशीधर से खबर है। सावन माह की पहली सोमवारी पर प्रखंड के प्रसिद्ध राजा पहाड़ी स्थित शिव मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन एवं जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा गढ़वा जिले के अलग अलग प्रखंडों से हजारों की संख्या में शिव भक्त मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और परिवार के मंगल कामना की। इन खबरों के बाद आपको आइए लेकर चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में।

और अब समय आ गया इतिहास के पन्ने पलटने का और देखने का क्या क्या कुछ है खास आज की तारीख में। 1870 में आज की तारीख को ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। 1886 में कोलंबिया ने अपना नया संविधान आज ही के दिन बनाया था। 1961 में अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा का जन्म हुआ था। 2007 में अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए फिनिक्स स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था। 1929 में भारत के महान गायक अभिनेता और निर्देशक किशोर कुमार का जन्म हुआ था। 2025 में शिबू सोरेन जो कि झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे उनका निधन हुआ था, आज है उनकी पुण्यतिथि। 1981 में भारत के प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री और शिक्षाविद परशुराम मिश्र का निधन हुआ था और अभी विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है 1 से 8 अगस्त तक। तो हम बातें कर रहे थे कि भारत के महान गायक अभिनेता और निर्देशक किशोर कुमार का आज जन्मदिवस है, आज ही के दिन 1929 में उनका जन्म हुआ था। तो आइए उनका ही गाया एक गीत आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, बरसात का मौसम शुरू होते ही कई परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं और मच्छरों से बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और मच्छरों के काटने से मलेरिया, फलेरिया, डेंगू जैसे ख़तरनाक बीमारियां भी होती हैं, यह भी आपको पता है। तो डेंगू से बचने के कुछ उपाय आपको हम बताते हैं। मच्छरों के काटने से खुद को बचाना और आसपास पानी न जमा होने देना डेंगू से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है। कूलर, गमले और टंकियों के नियमित सफाई करें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाएं और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। घर के आसपास या छत पर टायर, टूटे बर्तन और कूलरों में पानी इकट्ठा न होने दें। हमेशा पूरी आस्तीन के कमीज और लंबी पैंट पहने ताकि आपकी त्वचा ढकी रहे। दिन और रात दोनों समय अगर आप सो रहे हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। कई तरह की क्रीम भी आती है, स्प्रे का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं मच्छरों को भगाने के लिए। और घर की साफ़ सफाई पर बेहद ध्यान दें। पानी के बर्तन ढके हुए रखें, घर के पानी के सभी बर्तनों को ढककर रखें, टंकियों को हमेशा ढककर और साफ़ सुथरा रखें, खिड़की दरवाजे बंद रखें और खिड़कियों में जाली लगवाएं। कीटनाशक स्प्रे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के अंधेरे कोनों और पर्दों के पीछे मच्छर छुपे होते हैं तो आप इनका छिड़काव कर सकते हैं, इससे मच्छरों से काफी हद तक बचा जा सकता है। कार्यक्रम में चलते चलते एक गीत आपको सुनवाते हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़।
1: जोहार पलामू।

अभी आप सुन रहे थे जोहार पलामो कार्यक्रम, प्रस्तुति स्वर शर्मिला वर्मा का, संयोजन प्रशांत गौरव का। और अब समय हो चुका है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत करती हूं आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सुविचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका जी ने। लिखते हैं,
2: कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है लेकिन झुकने के बाद भर कर ही बाहर निकलती है। जीवन का गणित भी कुछ ऐसा ही है, जो विनम्रता से झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर और प्रेरणादायी विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर का।
2: और अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़ता बाजार से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। वो लिखते हैं,

जय गुरुदेव, जय गुरुकुल, उमंग टीम को पल पल बंदगी। विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी, जय जोहार बंदगी जी। उमंग कार्यक्रम है लाखों में एक, आप हमारे गुरु के समान हो। हर सप्ताह नई नई जानकारी हमें सिखलाते हो, अहो भाग्य हमारा। उमंग कार्यक्रम एक पाठशाला है जिसे सुनकर जी

0: माँ बम्बलेश्वरी धाम सांकरा, सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू।
1: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
0: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी।
1: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कार्य जी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं, आज भी करेंगे कि उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए लगातार।
1: जी,
0: एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, क्या है हमारी आज की चर्चा का विषय?
1: अजी जी, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। चलिए मैं श्रोताओं को कुछ संकेत देती हूँ।
0: जी,
1: अंदाजा लगाना है कि हम किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
0: जी, तो विमलेश जी आपने कहा मैं संकेत देती हूँ, तो संकेत दीजिए।
1: मेरे संकेत कुछ प्रश्नों में छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न है, श्रोताओ क्या आपने कभी अपने मोबाइल से कोई प्रश्न पूछा है और देखा है कि तुरंत उत्तर मिल गया? क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर को कोई पोस्टर बनाने की कमांड दी और देखा कि तुरंत आपके लिए पोस्टर बनकर तैयार हो गया? यदि हाँ, तो बताइए कैसे संभव हो पाया।
0: या फिर श्रोताओ, क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भाषा का अनुवाद कुछ ही सेकंड्स में होते देखा है? भला ये कैसे संभव हो जाता है?
1: अजीत जी, यदि हमारे श्रोता मित्रों का ये अंदाजा है कि AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संभव हो पाता है, तो वो एकदम सही है। जी हाँ, हमारी आज की चर्चा का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बता दें कि इसका आविष्कार अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने 1955 में किया था। लेकिन अजीत जी, एक ये प्रश्न उठता है कि कृत्रिम इंटेलिजेंस क्या है?
0: विमलेश जी, यदि सरल शब्दों में कहें तो AI या कृत्रिम इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीनों को इस प्रकार से काम करने में सक्षम बनाती है कि वे कुछ हद तक मनुष्यों की तरह सीख सकें,
1: जी,
0: समझ सकें और निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान भी कर सकें।
1: जी अजीत जी, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। आज AI शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, चिकित्सा, विज्ञान और उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकती है।
0: और तो और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकती है।
1: शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकता है।
0: और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकता है।
1: जी,
0: अभ्यास प्रश्न तैयार कर सकता है और नई भाषा सीखने में भी सहायता कर सकता है।
1: जी,
0: इससे सीखना अधिक रोचक और व्यक्तिगत बन जाता है।
1: ये सब बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन श्रोताओं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
0: जी,
1: हर नई तकनीक की तरह AI के साथ भी कुछ चुनौतियाँ जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी चुनौती है गलत या भ्रामक जानकारी।
0: जी,
1: AI कभी कभी ऐसा उत्तर दे सकता है जो सुनने में तो सही लगे लेकिन पूरी तरह से सही न हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जांच कर लेनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल सही श्रोता। और दूसरी एक और बहुत बड़ी चुनौती,
1: जी,
0: वो चुनौती नकल करने की प्रवृत्ति।
1: जी,
0: विद्यार्थी भी कई बार अपना गृह कार्य, प्रोजेक्ट या निबंध पूरी तरह AI से बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत हानिकारक है।
1: जी,
0: क्योंकि इससे उनकी अपनी सोचने, लिखने और समस्या समाधान की क्षमता प्रभावित हो सकती है और आजकल ऐसा होने भी लगा है।
1: तो श्रोता मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि AI सीखने का साधन है, सीखने का विकल्प नहीं।
0: जी,
1: तो अब बात करते हैं कि AI का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे करें। सबसे पहली बात, AI का उपयोग सीखने के लिए करें, केवल उत्तर पाने के लिए नहीं। यदि कोई विषय समझ में ना आए तो आप AI से कहें कि वो सरल भाषा में विषय को समझाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझने के बाद आप उसे अपने शब्दों में लिखें।
0: जी, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें एक और बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि AI से मिली जानकारी का मिलान विश्वसनीय पुस्तकों, शिक्षकों या प्रामाणिक स्रोतों से जरूर करें।
1: जी,
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात, AI पर आश्रित ना हो जाएं।
1: बिल्कुल,
0: अपनी रचनात्मकता को बनाए रखें। चित्र बनाना, कविता लिखना, कहानी गढ़ना और नए विचार सोचना, ये सब मानव की विशेष क्षमताएं हैं।
1: जी हाँ श्रोता मित्रों, AI का उद्देश्य आपकी जगह सोचना नहीं, लेकिन आपको एक बेहतर ढंग से सोचने में सहायता प्रदान करना है।
0: जी,
1: AI हमारी सहायता कर सकता है लेकिन हमारी कल्पना शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। ये सच है कि हर नई तकनीक अपने साथ अवसर भी लाती है और जिम्मेदारी भी।
0: जी हाँ, जैसे एक उदाहरण लीजिए, जिस प्रकार बिजली का सही उपयोग हमारे जीवन को आसान बनाता है,
1: बिल्कुल,
0: और गलत उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है।
1: जी,
0: इसी प्रकार AI भी एक बेहद शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसका लाभ तभी

0: भी मिलेगा जब हम इसका उपयोग समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आइए हम इस तकनीक से डरे नहीं, बल्कि उसे समझें, उससे सीखें, उसका उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो श्रोताओ, आज का हमारा प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: और एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है पेड़ की बात।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम महान भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बसु के एक विज्ञान लेख पर आधारित है, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बड़ी रोचक जानकारी दी है।
0: पेड़ की बात।
2: साथियों नमस्कार, हम सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानते हैं। उनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। जीव विज्ञान, भौतिकी और वनस्पति विज्ञान में उनकी महारत थी। उन्होंने बांग्ला भाषा में बच्चों के लिए बहुत सी विज्ञान कथाएं और लेख भी लिखे। जगदीश चंद्र बसु ने कई विज्ञान कथाएं लिखी हैं, जिनमें से निरुद्देशेर गोल्पो यानी लापता की कहानी 1896 में लिखी गई और बाद में 1921 में पलटक तूफान यानी भगोड़ा समुद्री तूफान के रूप में प्रकाशित की गई, जो बांग्ला विज्ञान कथा साहित्य की शुरुआती कृतियों में से एक है। उन्हीं विज्ञान लेखों में से एक रोचक लेख है पेड़ की बात। जगदीश चंद्र बसु को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में भी प्रयोगशाला बना रखी थी। छुट्टियों के दिनों में उनके पास बहुत से बच्चे विज्ञान के प्रश्नों के साथ आते रहते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उनके पास चलें? तो आइए दोस्तों, हम भी चलते हैं बच्चों के साथ सर जगदीश चंद्र बसु के पास और सुनते हैं ये विज्ञान वार्तालाप।
3: चलो चलो
4: पास
3: चलते हैं।
4: सर से हम पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे। नमस्कार सर।
5: नमस्कार, और इतने सारे बच्चे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दो।
6: सर मैं इशिता।
7: मैं हूँ चेताली।
8: मैं शुभेंदु।
9: और मेरा नाम है इंदु।
10: और मैं सोमेश।
5: बहुत अच्छा। तो बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों का आना कैसे हुआ?
6: सर हम आपसे पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं।
5: देखो, पेड़ बनने की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बीज से।
8: जी सर, मैंने अपने खेत में बीज को बोते हुए देखा है।
10: सर फिर क्या होता है?
5: फिर होता यह है बच्चों कि बीज मिट्टी में पड़ा रहता है लंबे समय तक। जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है ना, बीज मानो सोचता है।
10: बीज सोचता है? क्या सोचता है?
5: वो सोचता है अब मिट्टी में पड़े रहने का समय नहीं है। उसे लगता है मानो प्रकृति उसे बड़े प्यार से पुकार रही हो। जैसे
11: उठो, उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है। बाहर निकलो, सूर्य को देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कितना सुंदर है।
6: वाह, कितनी सुंदर बात है।
5: अच्छा एक बहुत मजेदार बात तुम लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखो जब अंकुर फूटेगा और डालियाँ निकलेंगी तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। जानते हो एक बार मैंने एक प्रयोग किया था, एक गमले में क्या था बताओ?
12: पौधा।
5: शाबाश। परीक्षण करने के लिए मैंने कुछ दिनों तक पौधे को उल्टा लटकाए रखा।
12: उल्टा?
5: हाँ उल्टा। और जानते हो क्या हुआ? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर।
10: फिर क्या हुआ?
5: फिर दो तीन दिनों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसकी सारी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। ऐसा लगा जैसे पौधे को भी प्रकृति का ये भेद मालूम हो गया हो, है ना रोचक बात?
10: ये तो बड़ी रोचक बात है सर। सर एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं?
5: हाँ हाँ क्यों नहीं। देखो हमें जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है ना, हमारे दांत होते हैं, है ना?
6: जी सर।
5: इसलिए हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से ही भोजन ग्रहण करते हैं। वो जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं।
6: रसपान कैसे करते?
5: एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में चीनी डालने पर चीनी घुल जाती है ना?
6: जी सर।
5: वैसे ही मिट्टी में पानी डालने पर उसमें मिट्टी के बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं। पेड़ पौधे उसी पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
6: अच्छा अब समझ आया।
5: तो अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में।
12: जी सर।
6: यहाँ तो कितने सारे पत्ते बीज पौधे के तने रखे हुए हैं। अरे कितनी बड़ी प्रयोगशाला है,
13: यहाँ पे तो बहुत तरह के पत्ते हैं।
10: ये तो बहुत सुंदर पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे।
14: देखो इतना बड़ा पेड़।
10: अरे उधर देखो सूखे पत्ते भी हैं।
12: अरे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।
6: और ये मशीन क्या है? चलो चलो सर से पूछते हैं।
5: इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप।
14: माइक्रोस्कोप?
5: हाँ अब इसका कमाल देखो। इशिता तुम इधर आओ बेटा। हाँ देखो।
13: जी सर।
5: हाँ देखो अब मैंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर पौधे के इस तने को रखा। हाँ आओ देखो। देखो बेटा देखो इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है।
10: अरे वाह मुझे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नलियां दिखाई पड़ रही है।
5: शाबाश।
10: हाँ नलिया तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है इसमें।
6: मुझे भी देखना है। सर मैं भी देखूं?
5: हाँ आओ आओ।
10: मुझे भी देखना है।
5: देखो क्या दिखाई दिया?
10: इसमें तो बहुत सारी नलियाँ हैं।
5: शाबाश बिल्कुल सही, लाखों पाइप हैं।
12: पाइप?
5: हाँ यानी जड़ मिट्टी से जिस पोषक तत्व को सोखती है ना, वो पोषक तत्व इन्हीं पाइपों के द्वारा पूरे पेड़ तक पहुँचते हैं।
6: अच्छा तो ये बात है।
5: अब देखो जैसे हमारी नसें होती है ना, बिल्कुल यही बात है।
10: सर पौधे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो कैसे?
5: वृक्ष के पत्ते हवा से आहार यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कभी तुम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से पत्तों को देखा है?
12: नहीं सर।
5: और अब देखते हैं पत्ते को। कौन सा पत्ता ले? ये वाला पत्ता लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर। हाँ अब देखो कौन देखेगा सबसे पहले? शुभेंद्र तुम देखो क्या दिखाई दिया।
10: अरे वाह कितना अद्भुत है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह हैं।
5: बिल्कुल ठीक। तो बच्चों पत्तों के इन्हीं छोटे छोटे मुखों और जड़ों से पेड़ पौधे हवा से नमी ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अच्छा चलो बच्चों अब एक और प्रयोग करते हैं। तैयार हो तुम लोग सब लोग?
12: जी सर।
5: तो अब सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ ऐसे। हाँ शाबाश। और अब सब लोग एक लंबी सांस लो और अब छोड़ो। अब बच्चों ये बताओ कि तुमने सांस लेते समय क्या लिया और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ा। इशिता तुम बताओ।
6: सर, टीचर बताती है कि हम सांस लेते समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं।
5: शाबाश। और शुभेंदु तुम बताओ, हम सांस छोड़ते समय क्या छोड़ते हैं?
15: सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
5: हाँ।
15: लेकिन सर, ये तो जहरीली होती है।
5: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। देखो बेटा, मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी के सभी सांस लेने वाले जीव जंतु ऐसा ही करते हैं। अच्छा अब जरा सोचो, अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा?
6: पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा।
5: सही कहा तुमने, शाबाश। लेकिन बेटा जरा विधाता की करुणा और चमत्कार तो देखो। जो गैस हम जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है।
9: यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो
16: हम भी नहीं होते।
5: शाबाश। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी आज की बातचीत?
16: बहुत बढ़िया।
5: अब से एक काम जरूर करना।
16: क्या सर?
5: जब भी किसी पेड़ पौधे को देखना ना, तो उसे बोलना थैंक यू प्लांट,
16: थैंक यू ट्री।
5: शाबाश।
2: तो साथियों, अब हम किसी भी पेड़ या पौधे को देखकर धन्यवाद तो जरूर कहेंगे, लेकिन सिर्फ धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। बात तो तब है जब हम सिर्फ धन्यवाद ही ना कहें, बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं।
0: पेड़ की बात। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए? तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया, फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए।

बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार

0: प्यार से बोले,
1: बेटा
2: तुमने
1: बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा, कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीरज यादव, अर्जुमन अली खां और मिताली, ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साथी की सहायता। CIET NCERT presents English rhymes and songs.
1: Friends, we present to you the song Five Little Ducks.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
0: चेतना
1: और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग, उमंग,
2: उमंग। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके साथ यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए हम समाचारों के लिए जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। और 10:10 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले होंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों के साथ बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के वीडियो को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने बताया कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को से इससे माफी मांगने की मांग की है।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं, इन सारे चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करते हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही में प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया है कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है कि पुलिसकर्मियों पर हमले किए गए हैं। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन संसद भवन में हो रही है। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी, उसमें तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन में हिस्सा लिया। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान में परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करने को दूसरा चरण बताया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। और खेलों में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। यह 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और उन्नति हुडा टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही है, इसलिए तीसरी वरीयता प्राप्त तन्वी महिला एकल वर्ग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली भारतीय खिलाड़ी होंगी। किदांबी श्रीकांत जुलाई में कनाडा ओपन में पहले दौर में हार के बाद प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी।
2: न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The National Democratic Alliance Parliamentary Party's weekly strategy meeting, known as Mangal Milan, is underway at the Parliament House. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and other leaders are attending the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an aim to demonstrate complete alliance unity. The meeting last took place on the 28th of July. MPs from Trinamool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India, are also attending the alliance meeting. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. BJP MP and chairperson of the committee, Nishikant Dubey, criticized Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta CEO Mark Zuckerberg to apologize for this, and if he does not do so, then the safe harbor protection under Section 79 should be withdrawn from him.
1: ये माफी नामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस लेना चाहिए।
2: The second meeting of the BRICS Anti-Corruption Working Group and the BRICS Expert Network on Asset Recovery will begin in Hyderabad, Telangana today. The two-day meeting is being organized in line with the theme of India's BRICS presidency, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The event is expected to witness participation from BRICS member countries along with senior policymakers, experts, practitioners and representatives of anti-corruption and law enforcement agencies. India and Uzbekistan have agreed to expand their strategic partnership by strengthening cooperation in critical minerals, mining, trade, energy infrastructure, defense and education during high-level talks held in New Delhi yesterday. The discussions took place during the four-day official visit of Uzbekistan's Foreign Minister Baktiyor Saidov, who met External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. Indian Railways recorded growth of 9% in freight loading in July this year as compared to the corresponding month of the previous year. It loaded 141.3 million tons of freight during July 2026 compared to 129.7 million tons in July last year. The performance reflects

0: sustained demand across core sectors of the economy and continued efforts to improve freight logistics and operational efficiency. Ministry of Road Transport has provided a draft notification proposing an amendment to the Central Motor Vehicles Rules 1989 to bring two-wheeled road ambulances for emergency medical care. The ministry underlined that the proposed emergency ambulance service will support faster emergency response and improve access to emergency medical care in remote areas. The India Meteorological Department has forecast extremely heavy rainfall in Meghalaya and Arunachal Pradesh today and tomorrow. The weather system is likely to impact several districts of Assam, particularly those bordering the two neighboring states. The Assam State Disaster Management Authority has urged people in the concerned districts to take all necessary precautions and remain vigilant. U.S. President Donald Trump said Iran has been given a last chance to reach an agreement with Washington, claiming that a planned military strike was paused after Iran and several Gulf countries urged diplomacy. Trump also said discussions were underway to reopen the Strait of Hormuz completely, possibly by tomorrow. He described this as the first phase, with the second phase focusing on the denuclearization of Iran. However, Iran's foreign ministry spokesperson Ismail Baghai denied reports of direct or indirect negotiations with the U.S., saying Tehran was not holding talks with Washington. India's badminton stars will begin their campaign today at the Korea Masters 2026, a BWF Super 300 tournament beginning today at the Asan Yi Sunsin Gymnasium in Asan, South Korea. The tournament will run until 9th of this month. And that is the end of this news bulletin.
1: ऑपरेशन करके आपको बोलेंगे हफ्ते 10-15 दिन में आप चलने शुरू कीजिए.
2: जी जी,
1: आंख का भी वही है कि आप जितने जल्दी उसका इस्तेमाल करेंगे. हम कर क्यों रहे हैं ऑपरेशन आपका, आपको दृष्टि देने के लिए.
2: करेक्ट.
1: और उसके बाद भी अगर आप बोलेंगे नहीं मैं काला चश्मा पहन के बैठूंगा, मैं बाहर नहीं देखूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, तो फिर आपको ही तकलीफ होनी है ना.
2: एक बात बताइए डॉक्टर साहब, की जो लोग ज्यादा अवेयर नहीं है, जिनके मोतिया का पता देर से चलता है या नहीं चलता और वो उसी तरह से कैरी ऑन करते चले जाते हैं, तो ये पुराना मोतिया किस तरह बिगड़ सकता है और आंखों को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है?
1: देखिए, जब ये मोतिया जो है ना, एक हद तक ही आंख में झेल सकता है.
2: जी,
1: क्योंकि क्या होता है, वो एक पके हुए फल की तरह है. पका हुआ फल पेड़ से क्यों गिरता है? क्योंकि आजू बाजू से वो मॉइस्चर, उसका जो कवरिंग रहता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं.
2: जी,
1: वो मॉइस्चर बाहर का जो वातावरण रहता है वहां से पानी खींचता है और वो गिर जाता है. सही, अगर आप उसने तोड़ेंगे नहीं तो.
2: बिल्कुल,
1: आंख में वही होता है कि अगर एक हद के बाद अगर आपने वो नहीं किया, जिसको हम लोग हाइपर मैच्योर यानी नॉर्मल से भी आगे निकल गई है केस. मैच्योर का ट्रैक तो मैच्योर हो गया.
2: जी बिल्कुल,
1: हाइपर मैच्योर हो गया, ज्यादा बुजुर्ग हो गया.
2: जी,
1: तो वहां पे क्या होता है कि यही होता है कि जो लेंस की जो कवरिंग है वो धीरे धीरे करके पिघलने चालू होती है. आंख का जो बीच में का पानी है वो अंदर जाता है और वो फूल जाता है. अगर हम कहें कि पेड़ पे से तो फल नीचे गिर सकता है, आंख में कहां गिरेगा, आंख में जगह कहां है.
2: बिल्कुल,
1: तो अगर आंख में फट गया तो आंख का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा.
2: जी,
1: आंख के अंदर बम फोड़ दिया आपने, क्या होगा आंख का? इमरजेंसी में ऑपरेशन करने पड़ती है. उसके बाद भी दृष्टि आएगी नहीं आएगी, कि जैसे हमने पहले कहा, अगर पीछे की नस, मेन चीज पीछे की नस है, प्रेशर ज्यादा हो गया, आप पत्थर रख दो आपके हाथ के ऊपर, कब तक सह लेगा?
2: जी,
1: उसके बाद बड़ा वाला पत्थर रखो तो वो पीछे की नस खत्म हो गई, तो गई दृष्टि, फिर ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं आएगी.
2: जी जी,
1: तो सही टाइम पे इसका, कोई भी बीमारी में सही टाइम पे इलाज करना बहुत जरूरी है.
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक जरूरी बात की तरफ अब मुड़ते हैं और वो है नेत्रदान.
1: जी,
2: हम सभी को नेत्रदान के लिए एक फॉर्म भरना होता है. किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितने देर तक आंखें दान की जा सकती हैं और कैसे कहां जल्दी से संपर्क करके प्रोसेस किया जाए?
1: जी, बहुत जरूरी है.
2: जी,
1: सिर्फ नेत्रदान नहीं, अगर बाकी के भी जो भी ऑर्गन्स अगर काम कर रहे हैं तो काफी लोगों को जिंदगी दे सकते हैं.
2: जी जी,
1: नेत्रदान में एक बात समझनी जरूरी है कि आंख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है. नेत्रदान में पूरा आंख नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ सामने की कांच जो कॉर्निया है वो इस्तेमाल होती है. तो एक किसको फायदा होगा?
2: जी,
1: जिन लोगों की आंख की दृष्टि अगर कम हो गई है सामने की कांच की किसी बीमारी के वजह से या दुर्घटना के वजह से या किसी और कारण वजह से, तो उनमें ही ये काम आएगा नेत्रदान जो हम करते हैं. और वो बहुत लोग

0: हैं जिनको फायदा हमने देखा हुआ है वो ऑपरेशन करके। काफी सेंटर्स हैं आजकल तो ऑनलाइन, आप आपके नजदीक में जो भी हो आप सिर्फ डाल दो, गूगल कर दो, तो आपको वो आके जितने जल्दी करें वो, आप टाइम तो रहेगा, आप बोलो 10 घंटे 12 घंटे, सवाल वो नहीं है। अगर सामने की कांच सूख गई, इसलिए आंख बंद कर देते हैं ना आंख
1: जी जी
0: देहांत होने के बाद, तो भी वो तो आंसू की प्रक्रिया तो बंद हो जाएगी, और सामने की कांच अगर सूख गई तो गई। तो जितने जल्द हो सके, अगर आप पूछे तो टेक्निकली आवर्स बियर्स में बात करना कोई अर्थ ही नहीं है।
1: जी
0: जितने जल्द हो सके कांटेक्ट करने नियरेस्ट आई बैंक को, 24 आवर्स चालू रहते हैं वो, सभी जगह पे हैं, तो तुरंत आके वो लेके जाते हैं, और तुरंत वेटिंग लिस्ट बहुत होती है, तो इमीडिएटली उसका ऑपरेशन हो जाता है, और आपके वजह से किसी ना किसी को आपकी दृष्टि आ सकती है।
1: जी वही मैं उसी बात पर आना चाहता था कि ये
0: जी
1: एक छोटा सा कदम
0: जी
1: किस तरह से लोगों का भला कर सकता है, क्योंकि कई लोग अवेयर नहीं होते और नेत्रदान की जो प्रक्रिया है वो उतनी फास्ट नहीं है हमारे देश में,
0: सही
1: लोग
0: है,
1: उस तरह से इस बारे में सोचते नहीं है।
0: नहीं बहुत जरूरी है करना, क्योंकि अगर जितने जल्द करेंगे, मैं भी जानता हूं कोई किसी का देहांत हो तो ये काफी टाइम तो ये सोचा भी नहीं जाता, क्योंकि
1: जी
0: सबको दुख रहता है, पता नहीं क्या सिचुएशन में किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन अगर पहले से कुछ सोचा गया है कि किसी को करना है, या किसी ने कहा है कि मेरे जाने के बाद आप मेरे नेत्र दान करो या आप मेरे शरीर के बाकी ऑर्गन्स का दान करो, तो उनकी इच्छा सोच के अगर एटलीस्ट फैमिली के एक मेंबर ने अगर इनिशिएटिव ले ले तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते कितना फर्क पड़ेगा, कितनों को फर्क पड़ेगा। अगर किसी इंसान की दोनों आंखें खराब हो गई, एक आंख से भी दृष्टि दे तो जिंदगी निकल जाती है ना,
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: एक हाथ एक पैर निकल जाए तो भी चलता है, लेकिन दृष्टि निकल जाए तो आप सोचिए कितनी
1: जी
0: दिक्कत होती है।
1: जी तो
0: उनके
1: इससे
0: लिए
1: बहुत
0: भी
1: लोगों की मदद हो सकती है।
0: बहुत लोगों की मदद हो सकती है, लाखों की।
1: जी डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं,
0: जी
1: आंखों में किस तरह की स्पोर्ट्स इंजरी आप देखते हैं छोटे बच्चों से लेकर फिर आगे बढ़ती उम्र तक?
0: ये नॉर्मल है, आई
1: जी
0: मीन कोई भी इंजरी हो, हम आजकल नया नाम आ गया है स्पोर्ट्स इंजरी,
1: जी
0: लेकिन कोई भी इंजरी आंख के लिए इंजुरियस है, क्रिकेट बॉल हो कुछ भी हो। हमारे टाइम गिल्ली डंडा हुआ करता था विच वॉज परफेक्ट, जो आंख में जाके बैठ जाता था, अभी है नहीं,
1: जी
0: लेकिन क्रिकेट बॉल हो, कोई भी इवन अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल हमने देखा हुआ है वो खेलते टाइम, घर में खेलते टाइम, टेबल टेनिस खेलते टाइम। प्रॉब्लम यह है कि आंख में कहां पे लगे और कैसे लगे, ये बहुत जरूरी है। काफी टाइम हमने बड़े बड़े इंजरीज देखे हैं लेकिन आंख बच गई है,
1: जी
0: काफी टाइम हमने एकदम छोटी सी इंजरी देखी और आंख में भयानक चीज हो गई है। तुरंत किसी को बताना बहुत जरूरी हो
1: जी
0: कि आंख में अगर किसी को लग जाए तो तुरंत चेकअप, कहीं भी नजदीक अस्पताल सभी जगह है, तुरंत जाके जांच करवा लीजिए, उसको डिले ना करना,
1: क्योंकि ये कुछ भी खतरनाक हो सकता
0: बहुत
1: है।
0: खतरनाक होता है। और एक और इंजरीज हम बहुत देखते हैं, इंडस्ट्रियल इंजरीज, ये बॉम्बे में
1: जी
0: तो स्पेशली जो भी लेट्स से जहां पे ये
1: फैक्ट्रियां हैं
0: फैक्ट्रियां हैं या छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी हैं जहां पे ग्राइंडर का काम करते हैं, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं
1: जी
0: उसके आंख में वो छींटे उड़ जाते हैं ग्राइंडर के,
1: जी
0: ग्राइंडर पे करते टाइम वो मेटल के छींटे उड़ते हैं। मैं 1000 टाइम उनसे कहता हूं आप कोई प्रोटेक्टिव ग्लास यूज कीजिए, ₹50 का आता है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन वो
1: बिल्कुल
0: हमारा सेट नहीं देता, सेट नहीं देगा, अपने देश में लाइफ इज वेरी चीप, सेट नहीं देगा। आप ₹50, आप जाके कहीं पे भी ₹50 उड़ा देते हो, आंख के लिए एक प्रोटेक्टिव
1: खुद
0: ग्लास
1: नहीं
0: यूज
1: कर
0: करो।
1: सकते
0: और
1: लोग।
0: एक और चीज मैं देखता हूं कि ज्यादातर होते कि ये मैं अभी तक समझा नहीं हूं कि कोई वेल्डिंग कर रहा है, आपने देखा रहेगा वो गॉगल पहनते हैं, उसके बाजू में एक बंदा खड़ा रहता है बगैर गॉगल के उसको देखते हुए,
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने
0: ज्यादातर
1: जी,
0: उसकी आंखों में उड़ता है,
1: हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स,
0: बिकॉज ही इज थिंकिंग मैं काम नहीं कर रहा तो मेरे आंख में नहीं उड़ेगा।
1: हाँ हाँ बिल्कुल
0: तो ये कहीं पे भी वेल्डिंग इंजरीज बहुत ज्यादा है, एंड पीपल हैव
1: जी
0: लॉस्ट देयर आइज, तो बहुत इट्स अ वेरी सिंपल थिंग के प्रोटेक्टिव ग्लासेस, सेफ्टी अपने देश में अभी तक ये
1: ये
0: कंसेप्ट
1: छोटे
0: बहुत
1: बड़े वर्कशॉप, ये इंडस्ट्रीज, यहां कोई सेफ्टी मेजर्स आंखों के खास तौर
0: आंखों
1: पर?
0: के वो रखना बहुत, अभी तो एटलीस्ट हम देखते हैं कि हेलमेट्स आ गए हैं,
1: जी
0: बाकी चीजें आ रही हैं, लेकिन आंखों के बारे में बहुत कम मैं देखता हूं कोई सेफ्टी गॉगल्स पहन के काम कर रहा है, न कारपेंटर्स काम करते हैं, न इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं, न ग्राइंडर्स काम करते हैं, कोई सेफ्टी गॉगल्स यूज नहीं करता,
1: जी
0: ₹50 का मिल जाता है, हाउ मच इज इट,
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब आपने गॉगल की बात की तो मैं उस सवाल पर भी आना चाहता हूं कि ये जो रोड साइड तरह तरह के चश्मे मिलते हैं करामाती, ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं फैशन के चक्कर में?
0: खतरनाक नहीं, फैशन है, उसके आगे क्या है? टोपी खरीद लो, ऐसी उसी को खरीदो,
1: लेकिन ये आंखों को

0: नुकसान पहुंचा
1: सकते ना, ना ना ना नो नो नो नहीं, वो दैट इज सी, वो कलर कलर ग्लासेस है
0: जी,
1: प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस नहीं है। देखिए जब हम नंबर देते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस होते हैं, वो आप कहीं से भी खरीदो तो प्रॉब्लम है गलत वाले
0: जी।
1: ये जो रोड साइड वाले हैं इट्स लाइक बाइंग अ हैट ऑन द साइड ऑफ द, आप टोपी खरीद रहे हो उसके साथ आप एक पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का आप खरीद लो, फैशन के लिए है
0: जी जी,
1: कोई पूरे दिन पहन के घूमने नहीं वाला है, गया है पिकनिक के लिए तो दे विल वेयर इट फॉर दैट टाइम एंड इट विल बी डिस्कार्डेड, उसके आगे कुछ नहीं, उसके वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा, वो फैशन है उसके आगे कुछ नहीं है
0: जी। बिल्कुल, इंडस्ट्रियल इंजरी की स्थिति में क्या ऐसा हुआ है कि कोई मरीज पहुंचने में पहुंचाने में देर कर दी गई हो और उसके लिए वो घातक हो गया?
1: हाँ, काफी टाइम होता है, काफी टाइम होता है। आंखों में जितने जल्दी आप उसकी ट्रीट, सपोज लेट्स कहिए कि किसी को आंख में इंजरी हो गई और सामने की कांच फट गई या उसके अंदर कुछ चले गया, ये बहुत जो घातक इंजरी होती है आंख की, जो मार लगता है, जितने जल्दी उसको क्लीन करके उसका ऑपरेशन हो आंख बचा सकते हैं। अगर थोड़ी भी देर हो जाए या एक दिन निकल जाए तो कुछ नहीं कर सकते, और इतना बुरा लगता है कि यार इसकी आंख हम बचा सकते थे
0: जी,
1: लेकिन अभी बहुत लेट हो गया। उसके बाद फिर सारे डायलॉग सुनाई देते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करने चाहिए था, हमने इतना खर्चा किया लेकिन आंख तो चली गई। कोई आके बताता नहीं है कि आप टाइम पे पहुंचे नहीं वहां पे, कि आपने तुरंत ये नहीं करना था, आप कोई जाके केमिस्ट से कोई दवाई लेके डाल दी आंख में, दो तीन दिन तक आपने वैसे ही, ठीक है मजबूरी भी होगी, मैं ना नहीं कह रहा हूं, सबकी गलती नहीं रहती, कहीं पहुंच नहीं सकते या पैसे का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन सभी जगह तो चिकित्सालय है, मुफ्त भी है ना अपने देश में तो।
0: बिल्कुल, जल्दी से मेडिकल हेल्प लेनी
1: लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहां एक गाना सुनते हैं जरूर से जुड़ा हुआ, और उसके बाद आगे की बात करते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और बारिश के मौसम से जुड़ी हुई आंखों की एक समस्या है, आंखों का आना। ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है या इसका क्या उपाय है?
1: जी, ये ज्यादातर जिसको हम लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, या कंजंक्टिवाइटिस है ना, हमने जो कंजंक्टिवा है, जो आंख के साइड के जो एरिया है उसके अंदर सूजन आना।
0: जी,
1: तो टिपिकल बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो हम सबको बचपन में हुई है, आजकल दिखाई नहीं देती। जैसे वो होता था कि आंख में से बहुत कीचड़ आ रहा है, सूजन
0: जी,
1: आ रही है,
0: जी।
1: आजकल ज्यादातर बंबई में कंजंक्टिवाइटिस पूरे साल में रहता है।
0: जी जी
1: ये एनवायरमेंटल हो गया है।
0: हाँ,
1: और वायरल टाइप ज्यादा आता है, जो आंख लाल आती है।

0: सीजन चेंज होता है जिसको,
1: तब होता है
0: तब वहां होता है। एलर्जीज भी बहुत आ गए हैं।
1: क्या? ये जो लगातार रीडेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज की वजह से जो डस्ट उड़ती है
0: सबसे
1: उसका भी
0: ज्यादा,
1: आंखों को नुकसान?
0: सबसे ज्यादा,
1: ओहो,
0: सबसे ज्यादा। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एक आदत हम सब में हमने देखी है, हम आंख खोल के पानी मारते हैं।
1: हाँ,
0: मेहरबानी करके बंद कीजिए।
1: ओहो,
0: अपने आंसू और बाहर का पानी एक नहीं है, अपने आंसू और गंगा जल भी एक नहीं है। अपने आंसू एक दवाई है जो प्रकृति ने अपने आंखों को स्वच्छ रखने के लिए रख दी है, अपने आंखों को निरोगी रखने के लिए दिए। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल्स रहते हैं आंख के अंदर, और वो अपने आंख को प्रोटेक्शन देता है। अपने आंसू सबसे ज्यादा कीमती चीज है।
1: जी
0: तो हर टाइम जब हमारी आंख खोल के, जैसे हमने अब कंप्यूटर विजन के विजुअल के बारे में, हम आंख खोल के बंद करते हैं, ये अपना एक वाइपर है जो अपनी
1: जी
0: आंख को साफ कर रहा है। तो
1: जी
0: जब कभी हम दवाई डालते हैं तो अपने नाक से हलक में आती है, बाहर से तो नहीं आती।
1: जी
0: तो हर टाइम जब भी हम आंख झपकते हैं तो एक नया आंख का पर्दा तैयार हो रहा है, आंख अपने आप से साफ कर रहे हैं। आप पानी क्यों मार रहे हैं? पानी मारने में क्या होता है, कोई गर्म पानी तो नहीं मारेगा,
1: हाँ,
0: ठंडा पानी मारेगा,
1: और वो तेज तेज
0: तेज
1: चीते।
0: मारेगा। उसके वजह से क्या होगा, आपने भी किया होगा, आपकी आंख में और जलन होगी और आंसू बाहर आएंगे। जलन क्यों होती है? क्योंकि जो सामने की जो आंसू का पर्दा है वो टूट गया, सामने की कांच पे जाके पानी लग गया है, तो दिमाग को बहुत तकलीफ हो गया
1: तो
0: है,
1: ये किसी भी परिस्थिति में आंखों के
0: किसी
1: ऊपर?
0: भी परिस्थिति में। हाँ, और गर्म आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि दिमाग गर्म आंसू भेज रहा है ठंडा बाहर फेंकने के लिए।
1: ओके,
0: तकलीफ हो रही है
1: जी जी जी
0: आंख
1: जी
0: को पानी
1: जी
0: मारने में। आंख में कचरा जाए और पानी मारे तो ठीक है, लेकिन वो कचरा वो पानी की वजह से नहीं निकलता, जो ज्यादा आंसू तैयार होते हैं वो उसको बहा देते हैं।
1: जी
0: जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आंख में से थोड़ा सा मैल निकलता है।
1: जी
0: अब आप सोचिए, सभी लोग स्वच्छ वातावरण में सो रहे हैं, शहरों में पंखा है, एसी है, धूल नहीं है, घर के अंदर तो नहीं है, बाहर है लेकिन अंदर नहीं है, फिर सुबह क्यों मैल आनी चाहिए? हम रास्ते पे चल रहे, थोड़ी मैल आ रही है आंख में से, क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो अपने आंसू का प्रभाव 70% से कम हो जाता है,
1: जी
0: इसीलिए सुबह थोड़ी मैल निकलती है जमा हुई।
1: दिन में नहीं
0: दिन में
1: निकलती।
0: नहीं निकलती, उल्टा होनी चाहिए ना, आप धूल में चल रहे हैं तो आपको तभी होनी चाहिए।
1: जी
0: तो मेन चीज मैं सारे पेशेंट्स को कहता हूं, मेरे, आंख को अकेले छोड़िए, आंख को तकलीफ नहीं देना, आंख आपको
1: हाँ,
0: उससे भी ज्यादा तकलीफ देगी। जितना
1: ओके,
0: हो दवाई अवॉइड कीजिए,
1: हाँ,
0: जरूरत हो तो जरूर दवाई डालिए। काफी पेशेंट, नहीं, आंख लाल हो गई है, वायरल है, देख लेते हैं। हम नेचुरली इसको फाइट करेंगे, मत कीजिए आंखों में, प्लीज मत कीजिए, क्योंकि आंखों में कहीं इन्फेक्शन बैठ गया तो
1: जी
0: लेने के देने पड़ जाएंगे,
1: तुरंत डॉक्टर के पास
0: तुरंत
1: जाइए।
0: जाइए। लेकिन बाकी जो है, जो आजकल जैसे मैंने कहा है, जो 500 PhD जो कह रहे हैं कि आप में आप ये डालिए वो डालिए,
1: हाँ
0: ये सुरमा डालिए वो डालिए, जितना हो आंख को अकेले छोड़िए। अगर
1: जी
0: आपको लेडीज आईलाइनर यूज करती हैं, पहले काजल यूज किया जाता था, अंदर से लगाते थे, वो बहुत जलता था।
1: जी जी
0: हमारे माओ ने सबको किया, हम छोटे
1: हाँ,
0: छोटे थे,
1: लड़कों को भी,
0: हाँ लड़कों को भी, हमको भी हुआ है, और
1: लड़कियों
0: बहुत जलता था, मुझे याद है। आईलाइनर आ गए हैं जो काफी
1: जी
0: सेफ है लेडीज के
1: जी
0: लिए,
1: जी
0: जो बाहर से लगते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन,
1: यस
0: वहां पे लगा दी। जितना हो आंख को अकेले छोड़िए,
1: हाँ
0: ये सबसे मेरी विनती है, जितना हो अपने आंख को अकेले छोड़िए।
1: जी
0: हाँ, भगवान ने बहुत प्रोटेक्शन दिया है आंख को।
1: जी
0: सोचिए, आपके खुद के आंख में आप उंगली डाल सकते हैं?
1: नहीं
0: क्यों? नाक में तो डाल सकते हैं, कान में, मुंह में डाल सकते हैं, हाँ
1: क्योंकि
0: आंख में क्यों नहीं डाल सकते आप?
1: सबसे नाजुक पार्ट
0: सबसे
1: है
0: नाजुक चीज है। बहुत
1: जी।
0: बढ़िया, सबसे नाजुक चीज है, उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है। आप सोचिए, आपके खुद के आंख के अंदर आप उंगली नहीं डाल सकते।
1: जी
0: हाँ, आपको अगर पागलपन करना हो, आपको इंजरी करना हो तो दूसरी बात है, नॉर्मल कोई भी अपनी आंख के अंदर उंगली डाल नहीं सकता।
1: जी
0: वेरी सिंपल,
1: जी
0: सो लीव योर आइज अलोन, अकेले छोड़िए।
1: बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आंखों में पानी के छींटे नहीं डालने चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग ये करते आए हैं
0: जी।
1: और
0: और
1: ये
0: मुझसे
1: हमें
0: कहा
1: पता
0: गया
1: नहीं
0: है
1: था कि ये
0: कि
1: खतर।
0: योग में ये करते हैं। मैंने, आई
1: हाँ
0: टोल्ड हिम, आपको अगर थकावट हो रही है,
1: जी
0: आंख बंद करके ठंडे पानी मारिए, इफेक्ट वही है। आप
1: हाँ,
0: रुमाल ठंडे पानी में डाल के आंख के ऊपर रखिए, इफेक्ट वही है।
1: लेकिन
0: समझे?
1: खुली आंखों के ऊपर
0: खुली
1: छींटे नहीं
0: आंखों की
1: मारने।
0: वजह से नहीं, हाँ, और वो क्या करते हैं, वो स्पा में जाइए कागड़ी रखते हैं, सेम चीज है क्या, आंख बंद कर रहे हैं, जब आंख बंद करेंगे तो ये सिस्टम बंद हो रही है, आंख को आराम आ रहा है
1: जी।
0: काकड़ी ठंडी रखेंगे, कोई गर्म नहीं रखेंगे, ठंडा तो कोई रखता नहीं है, ठंडी वाली रखेंगे।
1: सही है।
0: तो ठंडा क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं ना
1: जी,
0: जब ठंड होता है, जैसे स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर रहे थे, पहली चीज क्या लगाते हैं हम, बर्फ लगाते हैं ना
1: जी।

0: गरम थोड़ी लगाते हैं वहां पे, हॉट वाटर बैग नहीं लगाएंगे ना, आपको लग गया तो आप गिर गए तो पहला खेलते टाइम तो पहला बर्फ लगाएंगे ना
1: जी।
0: बर्फ क्यों लगाते हैं? क्योंकि ब्लड वेसल्स को हम कंस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ना
1: जी जी,
0: उसको हम कम करना चाहते हैं। सेम चीज है आंख के लिए, आप आंख बंद रख के कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंह धोते टाइम नहाते टाइम थोड़ा जाता है वो तो नॉर्मल है
1: जी,
0: ओके नहाते टाइम तो हम आंख बंद करते हैं लेकिन थोड़ा तो पानी जाएगा ही, वो तो ठीक है। इसलिए तो आंख शॉवर के बाहर आने के बाद आंख लाल होती है, क्यों हो रही है?
1: बिल्कुल, क्योंकि वो पानी
0: सेम पानी आंख को अकेले छोड़िए, बेस्ट ट्रीटमेंट
1: जी। बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है। यहां पर एक गाना सुनते हैं, खामोशी फिल्म का गाना, हमने देखी है इन आंखों की बहती खुशबू, गुलजार साहब का गाना है।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी जरूरी बातें हमने की। चूंकि ये जमाना जो है ये आधुनिकता का जमाना है, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां इन दिनों में देखी जा रही हैं। आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस कौन सी हैं जिनकी आप चर्चा करना चाहेंगे?
1: आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस बहुत कम है
0: जी,
1: और अनफॉर्चुनेटली वो डायग्नोज भी नहीं होती। काफी टाइम ट्यूमर्स रहते हैं, आंख के अंदर भी ट्यूमर्स रहते हैं, या पीछे की पर्दे की अलग अलग बीमारियां रहती है, पैदाइशी बीमारियां रहती है पीछे के पर्दे की। एक बीमारी है जिसको हम लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। आपके लास्ट AIR में एक लिसनर ने मुझे फोन करके पूछा भी था
0: जी,
1: इसके वजह से पीछे के पर्दे को जो खून आता है वो खून पेशियां सूख जाती है।
0: ओके,
1: तो वो जो है और वो प्रोग्रेसिव है, बचपन में शुरू हो जाती है और काफी टाइम पेशेंट 25-30 तक अंधे भी हो सकते हैं, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता। तो ऐसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ये है, तो काफी रेयर डिजीज है। लेकिन एक चीज हमारे कन्वर्सेशन में रह गया, वो बहुत बहुत जरूरी आजकल के जमाने में, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं।
0: जी जी हाँ, उसका जिक्र हुआ था और हाँ, उसकी बात करनी जरूरी।
1: वो बहुत, बिकॉज रेयर तो ठीक है
0: जी,
1: ये कॉमन, मेरे हिसाब से रेयर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेटिनोपैथी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज बहुत बढ़ रहा है, मधुमेह बहुत बढ़ रहा है अपने देश में। आई थिंक वी आर द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज का। एक और कारण होगा, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी है तो ऑब्वियसली उतने ज्यादा लोग होंगे। तो डायबिटीज, अभी आप भी सभी जानते हैं कि डायबिटीज की वजह से क्या क्या बीमारियां होती है। सरल मैं आपको बता देता हूं, आंखों में डायबिटीज में मोतिया जल्दी आ सकता है, ग्लोकोमा कांच बिंदु में बढ़ावत हो सकती है, और सबसे खतरनाक है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी क्या, रेटिना यानी अपना पर्दा, पर्दे में आने वाली सूजन। तो हमारे बॉडी में लाखों अनगिनत करोड़ों सेल्स हैं
0: जी,
1: ये सेल्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल जैसे एक दीवार में जो ईंटें रहती हैं और उसके बीच में सीमेंट रहता है, वैसे ये सेल्स हैं। तो जब कभी अपने बॉडी में डायबिटीज, बीमारी क्या है, हम कहते हैं डायबिटीज शुगर बढ़ने की बीमारी है, डायबिटीज बॉडी में इंसुलिन कम होने की बीमारी है, शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है।
0: जी जी,
1: क्योंकि अपने बॉडी में हम जिंदा शुगर पे और पानी पे, ये अपना पेट्रोल है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे दिमाग में एक पॉइंट है जिसको हंगर सेंटर कहते हैं। जब बॉडी का शुगर कम होता है, दिमाग सिर्फ शुगर पे चलता है।
0: जी जी,
1: आप कोई भी चीज खाओ, करेला भी खाओ, इट टर्न्स इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर।
0: ऑफ कोर्स,
1: तो वो हंगर सेंटर जो रहता है जब हमारा शुगर लेवल ड्रॉप होता है, इसलिए आप उपवास करें या कुछ करें तो चक्कर आने चालू होते, ये होते, क्योंकि दिमाग को शुगर कम हो रहा है। तो हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद वहां पे दिमाग में एक सैटाइटी सेंटर है कि बाबा ये शुगर लेवल नॉर्मल हो गई। ठीक है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में, इसीलिए हमको शुगर चाहिए। और इसका जो संतुलन होता है ये इंसुलिन करता है जो पैंक्रियाज में है। हम जब कभी खाते हैं इंसुलिन आ जाती है और उसको लेवल बराबर ला जाती है। तो जिनको डायबिटीज है, जेनेटिकली हो या किसी और चीज की वजह से हो, उनका इंसुलिन लेवल जो है वो ड्रॉप होने चालू होता है। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम डायबिटिक है, हम गोलियां टाइम पे खाते हैं, हम वॉक के लिए जाते हैं, हम मीठा नहीं खाते, तो भी हमारा शुगर जो है वो बढ़ रहा है। ये क्यों हो रहा है, शक्कर क्यों बढ़ रही है? उनको ये समझना जरूरी है कि आपका शुगर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी इंसुलिन और घट रही है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये बहुत ही जरूरी है समझना कि आपकी इंसुलिन घट रही है तो ऑब्वियसली आपकी शुगर बढ़ेगी।
0: बिल्कुल,
1: ये जो तराजू है वो मेंटेन नहीं हो रहा,
0: वो बैलेंस नहीं है।
1: हाँ, बैलेंस नहीं है, और एक हद के बाद शायद प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है इंसुलिन का, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शन के दौरान। अभी भी इंसुलिन की गोली आई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो उनको इंसुलिन लेना पड़ता है उसको संतुलित में लाने के लिए। अच्छा ठीक है, मेरी शुगर बढ़ रही है, क्या फर्क पड़ता है मुझे, बढ़ने दो। प्रॉब्लम क्या होता है कि अपना शरीर जो है उसका प्रोसेसिंग एक लेवल है। जैसे हमने देखा है अभी बहुत बारिश गिर गई तो क्या हो गया, बांध के ऊपर से पानी आ गया।
0: जी
1: ठीक है, अपना बॉडी का भी एक बांध है जिसको रीनल या किडनी का थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसे एक पानी बढ़ता है तो हम छोड़ देते हैं उसको पानी, अपने बॉडी में 180 या 200 के ऊपर शुगर जब होती है तो बॉडी उसको

0: पेशाब में से निकाल देती है
1: जी।
0: इसीलिए पेशेंट का पेशाब चेक किया जाता है डायबिटीज का।
1: हाँ
0: पेशेंट पूछते हैं हमको खून की बीमारी आप पेशाब क्यों चेक कर रहे हैं। सही है, लेकिन ये इसकी वजह से चेकिंग होता है क्योंकि वहां से वो निकलते जाता है। तो इसलिए आप देखें डायबिटिक्स में यूरिन +2 +3 आती है हाई डायबिटिक्स में।
1: जी
0: अच्छा, पेशाब से निकल जाए अच्छा है ना, बाहर निकल रहा है तो क्या, नहीं नॉन डायबिटिक्स में तो नहीं जा रहा, डायबिटिक्स में जा रहा है। तो इसके लिए डायबिटिक्स को किडनीज की बीमारी ज्यादा होती है।
1: जी जी
0: ठीक है। इंसुलिन जो है वो हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा रहेगा आपके कोई रिलेटिव का कोई बड़ा सर्जरी हो गया, वो ही और शी वाज वो डायबिटिक है, उनको इंसुलिन पे रखा जाता है थोड़े दिन तक, फिर बाद में टैबलेट्स पे वापस लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि बॉडी के हीलिंग के लिए इंसुलिन सब जरूरी है।
1: जी जी
0: ओके। आंखों में क्या होता है? आंखों में पीछे के पर्दे में बहुत बहुत ज्यादा सेल्स है।
1: जी
0: ठीक है। वो सेल्स के बीच में का, अभी सिंपल चीज है, बॉम्बे में एक शब्द सबको पता है, ये शायद अपने देश में सभी हुआ, मतलब मुंबई में एक शब्द सबको पता है, लीकेज। सभी के घर में लीकेज है
1: जी,
0: बड़े बड़े टावर से लेके झुग्गी झोपड़ी में सबके घर में बारिश जब होती है या तो किसी कारणवश ऊपर वाले के यहां से लीकेज आता है।
1: जी जी।
0: ये लीकेज जो रहता है आंखों में किस चीज का लीकेज होगा? डायबिटीज में क्या होता है कि ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी जो सेल्स के बाहर का एरिया एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया वो इंट्रा सेलुलर शिफ्ट करता है। जब शुगर नॉर्मल होती है तो ये दोबारा वापस जाता है। ठीक है, लेकिन जब तक कि ये यहां हो ये तकलीफ देने वाला है। ऑलराइट। तो आंखों में सेल्स जो है उसके बीच में का सीमेंट जो है वो निकल जाता है। अभी आपके घर में पानी की पाइपलाइन जा रही है, अगर आपका सीमेंट पुखर जाए तो आपको पानी का लीकेज होगा। आंखों में खून पेशी जा रही है
1: तो लीकेज किस चीज का?
0: ब्लड निकल आता है
1: जी।
0: तो ब्लड के छींटे आते हैं पीछे के पर्दे में, उसके वजह से पीछे के नस में सूजन आती है जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और जो सेंट्रल एरिया मैक्यूला जहां पे लाइट जाके लगता है और जहां से दिमाग तक जाता है वो एरिया में एक भी खून पेशी नहीं है। वरना हमको सारी खून अभी तो दिखाई नहीं देता ना, कुछ भी क्लियर दिखता है क्योंकि वहां कुछ कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो एरिया में खून पेशी आए या खून आए और सूजन आए तो आंख की दृष्टि तो कम हो ही है आपकी
1: बिल्कुल,
0: और ज्यादा कहीं खून पेशी फट जाए जिसको हम लोग विट्रियस हेमरेज कहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर ऑपरेशन इंजेक्शन ये सब चीजें होती है। और 8 या 10 साल जिसका भी डायबिटीज जिनको है आंख का चेकअप कराना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पता नहीं चलता। हमारे पास पेशेंट आते हैं जब आंख में पीछे में ऑलरेडी खून जमा हो गया है
1: जी,
0: उनको पता है सडनली आंख में एक दिन रोशनी कम होती है, चेकअप के लिए आते हैं देखते हैं कि खून आ गया है, पूछते हैं शुगर कितना है, सर 300 350 चल रहा है। तो शुगर जो है आपको कुछ भी करो लेकिन खाना खाने के बाद 200 के नीचे रखो और रेगुलर चेकअप करना। आजकल हमारा बाकी भी चेकअप्स है जो आपको 3 महीने का ये सब आपको देते हैं वो लोग, लेकिन चेकअप करना बहुत जरूरी है डायबिटिक्स को। शुगर कंट्रोल, डायबिटीज सबसे खतरनाक बीमारी है सर
1: जी।
0: डायबिटीज की दो ही चीजें, या तो आपके साथ ऊपर जाती है आपको ऊपर लेके जाती है, तीसरा नहीं है
1: जी।
0: डायबिटीज ब्लड प्रेशर ये शरीर की कमजोरियां हैं, ये सर्दी बुखार नहीं है कि आप क्रोसिन लो डोलो लो एंटीबायोटिक लो चले जाने वाली है,
1: इनके साथ सावधानी से जीना पड़ता है,
0: इनको कंट्रोल करना पड़ता है
1: जी।
0: ये क्योर नहीं होती अनफॉर्चुनेटली,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि शरीर की कमजोरियां हैं तो ये क्योर नहीं होती
1: जी,
0: इनको कंट्रोल करते हैं हम
1: जी।
0: सो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी जैसे आपने जो भी मुझसे पूछा, और आजकल हम लोग इतने पेशेंट देख रहे हैं और हम सोचते हैं कि आई यार ये एक साल पहले आया रहता तो हम लोग इसकी आंख की रोशनी बचा सकते थे, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जो बची कुची रोशनी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दो अलग अलग चीजें है ना,
1: बिल्कुल।
0: नॉर्मल दृष्टि अलग है कि आपको सब अच्छा दिखाई दे रहा है
1: जी,
0: और एक है कि आपको जो बचा कुचा है वो दिखाई दे रहा है। हम तो चाहते हैं कि सबको अच्छा दिखाई दे जिंदगी भर,
1: बिल्कुल। और इसके लिए जरूरी है कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो नियमित रूप से अपनी आंखों का चेक
0: बहुत जरूरी है
1: ताकि उनकी आंखें स्वस्थ रह सके और किसी भी तरह की कोई मुसीबत ना आए
0: जी।
1: डॉक्टर साहब यहां एक गाना सुनते फिर आगे की थोड़ी बातें करेंगे।

0: डॉक्टर साहब, ये हमने डायबिटीज की बात की, आपने कहा कि ये एक बहुत जरूरी मुद्दा था जो एक जीवन शैली से जुड़ी समस्या बन गई है। डायबिटीज में असर आंखों पर सीधे पड़ता ही पड़ता है। कुछ और समस्याएं जिनकी अब यहां पर बात की जाए।
1: जी, ब्लड प्रेशर है उसमें से एक।
0: हाँ,
1: हमारे आंखों में सबसे ज्यादा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है।
0: जी,
1: ब्लड प्रेशर में भी वही होता है। अगर ब्लड प्रेशर, सपोज आपका बीपी बढ़ते जाएगा तो क्या हो सकता है, दिमाग में नस फट सकती है, स्ट्रोक होता है आदमी को, अर्धांग हो सकता है या तो गुजर सकता है। तो आंखों में भी काफी टाइम अगर आंख के जो अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर बढ़े, कि शरीर का ही हिस्सा है। देखिए, आंखों को बहुत ही बचाया गया है। देयर समथिंग जो हम लोग, एक ब्लड ब्रेन बैरियर भी है और ब्लड रेटिनल बैरियर भी है।
0: जी जी,
1: तो दिमाग अपने को बचाएगा, और क्योंकि रेटिना दिमाग का हिस्सा है, वो अपने को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक हद के बाद वो बचा नहीं सकता। तो वहां पे जो है ब्लड प्रेशर भी बहुत प्रॉब्लम देता है। तो आंखों में काफी टाइम जो पीछे की नस फटने का जो है, पीछे के पर्दे में, वो जो मैंने आपको कहा डायबिटिक के वजह से विट्रियस हेमरेज होता है, वो होता है। तो ये चीजें जो है, हाँ, एक और चीज जो लोगों को दे, काफी टाइम पेशेंट हमको कहते हैं कि हमारे आंख के सामने कुछ घूम रहा है, काले डॉट दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं। ये बहुत कॉमन है
0: जी,
1: ये थकावट के बाद आपको भी दिखाई देंगे। अगर ये लाइट देखो और व्हाइट बैकग्राउंड देखो, आपको दिखाई देंगे, सभी में है।
0: जी,
1: फ्लोटर्स आर नॉर्मल, ये अभी हम कहते हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे देखेंगे तो नीचे जाएगा, ओके। लेकिन अगर ये फ्लोटर्स ज्यादा आ जाए, बड़े साइज के होने चालू हो, ये छोटे वाले रहते हैं जैसे मच्छर मक्खी की तरह दिखते रहते हैं, लेकिन अगर वो मोटे दिखाई दे, गोल दिखाई दे, काले दिखाई दे, लाल दिखाई दे, तो तुरंत आंख के डॉक्टर को आपको बताना है। इसका ये मतलब

0: है कि दो चीजें, या तो कहीं पे खून आ गया है या पर्दे में या विट्रियस में पीछे के जली में, या तो काफी लोग कहते हैं कि हमको आंख में ऐसे लगता है कि जैसे कोई बिजली चमक रही है एक साइड से। ये बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि जो पीछे का पर्दा है, जैसे मैंने कहा, वो आंख का हिस्सा नहीं, वो आके वहां पे चिपका हुआ है, तो जहां पे वो चिपका है काफी टाइम वहां से वो सटक भी सकता है, जिसको
1: ओके,
0: रेटाइनल डिटैचमेंट कहते हैं।
1: ये प्रेशर की वजह से होता है।
0: काफी चीजों की वजह से होता है, स्पॉन्टेनियस भी होता है।
1: अच्छा
0: स्पॉन्टेनियस हार्ट अटैक आता है ना आदमी को,
1: जी
0: सेम चीज है, डिटैचमेंट भी
1: जी
0: स्पॉन्टेनियस हो सकती है अनफॉर्चुनेटली,
1: जी
0: और पीछे का पर्दा सरक जाए तो दिस इज वेरी डेंजरस, तुरंत ऑपरेशन करने पड़ता है उसको दोबारा बिठाने के लिए। अब उसका भी कितना एक्सटेंट है, उसके भी बहुत टाइप्स है, लेकिन कितने उसका भाग निकल गया है, नहीं निकल गया है, ये सब चीज में जितना जल्दी करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप किसी की उंगली कटे जाए, अब जितने जल्दी जाके जोड़ो उतने जल्दी वो नॉर्मल हो ना हो, लेकिन रहेगा तो।
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: बिल्कुल,
0: अगर किसी ने कटी हुई उंगली लेके आप एक दिन या दो दिन घूम लो, तो क्या होने वाला है? वो
1: बाकायदा उसमें तो फिर नुकसान होना
0: जान ही
1: शुरू
0: नहीं
1: हो
0: आएगा ना,
1: जाएगा।
0: उसमें जान निकल जाती है।
1: जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे बुजुर्गों में हमने ये देखा है कि उनको नियमित रूप से आंखों में डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं। वो कौन सी बीमारी है जिसको
0: ये
1: ये सब होता
0: डायबिटिक
1: है?
0: रेटिनोपैथी में होता है एक,
1: जी
0: जिसके अंदर अगर पीछे के पर्दे में सूजन हो। एक और चीज है बुजुर्गों में, जिसको हम लोग एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन कहते हैं।
1: ये क्या होता है?
0: मैक्युला जो मेन एरिया है, सेंट्रल एरिया जहां पे लाइट जाता है,
1: जी
0: उसको और हिंदी में शब्द है ही नहीं, उसको मैक्युला ही कहते हैं
1: जी
0: अनफॉर्चुनेटली, या तो मुझे पता नहीं है। एज रिलेटेड हम सब समझते हैं, उम्र के वजह से मैक्युला में डिजेनरेशन यानी वो कमजोर हो जाता है। उसके
1: जी
0: दो टाइप है, एक जिसको ड्राई कहते हैं सूखा हुआ, या वेट गीला हुआ।
1: अच्छा
0: हाँ, ज्यादातर उम्र के वजह से, क्योंकि जैसे अपने बॉडी का कोई भी हिस्सा झिरने चालू होता है, नीज खराब हो जाती हैं, हिप हो जाता है, हार्ट हो जाता है, तो वैसे ही वो जो भाग है वो धीरे धीरे करके उसकी ताकत उसकी निकल जाती है, तो ऑब्वियसली जो लाइट वहां पे जा रहा है वहां से दिमाग तक नहीं पहुंच रहा, तो उसके लिए दवाइयां हैं आजकल जो हम लोग गोलियां जो देते हैं, लेकिन काफी टाइम क्या होता है कि वो इतना झिर जाता है कि उसके अंदर पीछे सूजन या पानी आने चालू होता है, जिसको हम लोग वेट टाइप कहते हैं। तो उसके लिए ये पिछले 10 सालों में ही आए हैं, इंजेक्शन आए हैं काफी अच्छे हैं, जिससे वो सूजन कम की जा सकती है।
1: जी
0: उसके लिए पहले स्कैन करते हैं हम लोग, जिसको ओसीटी कहते हैं, इट्स लाइक अ सीटी स्कैन ऑफ द आई, तो उसके वजह से पता चलता है कि कितनी सूजन है।
1: इसके लक्षण क्या होते हैं इस सूजन के? अच्छा
0: लक्षण कम दिखाई देता है और कोई नहीं,
1: जी
0: कम दिखाई देता है, तो रेगुलर चेकअप्स के लिए जब बुजुर्ग आते हैं तो पीछे का पर्दे का तो जांच तो हम लोग करते ही हैं। अगर पता चला कि बाबा ये ARMD है उनको,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ड्राई वेट टाइप देखने में तो पता चलता है, लेकिन उसका कंक्लूजन रहता है अगर हमने वो स्कैन करें तो स्कैन करने को, बिकॉज वो स्कैन इट्स लिटरली लाइक अ सीटी स्कैन ऑफ द रेटिना, तो
1: जी
0: हमको बराबर वो स्लाइसिस, वो उसका बराबर शेप दिखाई देता है, वहां पे सूजन दिखाई देती है, तो उसके मुताबिक फिर जो हमारे रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं वो डिसाइड करते हैं कि इनको इंजेक्शन से वो सूजन कम करें। गोलियां काम नहीं करती वहां पे इतनी अनफॉर्चुनेटली, या ड्रॉप्स हम लोग देते हैं, लेकिन इंजेक्शन जो वहां पे आंख में इंजेक्ट होती हैं उससे तुरंत सूजन कम होने, बिकॉज डायरेक्ट वहां पे पहुंच सकता है,
1: जी
0: तो वो सूजन कम होने शुरू हो जाती है, लेकिन उसका भी कितने लगेंगे इंजेक्शंस ये हम बोल नहीं सकते, वो सूजन के ऊपर है। तो अगर काफी पेशेंट में हमने देखा है एक दो में भी ठीक हो जाता है, कहीं तो सालों उनको 4-5 लगते हैं या आते जाते रहते हैं, बहुत दुखद है, ज्यादातर बहुत बुजुर्ग लोगों में होता है,
1: जी
0: क्योंकि उस उम्र में जब उनका हालचाल बहुत कम होता है तो आंख की रोशनी उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, कि हमको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है, लेकिन फिर हम कुछ
1: ज्यादा
0: शरीर में,
1: उसमें हो
0: देखिए
1: नहीं सकते।
0: लिमिटेशंस हैं, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ जाए, जो हमने प्रैक्टिस शुरू की थी 35 साल से आंख के डॉक्टर हैं, अगर हमसे कोई कहता कि ये टेक्नोलॉजी आप देखोगे आप रिटायर होने के पहले, तो मैं कहता था आप झूठ बोल रहे हैं,
1: जी
0: इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है मेडिकल में सभी चीजों में, आप भी जानते
1: बिल्कुल
0: हैं, वेदर
1: बिल्कुल
0: मोबाइल्स हो या कोई भी चीज में, टेक्नोलॉजी हर 2-3 साल या 5 साल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बाकी शरीर में भी आप देखते हैं जो सर्जरीज वगैरह में इतनी मेडिकेशन में आई है, वैसे आंखों में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन सभी चीज का एक लिमिट है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और वो जो सीमा है वो अपनी ह्यूमन बॉडी है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि अभी तक कोई समझ नहीं पाया चलती कैसी है,
1: ये अपने आप में एक
0: ये
1: चमत्कार
0: अपने
1: है।
0: आप में एक चमत्कार है, हम देखते कैसे हैं वो भी चमत्कार है। आप भी जानते हैं वर्चुअल इमेज, अभी वर्चुअल यानी क्या हो गया,
1: बिल्कुल
0: उल्टा इमेज, यानी दुनिया उल्टी है और हमको सीधे दिखाई दे रही है।
1: ये भी कमाल की बात है।
0: आप जानते हैं ना, वापस जाइए वापस 8th 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स पे।
1: यस यस यस
0: वर्चुअल इमेज है।
1: हाँ।

0: अरे वर्चुअल कैसे हो
1: जो
0: गया?
1: हमारी आंखों में
0: अब हम
1: सीधी हो
0: आप एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम उल्टे हैं।
1: गई।
0: अच्छा वहां पे जाके इमेज उल्टी हो जाती है क्या यार? ये सवाल का प्रश्न मैं अभी तक खुद नहीं
1: ये कर सका बचपन से। मामला फिलोसफी की तरफ बढ़
0: गया। बिकॉज एक हद के बाद तो शायद जो भी हो, नेचर हो, भगवान हो, जो भी हो, देव कैप समथिंग विद देम एंड में के आप वहां तक उस हद तक हम नहीं जा सकते।
1: यस डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है और वो ये है कि बड़ी अजीब बात है कि कई लोग अपनी हैबिट में ये रखते हैं कि रात को सोने से पहले एक ड्रॉप डाल दें, टीयर ड्रॉप जैसी कोई चीज, या कोई एक रेगुलर ड्रॉप डालते हैं ताकि आंखें ठीक रहें। ये क्या है और ये क्या नुकसान पहुंचा सकता है?
0: दोबारा कहता हूं, जरूरत हो तो जरूर डालना, ना हो
1: डॉक्टर दें तब डालना।
0: हाँ, अगर आपके डॉक्टर ने कहा हो रात को सोते टाइम डालिए तो जरूर।
1: सेल्फ मेडिकेशन इज डेंजरस।
0: सेल्फ मेडिकेशन प्लीज कृपया करके ना करें। जितना सेल्फ देखिए, ज्यादातर तो ये डालते हैं वो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स रहते हैं।
1: जी जी,
0: हार्मलेस रहते हैं, वो अपने आंसू मिमिकिंग, अपने आंसू को ही मिमिक करते हैं,
1: रिप्लेस करें,
0: रिप्लेस करें, वैसे ही रहते हैं, तो उनकी हानि नहीं होती। लेकिन अंत में केमिकल है ना
1: जी।
0: अगर नेचुरल है, और हम बड़ी आजकल सारी बातें नेचुरलोपैथी पे करते हैं, तो आप नेचुरल रहिए ना, नेचुरल प्रोडक्ट्स मत डालिए, बहुत फर्क है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: नेचुरल प्रोडक्ट्स मत डालिए, वो बहुत फर्क है।
1: सही कह रहे हैं,
0: वो एक अलग ही टॉक है, मैं वहां पे जाना भी नहीं चाहता
1: जी।
0: ओके, लेकिन मेरा इतना ही है कि जो जरूरी हो वो जरूर कीजिए
1: जी,
0: जितना हो नॉर्मल रहेगा वही अच्छा रहेगा आपके लिए।
1: बिल्कुल, ऑफकोर्स ऑफकोर्स, बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब, यहां तक आते आते अब आपसे एक ही बात पूछनी है, और वो ये कि पूरे देश और दुनिया में जो लोग हमें सुन रहे हैं, एक बहुत ही अनुभवी आई सर्जन के तौर पर आप क्या बात कहेंगे उन लोगों से? बॉटम लाइन।
0: बॉटम लाइन, एक तो शुक्रिया सुनने के लिए
1: जी।
0: काफी टाइम आप लोगों ने झेल लिया मुझे,
1: बहुत तो जरूरी बात है,
0: उसके लिए शुक्रिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि आंखें जो है वो बहुत ही कीमती हैं, बचपन से लेके अपना साथ देते हैं, मरने तक शरीर का कोई भी आपको हिस्सा साथ नहीं देते, आंखें आपको जरूर साथ देगी। तो आप कृपा करके बहुत ही सावधानी से इनका ध्यान रखिए। इतनी सुंदर दृष्टि जो प्रकृति है, हम जो भी देखना चाहते हैं वो सिर्फ आंखों के जैसे तो दिखाई दे रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ, अगर आप आंख से नहीं देखेंगे तो बाकी और क्या रह गया है?
1: बिल्कुल,
0: आप महसूस नहीं करेंगे। टच भी इंपॉर्टेंट है, फील भी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर रोशनी नहीं रही तो बहुत ही मुश्किल रहती है। तो बॉटम लाइन यही है कि आंखों की प्लीज प्लीज प्लीज बहुत ख्याल रखिए, इसके साथ खिलवाड़ ना करें। ये मेरा बॉटम लाइन सभी चीज के लिए है कि मेहरबानी करके खिलवाड़ ना करें। किसी ने कर लिया तो मैंने ट्राई कर लिया, प्लीज ना करें
1: जी।
0: सोचिए इसके बारे में, हम सभी चीज के बारे में 10 चीजें सोचते हैं, कोई भी चीज के बारे में हम तुरंत गूगल कर लेंगे, ये कर लेंगे, देख लेंगे, फिर आंख में कुछ डालने के पहले सोचिए ना कि मुझे जरूरी है या नहीं।
1: क्या
0: कि किसी ने कह दिया कि मैंने डाल दिया मेरा नंबर निकल गया, मैंने ये डाल दिया तो ये हो गया, ऐसे होता नहीं है कोई शॉर्टकट। वापस बॉटम लाइन आप जानना चाहते हैं, देर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ,
1: नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, बहुत सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतने विस्तार से आंखों की देखभाल के बारे में, आंखों की बीमारियों के बारे में आपने बातें की।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम क्या कहता हूं, सॉरी ये हिंदी में शायद शब्द ना, बट आई एम ओवरवेल्म्ड एंड ऑनर्ड के आपने मुझे बुलाया और इतने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, और इस जगह पे बुलाया जहां पे पता नहीं कौन कौन दिग्गज आके गए हैं। तो इन अ वे जीवन सार्थक है मेरे लिए ये।
1: तो
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध

रंग तरंग रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कलाम मिर्जा गालिब, विनोद सहगल, मौसिकार जगजीत सिंह,

चित्रा सिंह की आवाज में आपने ये गीत सुना। रंग तरंग कार्यक्रम में हम आपको कुछ गीत गजल नगमे सुनवा रहे हैं और अब दिनेश ठाकुर की रचना, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाजें।

अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाजों में ये नगमा आपने सुना। विविध भारती आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम का नाम है रंग तरंग। सुबह की 11:14 हो चुके हैं। विविध भारती पर भूपेंद्र सिंह की आवाज गूंज रही है। ये जावेद, ये गुलजार साहब का गीत।

0: के नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप

0: डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
1: एक और आ गया।
0: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
4: विविध भारती से रंग तरंग। गुलजार के बोल उस्ताद अमजद अली खां की तर्ज है वादा एल्बम का नाम, साधना सरगम की आवाज।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आँखें हैरान सी

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय।
0: पर्वती खान की आवाज एल्बम का नाम है मिसिंग यू। कार्यक्रम की आखिरी

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की बैठक दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा दिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
1: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओसी के नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस बीच राज्यसभा में आज जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीतिक आग्रह के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किए जाने को दूसरा चरण बताया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओकावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। महिला डबल्स में प्रिया कोन जेंगबांग और श्रुति मिश्रा तथा पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय आज कोर्ट में उतरेंगे। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे। यादों की महफिल।

शैलेंद्र के बोल, किशोर कुमार की आवाज, उन्हीं का संगीत, फिल्म का नाम दूर गगन की छांव में, किशोर कुमार की उदास कहानी, यादों की महफिल।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किशोर दान एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोर दा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोर दा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

देवर की आवासी श्यामल मित्रा का संगीत अमानुष फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी राहुल देव बर्मन, फिल्म अमर प्रेम।

0: अमर प्रेम फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में था। आनंद बख्शी की बोल थी आर डी बर्मन की तर्ज। एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। मजबूर फिल्म का ये गाना था किशोर कुमार के उदास नव में। विविध भारती के कार्यक्रम में यादों की महफिल। इस बार मदन मोहन की तर्ज किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम एक मुट्ठी आसमान।

किशोर कुमार के उदास नख में अलग अलग संगीतकारों के साथ। फिल्म का नाम निशान, राजेश रोशन का संगीत।

0: यादें।
1: कितने रंग हैं, किशोर कुमार की आवाज के एक रंग उदासी का भी है। किशोर कुमार को हमेशा मस्ती से, ऊधम से, शरारत से और कॉमिक अंदाज से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जिंदगी का एक जरूरी रंग उदासी है और यहां किशोर कुमार खूब खिलते हैं। अनजान और प्रकाश मेहरा के बोल।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुरीला सफर।

0: सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। राष्ट्रीय लोकदल के सांसद चंदन चौहान ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों के बीच मंगल मिलन जैसी बातचीत समन्वय और संवाद को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। श्री चौहान ने बताया कि बैठक के दौरान नेताओं ने ग्लासगो में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने आज कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के मंगल मिलन बैठक में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि ने विवादास्पद बयान दिया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2026 के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉ. मांडविया ने युवा खिलाड़ियों को निरंतर सफलता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को एशियाई खेल 2026 और ओलंपिक खेल 2028 की तैयारियों के लिए शुभकामनाएं दी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओगावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज चहलुम जुलूस को देखते हुए दक्षिण दिल्ली में विशेष यातायात व्यवस्था और मार्ग परिवर्तित किए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि दोपहर 2 बजे से अरबिंदो मार्ग, लोधी रोड, रिंग रोड, बीपी मार्ग और उनसे जुड़ी सड़कों पर यातायात जाम होने की आशंका है।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी परीक्षा विवाद पर घमासान जारी, भाजपा और छात्रों की सीबीआई जांच की मांग के बीच मुख्यमंत्री ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। दिशोम गुरु शिबु सोरेन की आज पहली पुण्यतिथि, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने किया नमन। रामगढ़ में अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री करेंगे प्रतिमा का अनावरण। श्रावणी मेला 2026 की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, आईजी अभियान ने कहा ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से हो रही है 2400 घंटे निगरानी। जमशेदपुर में डिजिटल बीट पुलिसिंग की हाईटेक शुरुआत, 206 बीटों में क्यूआर कोड स्कैन कर गश्त करेंगे पुलिसकर्मी। एसएसपी ने कहा वरिष्ठ अधिकारी करेंगे रियल टाइम मॉनिटरिंग। और मौसम विभाग ने पलामू, चतरा और बोकारो सहित राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर रांची में छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना आज 11वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारी छात्र परीक्षाओं में कथित धांधली की सीबीआई जांच और आयोग में बड़े प्रशासनिक सुधारों की मांग पर अड़े हुए हैं।
1: हेमंत वन और हेमंत टू सरकार में जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाएं हुए हैं वो सब में भ्रष्टाचार हुए हैं, और भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण अभय कुमार तिवारी जैसे एजेंट को पकड़ाने से उजागर हुआ है। तो हम लोग मांग करते हैं कि हेमंत वन और हेमंत टू सरकार में जितने भी परीक्षाएं हुए हैं वो सबका सीबीआई से जाँच हो।
0: छात्र नेताओं ने स्पष्ट किया है कि मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। आंदोलन को और तेज करते हुए छात्र संगठनों ने आगामी 7 अगस्त को विधानसभा मार्च का बड़ा ऐलान किया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराते हुए कहा कि पिछले 7-8 सालों में आयोग में भारी भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है और इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से होनी चाहिए।
2: जेपीएससी के जो मेंबर हैं वो कांग्रेस के सदस्य हैं, जेपीएससी के जो मेंबर हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं। आप इससे ज्यादा जो है ढफोर सिंह की नीति कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का क्या कर सकते हैं। हमारी संवेदना उनके साथ। आज जो कांग्रेस विधायक दल का नेता है सीबीआई के रडार पे है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट सीट को बदलने का वो सबसे बड़ा गुनाहगार है।
0: इधर जेपीएससी 14वीं प्रारंभिक परीक्षा विवाद पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा कदम उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्या कुमार की अगुवाई में बनने वाली यह समिति आंदोलनरत छात्रों से सीधे संवाद कर 1 से 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस बीच सत्ताधारी झामुमो ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार झारखंड के युवाओं का अहित किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। पार्टी प्रवक्ता विनोद पांडे ने भरोसा दिलाया है कि जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाएगी और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
3: झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके आंदोलन के साथ है और सरकार को हम लोगों ने बोला भी है। आज हेमंत सोरेन जी सिर्फ इस राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। तो उनका भी दायित्व तो बनता है, उनका भी जो कर्तव्य बनता है वो उसको निभाने का काम कर रहे हैं। जेपीएससी के अंदर में चाहे जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त सजा उनको मिले, इस पक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है और सरकार।
0: झारखंड आंदोलन के महानायक और पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबु सोरेन की पहली पुण्यतिथि आज पूरे राज्य में श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। मुख्य कार्यक्रम रामगढ़ के नेमरा लुकैयाटांड में आयोजित है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुजी की अदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। राज्य के सभी 24 जिलों में भी श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जा रही हैं। उपराजधानी दुमका के खिजुरिया स्थित आवास पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उनके पुत्र व विधायक बसंत सोरेन और जामा विधायक लुइस मरांडी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया। नेताओं ने दिशोम गुरु के जल, जंगल और

0: जमीन की रक्षा के संकल्प को आगे बढ़ाने की बात कही।
1: मैं अगर राजनीतिक चेतना देने का काम किए हैं तो निश्चित रूप से बाबा ऋषभ गुरु को ही श्रेय जाता है। और आज आदिवासी लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आदिवासी समाज आगे बढ़ा है।
0: ऋषभ गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्रियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उनके सामाजिक योगदान को याद किया। संजय सेठ ने गुरुजी के नशा मुक्ति अभियान, समाज कल्याण और झारखंड आंदोलन के जीवन संघर्ष को हर देशवासी के लिए प्रेरणादायक बताया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर के ऐतिहासिक श्रावणी मेला 2026 के सुरक्षित संचालन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने रांची में बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम जलार्पण के लिए पूरे मेला क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन और CCTV कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जा रही है।
2: का शुभारंभ हो चुका है कि हम लोगों ने लगभग 14,000 फोर्सेस का डेपुटेशन देवघर और दुमका के अंदर किया गया है और इसमें NDRF की टीम भी लगी है शिवगंगा के आसपास और CRPF की 5 कंपनी लगाई गई हैं जिसमें एक महिला कंपनी है। एक कंपनी को केवल मंदिर में इवैक्यूएशन के लिए लगाया गया है। QRTs काफी बनाई गई है ताकि कोई भी आपातकालीन सिचुएशन हो उसका निपटारा हो सके।
0: जमशेदपुर पुलिस ने अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए QR कोड आधारित डिजिटल बीट पुलिसिंग सिस्टम की शुरुआत की है। पूर्वी सिंहभूम जिले को कुल 206 शहरी और ग्रामीण बीटों में बांटकर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। SSP एहतिशाम वकारिब ने बताया कि इस हाईटेक व्यवस्था के तहत गश्ती दल चिन्हित स्थानों पर लगे QR कोड को स्कैन करेंगे जिससे वरिष्ठ अधिकारी रियल टाइम में उनकी लोकेशन की डिजिटल मॉनिटरिंग कर सकेंगे।
3: पेट्रोलिंग हमारी चल रही है उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम इन्हांस के लिए डिजिटल बीट पुलिसिंग का शुरुआत किया है और पूरे शहर को ग्रामीण क्षेत्र को 206 बीट में बांटा गया ताकि हमारी जो गश्ती है उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए। 5 साल के आंकड़ा उसका आधार पे क्राइम हॉट स्पॉट की मैप की गई है और जो भी इस तरह का अफेक्टेड जगह है इन सब जगहों पे लगाएंगे।
0: रांची नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस का विरोध में अपर बाजार के दुकानदार लामबंद हो गए हैं। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में व्यापारियों ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा का कहना है कि नगर निगम का यह फैसला कारोबारियों के हितों के खिलाफ है और इसके विरोध में चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है।
4: व्यापारी के मत से ही इतने सारे रोजगार सृजन होते हैं, इतना सारा जो टैक्स का कलेक्शन होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस फरमान को पूरा करेगी क्योंकि इससे वहाँ पर व्यापारी दहशत होगी और अभी जो भय का माहौल है तुरंत इस बात को निरस्त करना ही होगा।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 112 अंक गिरकर 78,527 जबकि निफ्टी 239 अंक की गिरावट के साथ 24,535 पर कारोबार कर रहा था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,27,000 रुपये प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राज्य के पलामू, चतरा और बोकारो सहित कई जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग की ओर से इन इलाकों में वज्रपात और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। JPSC परीक्षा विवाद पर घमासान जारी। भाजपा और छात्रों की CBI जांच की मांग के बीच मुख्यमंत्री ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। दिशम गुरु शिबू सोरेन की आज पहली पुण्यतिथि। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने किया नमन। रामगढ़ में अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री करेंगे प्रतिमा का अनावरण। श्रावणी मेला 2026 की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। आईजी अभियान ने कहा, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से हो रही है 24 घंटे निगरानी। जमशेदपुर में डिजिटल बीट पुलिसिंग की हाईटेक शुरुआत। 206 बीटों में क्यूआर कोड स्कैन कर गश्त करेंगे पुलिसकर्मी। एसएसपी ने कहा, वरिष्ठ अधिकारी करेंगे रियल टाइम मॉनिटरिंग। और मौसम विभाग ने पलामू, चतरा और बोकारो सहित राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हक्का बक्का दुनिया पागल है अलबत्ता।
1: अरे डाली टूटी फल है कच्चा बाग लगाया पक्का ये भी हक्का।
2: किस फिल्म का है ये गाना ये बताइए।
0: चाहे हम चाहे तुम कल की है खबर किसको, चाहे हम है, चाहे तुम कल की है खबर किसको समझे।

चूमे। अरे दूर फिटे मुंह चलते जाना, देखे धक्का आई आधी टूटा पत्ता, डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का, ए भी हक्का, हक्का बक्का, दुनिया पागल

0: मैं हूँ इंसान वो है कुत्ता, कहता हूँ पते की सुन। ओ सोनिया मैं हूँ इंसान वो है कुत्ता, कहता हूँ पते की सुन। वो भी काटे मैं भी काटूं, यहाँ सबको है अपनी धुन। अरे भागो बंबई से कलकत्ता, चलते जाना देके धक्का, आई आधी टूटा पत्ता, डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का।
1: क्या हो गया?

0: भाई इस गाने को सुनकर क्या कहेंगे आप, मजरूह सुल्तानपुरी के ये बोल हैं। कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है और अपने जज्बात का इजहार भी किया है। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि उनके फेवरेट गाने हैं एक लड़की भीगी बागी सी, अजनबी, तुम जाने पहचाने से लगते, और कश्ती का खामोश सफर। एक श्रोता और हैं जिन्हें बिंदु रे बिंदु गाना बहुत पसंद है, ये जो गाना हमने आपको सुनवाया इसके बारे में भी कई श्रोताओं ने अपनी बात कही है। और इसके अलावा किशोर कुमार की गायन में मनोरंजन ही नहीं करते, अपनी आवाज़ के जादू से हम सबके दिलों में जगह बना लेते हैं, ये किसी ने कहा है। वो दुनिया से ज़रूर विदा हो गए मगर उनके गीतों को क्या हम अपने दिल से विदा कर सकते हैं, ये भी एक बात। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखती हैं कि किशोर दा के सामने मौजूद होना ये किसी भी कला प्रेमी के लिए जीवन का सबसे बड़ा और जादुई पल हो सकता है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं, लहरों की तरह यादें, मेरा जीवन कुछ काम ना आया, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, ये तमाम गाने। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि खंडवा में हम उनके घर उनके समाधि स्थल तक गए और इन जगहों के दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि किशोरदा अगर आज होते तो खंडवा में दूध जलेबी का आनंद जरूर लेते। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अपने घर को लेकर उनका अपना एक अलग सपना था जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर में एक आर्किटेक्ट को बुलाया और कहा कि मेरा एक ऐसा घर बनाओ जिसके हर कमरे में पानी हो और पूरे घर में नाव चलाकर एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाए। आर्किटेक्ट भाग खड़ा हुआ। ये घटना जो है ये बहुत ही दिलचस्प है, पर आज के इस कार्यक्रम में ना जगह है ना सही समय है इसे बताने का। दरअसल उन्होंने उस आर्किटेक्ट से एक तरह का बदला लिया था, उसे सताया था। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। और किशोरदा एक सलाह दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुएं में कूद के मर जाना यार, तुम शादी मत करना। अब आप लोग विविध भारतीय फेसबुक पेज पर जाकर बताइए कि ये सलाह सही है या नहीं है।
1: कुएं में ठंडा जल में नहाने से गला ठोचरा बैठ गया।

0: यार। कोई बता सकता है कि ये किस फिल्म का गाना है?
1: कहने लगा
2: ये मुंह और मसूर की दाल पे, निकल जा निकल जा निकल जा यहाँ से चंडाल के बच्चे।
1: उसका भाई था अक्सर भारी,

कहां से पहुंचे और कहां चले गए हुनू लुलू, कुएं में कूद के मर जाना यार तुम, शादी मत करना परिवार, फिल्म का ये गाना बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। शैलेंद्र का ये गीत और सलील चौधरी का संगीत, इस गाने के बोल एक कागज पर लिखकर देखिए और जरा सोचिए कि कैसे लिखे गए होंगे ये गाने और कैसे इनकी रिकॉर्डिंग की गई होगी। 1956 में आई थी ये फिल्म और बिमल रॉय की ये फिल्म थी और बिमल रॉय निर्मित इस फिल्म में किशोर कुमार का स्पेशल अपीयरेंस था, ये भी हमारे एक श्रोताओं, हमारे कुछ श्रोताओं में से किसी एक ने कहा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोरदा किस तरह से किसी भी गाने को मजेदार बना देते हैं कि सुनकर बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 50-60 साल पहले लड़कियों के लिए अगर शादी ना करनी होती तो भी करनी पड़ती थी, आज की बात कुछ अलग है। एक श्रोता है जिन्होंने सारी बात को समअप कर दिया है कि शादी वो लड्डू है जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए, इसलिए शादी करना ही बेहतर है, ये उनका विचार है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय सिनेमा के सबसे बहुमुखी और प्रभावशाली कलाकारों में से एक वो माने जाते हैं। एक और श्रोता का कहना यह है कि उनके 3 पसंदीदा गानों को सिलेक्ट करना जरा मुश्किल है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन आज आपने किया है, पहले तो उदास गाने बजाए और उसके बाद ऐसे मस्ती भरे गाने लगाए कि एक श्रोता कह रही है कि ऐसे गीत लाए हैं जो आज हमने इनमें से कुछ पहली बार सुने हैं। ठीक है भाई, अब जरा ये गाना सुनिए और बताइए रुपहले पर्दे पर इस गाने में कौन कौन नजर आते हैं और किशोर कुमार इस गाने में किसकी बैंड बजा रहे हैं।

0: सवरिया, ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया,
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया।

करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय लटकट रंगीले आवरिया आंखें भी लगी दिल पे जैसे कटरिया।

भाई खत्म हुआ ये हुड़दंग का गाना, हाफ टिकट फिल्म का गाना शैलेंद्र के बोल। और एक श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है, इस तरह से ना करें क्षेत्रवाद। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग ही ऐसा हुड़दंगा कार्यक्रम कर सकते हैं। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं फिल्म हाफ टिकट शैलेंद्र जी के बोल हैं। और हाँ एक चीज आपसे कहनी है कि कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने जोश जोश में सखी सहेली वाली या आज शाम के 4 बजे पिटारा वाले कार्यक्रम में जाके अपने कमेंट कर दिए और किशोर कुमार के फेवरेट गाने वहां चिपका दिए। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने जाके वहां पर आपके कमेंट्स देखे तो मुझे लगा ये कुछ कमेंट्स वहां पर क्यों हैं। तो एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई इस गाने में किशोर कुमार प्राण की बैंड बजाते हैं, क्या तो शानदार मुकाबला है दोनों महान कलाकारों का इस गाने में। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि किशोर कुमार की बहुमुखी प्रतिभा का शानदार उदाहरण है और किशोर कुमार ने ही महिला और पुरुष स्वर में भी गाया है और प्राण के स्वर में भी गाया है। और इसके अलावा और भी तमाम श्रोताओं ने अपनी बातें कही हैं लेकिन आज गाने भी ज्यादा हैं और आप सभी के जज्बात जिस तरह से आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हौसला बढ़ाने की भी बात है। और ये भी कि किशोर कुमार के प्रति जो आपका प्रेम है वो कितना ज्यादा है। अब एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि पहले हास्य गीतों का एक कार्यक्रम आया करता था विविध भारती पर, आज के इस कार्यक्रम ने उसकी याद दिला दी है। इसके अलावा एक श्रोता का कहना है कि जब वो हास्य गीत गाते थे तो लगता था उन्होंने गाने को किसी धागे की तरह उलझा दिया है और यही धागा उलझाना उनकी विशेषता थी। अब 2 गाने बैक टू बैक आएंगे, बल्कि गानों के अंश बैक टू बैक आएंगे, आपको इनकी फिल्मों के नाम बताना है।

तुम के जवाब दिए चलती का नाम गाड़ी और पड़ोसन फिल्म के ये गाने। और चलती का नाम गाड़ी के गाने के बारे में एक श्रोता लिखती है कि क्या तो एक्सप्रेशन है, मधुबाला के लिए गा रहे हैं पर लगा ऐसा जैसे उनके लिए उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्या तो शानदार फिल्म है चलती का नाम गाड़ी, कितने बार आपने देखी है जरा बताइएगा तो हम ये अंदाजा लगा पाए कि चलती का नाम गाड़ी हमारे आज सुन रहे श्रोताओं में सबसे ज्यादा कि बार किसने देखी है। एक तो ये बात हो गई और दूसरी बात यह है कि आज जो मैंने इबारत लिखी थी किशोर कुमार के हुड़दंगे गानों के बारे में, क्या कोई गिनकर बता सकता है कि उस पूरी इबारत में कुल कितने गाने समाये हुए हैं। और अब किशोर कुमार का ये बेतहाशा हुड़दंगा गाना, फिल्म का नाम आपको है बताना।

क्या तो शानदार गाना है, नई दिल्ली फिल्म का ये गाना। भाई आज की इबारत पढ़िए और जल्दी से हिसाब लगाकर बताइए कि आज की इबारत में मैंने जो शब्द लिखे हैं, गानों को जोड़कर जो इबारत बनाई है, उसमें गानों की कुल संख्या कितनी है, जरा हम देखें तो कि आप लोग सही सही अंदाजा लगा पाते हैं या नहीं, क्योंकि शब्द शब्द पर गाने समाये हुए हैं। तो कुछ श्रोताओं के जवाब आए हैं, कुल 13 गीत हैं जो कि गलत जवाब है, एक और हैं जिन्होंने 14 गीत लिखा है वो भी गलत जवाब है। तो जरा ध्यान से पढ़िए और आज का ये कार्यक्रम, एक कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा तो खत्म हो चुका है। तो एक और श्रोता है जिन्हें 16 गाने इस गाने की इबारत से मिले हैं, तो बहुत करीब पहुंच चुकी हैं वो। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भाई घर से बाहर तो आज नहीं निकल सकते क्योंकि आज हम सुरीला सफर सुन रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि हम तो अभी घर पर ही हैं, निकलेंगे तो रौनक देख लेंगे, घनश्याम भाई का नाम भी है इस गाने में। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि न्यू दिल्ली फिल्म का ये गाना शंकर जयकिशन का संगीत है। एक और श्रोता है जो देर से जुड़े

0: लेकिन इस कार्यक्रम में उनको बिल्कुल मजा ही आ गया है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बारिश भी ऐसा ही कह रही है कि भाई अरे भाई निकल के आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से। तो ये किशोर कुमार का जादू है। और अब जो गाना आ रहा है वो किचन में खाना पकाते हुए फिल्माया गया गाना है। और आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किचन में खाना पकाते हुए सबसे बड़ा ब्लंडर आपने जो किया था वो क्या था और कब किया था, क्या पका रहे थे आप?
1: फूंक फूंक कर

ये चूल्हा, ये चौका, ये झाड़ू, ये बर्तन, ये आटा बटाटा, ये गड़बड़ गुलाटा और ये और वो और घर तेरी की। पर सब दिन हो तन एक समान पंछी, काहे होत उदास। एक रोज

चार दिन होंगे गरीबी के, जिस दिन खलास गरम गरम गरम गरम कचौरी पूरी

भाई बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और इस तेजी के साथ स्क्रीन स्क्रॉल कर रही है कि समझ नहीं आ रहा किसने क्या लिखा है। एक श्रोता है जो ये कहते हैं क्यों ना रोटियों का हम पेड़ लगा लें, आम तोड़ें, रोटी तोड़ें, रोटी आम खा लें। वाह भाई वाह वाह वाह वाह। यहां मुझे लगता है कि ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि ये जो शैलेंद्र के बोल कोट किए हैं इन्होंने, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़ें, रोटी तोड़ें, रोटी आम खा लें, ये किशोर कुमार का गाया हुआ एक गाना है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये कौन सा गाना है? जिन्होंने पोस्ट किया वो प्लीज मत बताइएगा। एक और श्रोताएं जो कहती हैं कि 19 गाने हैं आज की इस इबारत में, एक श्रोताएं जो कहती हैं कि आज की इबारत में 20 गाने हैं, एक श्रोता नाराज हैं कि सुरीला सफर की पोस्ट आते ही अपने विचार व्यक्त करता हूं पर आपको अपने सवालों में ही दिलचस्पी रहती है, शायद इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करके हमने गलती कर दी है। भाई आपका कमेंट दिखानी, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं के कमेंट्स शामिल करने की कोशिश करते हैं और देखिए कि लगातार कमेंट्स पढ़ रहे हैं गानों के बीच में। ये कमेंट दिखा और फौरन पढ़ा, एक श्रोता है जिन्होंने गाजर का हलवा बनाया और दूध की बजाय चावल पता नहीं क्या उन्होंने जोड़ दिया और हलवे की बैंड बज गई। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रही हैं कि उन्होंने चाय में नमक डाल दी थी और मेहमानों को परोस भी दी थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रही हैं कि कुछ कुकर में खिचड़ी बन रही थी, गैस चूल्हे पर रखकर भूल गया, उसका ढक्कन उड़ा, खिचड़ी जाकर दीवारों और छत पर लग गई, हे भगवान। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि पहली बार जब आटा गूंधा तो ढेर सारा पानी डाल दिया था और एक ही बार में वो गीला हो गया था। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि इस गाने के साथ मेरा भी एक किस्सा है। वैसे तो कभी कभी पापा छुट्टी के दिन खाना बना देते थे और उस दिन यही गाना गाते थे, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि हमारी दाल तो गल गई है और अब हम रोटी पका रहे हैं, वही वाह। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि भाई 18 गाने आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस इबारत में हैं और ये जो किचन के ब्लंडर्स हैं ये पढ़कर बड़ा ही मजा आ गया। बल्कि एक और मजेदार किस्सा ये हुआ है कि के मुंगोचो घनश्याम जी, इस तरह की जो पंक्ति है अरे भाई निकल क्या घर से वाले गाने में, तो बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनका नाम घनश्याम है, उनको बड़ा मजा आ गया आज के कार्यक्रम में इस गाने की इस लाइन को सुनकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और किशोर का एक और हुड़दंगा गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम आप बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आज इतने सारे हुड़दंगे गाने जो हमने बजाए उसमें से आपका पसंदीदा कौन सा गाना था, और अगर कोई भयंकर हुड़दंगा गाना हमने मिस कर दिया तो वो भी बता दीजिए।

को मिस कर रही हूं। इसके अलावा झुमरू गाना नहीं बजाया गया और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है, पर एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी तोड़े रोटी आम खा लें, ये गाना मुसाफिर फिल्म के गाने की पंक्तियां हैं। मुन्ना बड़ा प्यारा ये गाना है जिसमें इतनी सुंदर पंक्तियां आती हैं। शैलेंद्र लिखते हैं कि एक दिन वो माँ से बोला, क्यों फूकती है चूल्हा, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी तोड़े रोटी आम खा लें, काहे कले लोज लोज तू ये झमेला, अम्मी को आई हंसी, हंस के वो कहने लगी, लाल मेहनत के बिना रोटी किसके घर पर पकी। ये है जादू गीतकारी का, ये है जादू शैलेंद्र का। किशोर कुमार का एक बहुत ही प्यारा गाना और उसकी बहुत प्यारी पंक्ति, शुक्रिया जिस भी किसी श्रोता ने इसका जिक्र किया है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि भाई चलते चलते ये जरूर बता दीजिएगा कि कुल कितने गानों से आपने इबारत सजाई थी। बहुत सारे श्रोता अलग अलग आंकड़े लिख रहे हैं, तो मैं कहूँगा तकरीबन 18 गाने तो मुझे ही नजर आए थे और आप लोग ढूंढ लीजिएगा क्योंकि अलग अलग शब्दों से भी गाने सज जाते हैं। तो बहुत सारे श्रोताओं को आनंद आ रहा है और खाना पकाते हुए दाल गलेगी जैसे गाने सुनते हुए किसी के दाल चावल बन गए, किसी की रोटी और किसी की हैदराबादी बिरयानी। और कार्यक्रम का आखिरी गाना फिल्म का नाम बताइएगा और साथ में देखिए संगीतकार भी यहां बदल जाते हैं और ये भी कि इस गाने के जरिए दुनिया को देखने की नई नजर आपको मिलेगी।

0: favorite.
1: ये वक्त ये जमाना जब ना लगे सुहाना फिर मेरे पास आना, खादिम हूँ मैं पुराना, रखता जो कुछ नजर है

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार, तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी, और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सदन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी

0: संगीत चल रहा था तो अभिनय की तरफ रुझान कैसे हुआ था?
1: एक्चुअली संगीत के वजह से हुआ
0: जी,
1: क्योंकि स्कूल में फिर कॉलेज में जहां भी हम लोगों के म्यूजिकल प्लेज होते थे वो मुझे इसलिए कास्ट कर लिया जाता था कि मैं गा सकती हूँ।
0: वाह, और अलग से गाने की परफॉर्मेंसेज नहीं करती थी?
1: नहीं, वो तो कॉलेज में एक्चुअली मैं गाना ही मतलब रेंडेवू आईआईटी के जो फेस्टिवल्स थे फिर बिट्स पिलानी में सब में मैं मतलब कॉलेज को रिप्रेजेंट करती थी गाने में। और स्कूल में जब थी तो मैं वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत गाती थी, विटनी ह्यूस्टन। मुझे कहा था मेरे इतने छोटे छोटे ऐसे कर्ली ऐसे बाल थे और सब मुझे कहते थे कि यू नो इंडियन विटनी ह्यूस्टन।
0: क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो वेस्टर्न से भी कनेक्शन रहा? और
1: मराया कैरी, विटनी ह्यूस्टन ये सब गाती थी मैं।
0: वाह वाह वाह। पहली बार अभिनय कब किया था?
1: स्कूल में। स्कूल के जो हाउस कंपटीशन के प्लेज नहीं होते थे और दुर्गा पूजा।
0: वाह वाह, ये तो बहुत महत्व।
1: बंगाली जो क्या होता है कि मतलब वो पूरा महीना जो हम लोग रिहर्सल करके फिर दुर्गा पूजा में परफॉर्मेंस। तो मेरा एक्चुअली पहला नाटक जिसमें मैंने मेन रोल मतलब सोलो रोल किया फुल प्ले में वो दुर्गा पूजा का एक नाटक था, वो बंगाली में था।
0: अरे वाह वाह, तब क्या उम्र रही होगी आपकी?
1: 10 साल।
0: क्या बात है। हाँ, इतना सारा
1: म्यूजिक उससे पहले से चल रहा था जिंदगी में, बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई मतलब हाँ एक्टिंग का इंट्रोडक्शन हुआ।
0: और कब ये लगा कि इसे करियर चॉइस के रूप में रखा जा सकता है?
1: ये बाय एक्सीडेंट हुआ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी।
0: और आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी?
1: जी। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रोफेशन बनाऊंगी, क्योंकि क्या होता है इंडियन मिडिल क्लास होम्स में कि आप ये सब हॉबीज रखो लेकिन प्रोफेशन, क्योंकि मेरे फादर भी इंजीनियर और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे और माय मदर यूज्ड टू टीच, तो वो उनका यही था कि हाँ मतलब आप कल्चरली एक वेल राउंडेड एजुकेशन आपका होना चाहिए और ये हॉबीज हो सकती है लेकिन प्रोफेशन तो आपकी साइंस या इंजीनियरिंग यही कुछ होगा। तो ये ना बाय एक्सीडेंट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिक को या एक्टिंग को प्रोफेशनली करूं कुछ। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो एक बहुत बड़ा जर्मन प्रोडक्शन यहाँ पे मतलब आया था इंडिया में और उन लोगों ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जो उनके प्रोडक्शन का पार्ट, और मैं सिलेक्ट हुई थी। और उस समय मतलब बहुत नामी नामी एक्टर्स जो एनएसडी के ग्रेजुएट्स हैं एंड ऑल वो पार्ट थे उस प्रोडक्शन का।
0: वाह,
1: तो दैट एक्चुअली चेंज्ड माय मतलब दिमाग खराब हो गया।
0: अच्छी खासी लड़की जो एकेडमिक्स में जा रही थी,
1: मतलब साइंस की जो है बैंड बज गई।
0: क्योंकि आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी।
1: बिल्कुल। और वो उस वर्कशॉप के बाद फिर मैंने बैरी जॉन के साथ और एक वर्कशॉप और कांड हो गया, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में समर वेकेशंस में और एक वर्कशॉप किया और उसमें और इतना ज्यादा मजा आया। मतलब ठंड, एक तो मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है।
0: अच्छा।
1: ठंड में किसी कोल्ड यूनिवर्सिटी में यूएस में जाके मैं लैब में बैठ के रिसर्च करूंगी और ये देखो मतलब स्टेज पे हम गाना गा रहे हैं और एक्टिंग, क्या मजा है।
0: वाह वाह। जब ये बात घर वालों को पता चली तो क्या रिएक्शन थे? टीचर मम्मी जी और कॉरपोरेट पापा,
1: उनको मतलब हार्ट अटैक आया। और उसका पूरा, लेकिन मैं बिगड़ चुकी थी तब तक।
0: तब तक तो काम पूरा।
1: और द थिंग वाज कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो 100% स्कॉलरशिप, तो इसीलिए मेरे पिताजी और मम्मी ये नहीं कह सकते थे कि तुम्हारे एजुकेशन के लिए हम तुमको पैसे नहीं देंगे।
0: पैसे तो वहाँ ऑलरेडी आ रहे थे।
1: तो वो फुल स्कॉलरशिप मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी बंद हो गई। कहती एक बिगड़ गई है दूसरे को नहीं बिगड़ने देंगे।
0: तो वो सीधी राह पर चली गई।
1: अरे वो अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: वो मतलब शी इज

0: ब्राइट एंड वो कमाल की है, बट वो भरतनाट्यम सीख रही थी, उसने अरंगेत्रम किया, लीला सैमसन जो बहुत ही नामी और
1: गुरु है।
0: कलाक्षेत्र के हेड भी रह चुके हैं, उस समय वो दिल्ली में थे और उनसे सीख रही थी और बहुत सीरियसली डांसर बनना चाहती थी और लेकिन वो अभी भी कहती है कि अरे तुमने
1: तुम्हारी
0: दीदी
1: वजह से
0: दीदी को करने दिया लेकिन मुझे नहीं।
1: क्या बात है, क्या कितनी सुनहरी यादें हैं लेकिन इन तमाम चीजों की, कि आप जिंदगी में पढ़ते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और फिर होता कुछ और है।
0: और फिर एनएसडी के बाद मेरे पिताजी हर 2 साल में ये कहते थे कि अच्छा चलो ये हो गया, अभी तुम एमबीए कर लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सचर है कि केमिस्ट्री के बाद तुमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इन सब में तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और मैं एक्चुअली जीमैट के लिए पढ़ती भी थी,
1: अच्छा
0: जैसे मैं सीरियसली कोई एग्जाम देने बैठूंगी ऐसा लगता था कि अभी बैठ जाऊं, एक बहुत अच्छी फिल्म मिल जाती थी। फिर पापा को मैं कहती थी अरे मां पापा अभी देखो ये मिल गया है, अब ये करते हैं। फिर मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी बीच में 5 साल के लिए, ब्रिक लेन करके एक फिल्म की मैंने और उसमें मुझे ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला, जूडी डेंच, एन हाथवे, इन सबके साथ मेरा भी सेम प्लेटफॉर्म में नॉमिनेशन था। तो उस समय मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गई कुछ सालों के लिए, वहाँ वेस्ट एंड में एक म्यूजिकल प्ले भी किया था इंग्लैंड करके। तो उस समय मैं गई थी लंदन बिजनेस स्कूल में ये पता करने के लिए कि चलिए अभी एमबीए किया जाए,
1: मजा आ रहा है
0: क्योंकि
1: मुझे ये
0: पापा,
1: सुन के।
0: हाँ पापा ने ऐसा।
1: हाँ
0: तो मैं वहां जब गई और उनके
1: हाँ
0: काउंसलर से मिली तो मेरा करियर ग्राफ और ये सब देख के और मुझसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे स्टूडेंट्स को आकर एक इंस्पिरेशनल टॉक दे दो। तो मैंने कहा हाँ, मतलब मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए। कहते नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
1: आप यहां पढ़ो मत।
0: तो मैं लंदन में वेरियस बिजनेस स्कूल्स में इंस्पिरेशनल टॉक दे के अपने पॉकेट मनी कमा रही थी।
1: वाह वाह वाह, वहां भी पढ़ने वाला मामला तो बना ही नहीं।
0: नहीं, और मेरे पास एक वर्क परमिट था, सो आई वॉज लाइक, मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे एमबीए करने की जरूरत नहीं है, वो 20 स्कूल्स तो मुझे बुला रहे कि आप यहाँ आके इंस्पिरेशनल टॉक्स दो।
1: फिर मामला टल गया।
0: फिर हाँ परमानेंटली मामला टल गया।
1: मतलब ये है कि ये माना जा सकता है कि डेस्टिनी आपको दूसरी तरफ खींच रही थी।
0: हाँ ऐसा, दैट इज द थिंग दैट वो आई रियली बिलीव दैट लाइफ इज वॉट हैपन्स टू यू।

0: फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे क्या काम
1: हाँ,
0: करता
1: एक
0: है।
1: चीज है कि ये शायद मुझे ट्रेनिंग ऑफ एक्टिंग ने दी है. नसीर सर के क्लासेस जो है, नसीरुद्दीन शाह, जिनको मैं बहुत बहुत अपना गुरु मानती हूँ एक्टिंग में. मतलब मेरे बहुत गुरुज हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. रॉबिंदा है, बज्जू भाई है, अनामिका अक्सर है, अनुराधा कपूर है. और थर्ड ईयर में जाके एक जो कल्मिनेशन होता है ना, उसमें टुवर्ड्स दी एंड नसीर सर आए और उन्होंने उन सब चीज़ों को एक बहुत साइंटिफिक वे से स्टूडेंट्स को समझाने की. और एक्टर ना बहुत अच्छे हैं हमारे देश में, लेकिन टीचर जो इतने कमाल के एक्टर हैं और इतने कमाल के टीचर है, वो सिर्फ नसीरुद्दीन शाह है.
0: वाह, क्या प्यारी बात
1: तो
0: कही है।
1: मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा. और एक वो चीज जो कहते हैं ना कि हियर एंड नाउ और डोंट थिंक, जस्ट रिस्पॉन्ड टू द मोमेंट एंड लिसन टू योर को एक्टर एंड रिस्पॉन्ड. उसके प्रैक्टिस करते करते करते करते जिंदगी में भी ये हो जाता है कि आप कुछ भी आगे का प्लान मत करो, जो हो रहा है उसी के फ्लो में आप करते रहो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते. मैं पंडित रविशंकर से एक बार मिली थी, क्योंकि अनुष्का मेरी दोस्त भी है, उनकी एक्स हस्बैंड है जो राइट, उनके साथ मैंने एक फिल्म किया था एना कारेनिना, उसमें अनुष्का ने एक गाना कंपोज किया था जो मैंने गाया था. उसी दौरान मैं पंडित जी से एक बार मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि जा हार ता हबे.
0: वाह,
1: ये उन्होंने टैटू में लिख दिया था.
0: क्या बात है, क्या बात है। और वो तो कितनी मीठी बांग्ला बोलते
1: जा हार ता हबे.
0: वाह, कितना सुंदर ये वाक्य है। यहाँ एक गाने की जगह बनाई जाए। अब जब पंडित रविशंकर का जिक्र है,
1: हाँ जी,
0: तो एक सजेशन करता
1: आप, हाँ बिल्कुल वही सजेशन जो आप मुझसे कह रहे थे,
0: हाँ,
1: अलाउद्दीन खान साहब का
0: वो बजा सकते हैं,
1: या
0: माता सरस्वती शारदा, जिसका कनेक्शन उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से है, और वहां से वो रचना उनके शिष्यों से होते हुए जयदेव जी के पास जाती है और फिर वो फिल्म आलाप में आती है।
1: बिल्कुल,
0: ये सुनते हैं, ये समर्पित है उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब को, मैहर घराने के संस्थापक, और पंडित रविशंकर
1: शंकर जी को। हाँ,
0: सुनते हैं माता सरस्वती शारदा।

0: एक बार फिर वापस एनएसडी की तरफ चलते हैं. आपका एनएसडी में एडमिशन हो गया है और आप अपने ड्रीम को परस्यू करने निकली हैं. पीछे की तरफ केमिस्ट्री है.
1: हाँ, तब तक भी ड्रीम नहीं, मतलब तब तक मैंने फिर भी तो, मतलब जब एनएसडी में भी मैं गई तब भी मुझे ये पता नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है या डिजाइनिंग करनी है या
0: डायरेक्शन करना है.
1: हाँ, डिजाइन और डायरेक्शन. और एक्चुअली फर्स्ट ईयर के बाद मैंने सोचा था मैं डिजाइन और डायरेक्शन ही करूंगी, क्योंकि आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाय द सिनेमा दैट आई वॉज वॉचिंग. और मतलब चाहे वो इंडियन सिनेमा हो, कि संत तुकाराम हो या राजा हरिश्चंद्र, जो हमारे पुराने जैसे इंडिया में सिनेमा की जो बिगिनिंग थी, या फिर वो फ्रेंच न्यू वेव हो, पोलिश सिनेमा हो, ये सब देख के दिमाग एकदम
0: हिल गया.
1: हाँ, सत्यजीत रे और मृणाल सेन और मतलब और इंडियन कमर्शियल फिल्म्स भी. और हमारी जो टीचर हुआ करती थी, जो फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स करवा रही थी हमें, गायत्री चैटर्जी, वो एफटीआईआई में भी पढ़ाती थी, वो इतने अच्छे से मतलब समझाती थी और एनालिसिस मतलब करती थी. सो आई वॉज सो मच इन लव विथ. और हमको इंटरनेशनल प्रोडक्शंस देखने को मिलते थे थिएटर में. फिलिप जॉते, मतलब उनका प्रोडक्शन देख के मेरा दिमाग हिल गया था.
0: बिल्कुल.
1: पीना बाउश, ये सब जो थिएटर प्रोडक्शंस हैं. और हमारे एनएसडी में एक रशियन डायरेक्टर आए थे, एक पोलिश डायरेक्टर आए थे हमारे साथ काम करने के लिए. तो जो इंट्रोडक्शन हमें वर्ल्ड थिएटर से भी मिला और इंडियन क्लासिकल फॉर्म से, डांस से, कथकली, ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि यार डिजाइन डायरेक्शन में बहुत इंस्पायर हो गई थी. लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद जब हमें चूज करना होता है तो हमें बच्चू भाई और सब मेरे जो जितने टीचर्स थे उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, तुम एक्टिंग करो. डिजाइन डायरेक्शन कभी भी कर सकते हो बाद में, अगर तुम्हें मन किया तो कर लोगे, पर अभी एक्टिंग लो. तो मैंने अपने गुरु जो है सब उनकी बात मानी
0: और एक्टिंग की तरफ आगे बढ़ती गई. एनएसडी के आपके बैच में कौन कौन लोग थे? आपके बैच में
1: बहुत लोग थे और वो लोग सब मतलब थिएटर कर रहे हैं अपने रीजन्स में. अभी मैं फुल प्लेट लेकर केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई थी.
0: जी जी.
1: और वहाँ बहुत बढ़िया रिस्पांस था और मेरे दो बैचमेट्स जो थे उन्होंने मुझे बताया नहीं, वो ऑडियंस में बैठे हुए थे.
0: वाह वाह.
1: और बहुत साल बाद उनसे मुलाकात हुई और स्क्रीनिंग के बाद वो आए और मैंने कहा ओह माय गॉड, एंड दे फेल्ट सो गुड कि मैंने एक फिल्म बना दी.
0: बिल्कुल.
1: और एक्चुअली ये फिल्म बनाना बहुत मुश्किल भी रहा है फॉर एवरी विच वे, क्योंकि जब मैं इनिशियली मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना तो हमेशा ही मुश्किल होता है. शूटिंग के दौरान भी दिक्कतें आईं, फाइनेंशियल दिक्कतें आईं. जब बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने फाइनली फिनिशिंग फंड्स लेकर, एक और को प्रोड्यूसर लेकर हम फिनिश करने वाले थे, एडिट खत्म हुआ, देन आई गॉट डायग्नोस्ड ऑफ अ टर्मिनल इलनेस. और उसके दौरान मैंने पिक्चर खत्म की, पोस्ट प्रोडक्शन किया उसका. So it was a very difficult process, but then like I said ki I think no pain no gain.
0: और इन तमाम मुश्किलों को, उतार चढ़ावों को सहत कर और उनसे पार होते हुए ये फिल्म पूरी. क्या ये आपका पहला डायरेक्शन था?
1: नहीं, मैंने रोम रोम में करके एक फिल्म बनाई थी
0: इससे पहले. बना चुकी
1: इससे पहले. हाँ, और
0: नवाज थे उसमें.
1: नवाज था उसमें. और नवाज और मैं एक फिल्म शूट कर रहे थे लायन करके, एक बहुत अच्छे ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं गार्थ डेविस, एंड लायन ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है. तो हम दोनों कलकत्ते में साथ में शूट कर रहे थे उसको, एक्टर्स. तो फ्री टाइम पे बात हो रही थी, मैंने कहानी ऐसे उसको सुनाई कि यार ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ वेनिस में. उसको बहुत इंट्रीगिंग लगी, उसने कहा यार तनिष्ठा ये इसको लिखो यार, बहुत कमाल की कहानी है. तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर हम लोग मिलते रहे. नवाज और मैंने एस्को एक्टर्स पहले भी काम किया है और वो मेरे सीनियर भी हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से. हाँ, तो हम मिलते रहे और मैं लिखती गई और फिर उसको मतलब ही रियली लाइक्ड इट.
0: क्या हुआ था आपके साथ रूम में?
1: सुपर नेचुरल स्टोरी थी.

0: नेचुरल।
1: हाँ मतलब वो एक्सपीरियंस। खैर देन मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि उसको मैं बनाऊंगी।
0: राइट
1: मैंने सोचा था हम लिखते हैं, हम दोनों एक्टिंग करेंगे और किसी को देते हैं मतलब। बट ये नवाज ने मुझे कहा कि यार तूने जैसे लिखा है ना, ये तेरे दिमाग से आया है, ये कोई नहीं और नहीं बना सकता। मैंने कहा बट मैंने कभी फिल्म बनाई नहीं है। उसी ने मुझ में ये
0: डाल
1: कीड़ा
0: दिया।
1: इंसर्ट किया।
0: पहले एक्टिंग का कीड़ा ऑलरेडी था,
1: फिर
0: उसके बाद ये एक और आ गया।
1: बनाई ये पिक्चर हम लोगों
0: शुरुआती दिक्कतें क्या थीं?
1: ने। कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इरोस तब बहुत बड़ा स्टूडियो था, वो ऑन बोर्ड आ गया था। दिक्कत बाद में हुई क्योंकि उसके बाद जब हमने फिल्म बना ली, फिल्म बनाने के बाद अगेन बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। लेकिन उसके बाद इरोस वेंट थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, तो उनका दे हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन द फिल्म बट दे वर मतलब सबसे बड़ा स्टूडियो आप सोचो, फिर दे वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। उसके बाद पैंडेमिक आ गई तो सब कुछ बंद हो गया। लोगों की वो स्ट्रगल होती है कि फिल्म बनाने में, ये बनने में इतनी मुश्किल नहीं हुई बट आई कुडंट डू एनी थिंग विद द फिल्म लेटर। मतलब दो तीन फेस्टिवल्स में गई, उसके बाद रिलीज नहीं कर पाए हम।
0: अभी
1: पता नहीं उसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म जो है, एक एंथोलॉजी सीरीज अमेजोन के लिए है, अनपॉज्ड करके उसका एक सेगमेंट रैट अटैट, वो डायरेक्ट किया मैंने। और फुल प्लेट मेरी सेकेंड फीचर फिल्म है जिसको हमने बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अगेन वर्ल्ड प्रीमियर किया। वहाँ मुझे विजनरी डायरेक्टर अवार्ड मिला। फिर
0: वाह
1: फ्रांस में वसूल में हमें पीपल्स चॉइस अवार्ड और क्रिटिक्स स्पेशल मेंशन मिला। केरला मैंने बताया, केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल धर्मशाला, इसमें हमने स्क्रीनिंग की। अभी शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रही है और सेंट जॉन्स मिनियापोलिस में हमने US प्रीमियर की उस फिल्म की।
0: इतना सारा नाम आपकी फिल्म कमा रही है, कैसा लगता है?
1: बहुत ही बढ़िया क्योंकि बहुत ही मुश्किल थी ये फिल्म बनाना।
0: इसका आइडिया कहां से आया था? वो तो एक वेनिस की सुपरनेचुरल कहानी है, आपने बताया,
1: हाँ
0: बस इतना ही एक क्लू छोड़ा आपने। इसका मामला क्या था?
1: ये एक लूजली एक रियल पर्सन पे ही है, जो मतलब मैं क्लियरली उतना नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाएगी। पर मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया इनको, और लेकिन मैंने कुछ लिखा नहीं था। मेरे दिमाग में था कि यार ये बहुत कमाल है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इस कहानी में। पर जब मुझे मेरे जो फर्स्ट प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया अचानक कि छोटी बजट की कुछ भी, किसी को भी लेना है ले लो, जो भी बनाना है बना लो, तब मैंने लिखना शुरू किया। मुझे लगा कि यार ये तो कभी हो नहीं सकता आज की तारीख में, क्योंकि आज आप किसी भी स्टूडियो के पास जाओगे तो उनके मैंडेट्स हैं कि वो किस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं, आपको वो लिखना पड़ता है।
0: यहां तो पूरी आजादी है।
1: और कल हम लोग एक्चुअली इस इवेंट में भी यही बातें कर रहे थे कि पहले ना कमर्शियल सिनेमा भी जब बनती थी, वो उस समय सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है या सोसाइटी जिस चीजों से गुजर रही है, राइटर्स उनका रिफ्लेक्शन ऑडियंस तक लेकर आते थे। मार्केट प्रेशर की, मार्केट ये चाह रही है इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ये नहीं होता था। पर अब वो नहीं है क्योंकि स्टूडियो सिस्टम जो अमेरिका में बहुत सालों से है वो यहां फुल्ली आ गया है।
0: वो कुछ अलग ही रूप में आया है।
1: हाँ वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, तो वो एल्गोरिथम से हमें बताया जाता है कि यार जो है ना मतलब लोग ये चाह रहे हैं तो ये लिखो, ये बनाओ। आजकल हम ये चाह रहे हैं, आजकल थ्रिलर्स चल रहा है, आजकल रोम कॉम्स चल रहे हैं, आजकल यू नो यूथ पे ऐसे फिल्में चल रही है, आज ये सोशल ड्रामा नहीं चलेगा या म्यूजिकल्स नहीं वर्कआउट हो रहा है, ये सब एल्गोरिथम्स बता रही हैं आपको। और उस हिसाब से आप तो जो फ्रीडम होती है आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन की, वो कहीं पे यही बात हो रही थी, हम अपने आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी कैसे इसमें बरकरार रखें। क्योंकि अगर हम आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, बिकॉज
0: बिल्कुल
1: इट इज सो डिफिकल्ट। और मुझे लगता है कि इन फिल्मों के लिए ऑडियंस है, बहुत है, क्योंकि हमारे देश के जो डाइवर्सिटी है उसमें इन फिल्मों के लिए बहुत बड़ा ऑडियंस है। लेकिन जो गेट कीपर्स हैं, जो हमें मदद करते हैं उन तक पहुंचने में, वो पहुंचने नहीं देते हैं।
0: बिल्कुल सही है। यहाँ एक गाना सुनते हैं।
1: बिल्कुल।
0: गाना कौन सा होगा?
1: बिछड़े अभी तो हम,

0: फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूँ, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई है ना। अब बात यह है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
1: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
0: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो
1: है। जी जी जी, और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजोजी के साथ, वहां उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
0: ओके।
1: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे गाना, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
0: अरे अरे।
1: और हम गांव में मतलब रह रहे थे, इतना मजा आया था ना राजस्थान के एक गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर, और पूरी रात हम गाना गाते थे। और सुबह 4 बजे उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6:30-7 बजे से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, उनको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया। वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में, बस यूं ही करके। और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चरें की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर उनकी फिल्म।
0: ऑडिशन से मिली थी?
1: ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी।
0: ओहो हो।
1: हाँ, और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए,
0: जिनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे।
1: मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार्स थे। मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन। बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का। एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वांटेड अ सिंगर। तो मैंने वहीं पे स्कोर किया।
0: क्या बात है।
1: कि और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था। एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म।
0: यू हैव टू सिंग।
1: ओके।

0: তোমার নই, তোমার নই, তোমার নই।
1: क्या सुंदर तो बोल है, मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल,
0: हाँ
1: क्या बात है, क्या बात है, सुंदर।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पद्म भूषण से सम्मानित झारखंड आंदोलन के महानायक और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर मोरहाबादी स्थित उनके आवास पहुंचकर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर दिवंगत दिशोम गुरु की धर्मपत्नी रूपी सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके संघर्षपूर्ण जीवन, योगदान तथा आदर्शों को याद किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज सरायकेला टाउन हॉल में पद्मभूषण दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के निर्देश पर सूबे के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में खूंटी समाहरणालय के सामने जिलाध्यक्ष कुमार ब्रजकिशोर की अध्यक्षता में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण और संवैधानिक धरना प्रदर्शन आयोजित कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पलामू जिले में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की बहाली लिखित परीक्षा के आधार पर कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला ने बताया कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति मैट्रिक के अंकों के आधार पर न कराकर लिखित परीक्षा के आधार पर कराई जाए और परीक्षा का सिलेबस और तिथि जल्द घोषित की जाए। सरायकेला खरसावां जिले के तिरुलडीह थाना क्षेत्र के सपादा स्थित एक गैस गोदाम से हुई एलपीजी सिलेंडर चोरी मामले में पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

शाम की दहलीज पर बैठे हैं तेरे इंतजार में, एक दिया जलता है बुझता है तेरे इंतजार में। पूछती हैं मुझसे अक्सर ये हवाएं तेरा हाल, रास्ते भी थक गए हैं तेरे इंतजार में। आओ आ भी जाओ कि हमने तो जिंदगी लिख दी तेरे इंतजार में। आंखों से मेरी इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी, तुमसे तो कोई राह निकाली नहीं जाती।

पलकों की मुडेरों पे उतर आते हैं चुपचाप, गम ऐसे परिंदे हैं जो पाले नहीं जाते। जब तक तो था उससे बहुत गहरा था रिश्ता, टूटा है तो अब टुकड़े संभाले नहीं जाते। कुछ लोगों की हर दौर में पड़ती है जरूरत, कुछ लोग कभी दिल से निकाले नहीं जाते।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल होता है, टूट कर फिर मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है। जब दूर तक चलो किसी के साथ तो फिर अकेले लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। टूटा हुआ आईना भी किसी ने जोड़ा है क्या, मोहब्बत ने आज तक किसी को छोड़ा है क्या। ये जो सुन रहे हो तुम इतने गौर से मेरी बातें फरियादे, तुम्हारा दिल भी किसी ने तोड़ा है क्या।
1: तुझे

कभी ये दुआ कि वो मेरा है, फकत मेरा, कभी ये डर कि वो मुझसे जुदा तो नहीं, कभी ये इल्तिजा के उसे मिल जाएं सारे जहां की खुशियां, कभी ये खौफ के वो खुश मेरे बिना तो नहीं, कभी ये तमन्ना के बस जाऊं उसकी निगाहों में, कभी ये डर के उसकी निगाहों को किसी ने देखा तो नहीं, कभी ये ख्वाहिश के जमाना हो मुंतजिर उसका, कभी ये वहम के वो किसी से मिला तो नहीं, कभी ये आरजू के वो जो मांगे मिल जाए, कभी ये वसवसा के उसने मेरे सिवा कुछ मांगा तो नहीं।

मुझे ये खुशगुमानी थी कि तुम मेरी सदाओं पर किसी लम्हा पलट कर किसी पल तो मुड़कर देखोगे, बिल आखिर लौट आओगे। मगर कुछ इस तरह तुमने हुनर सीखा नजर अंदाज करने का, मुझसे किनारा करने का, मुझे मायूस करने का। मगर जाने दो, छोड़ो भी, अपनी किस्मत में चाहत नहीं शायद, फकत इतना बता दो कि मोहब्बत हमने की थी ना।

साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।

ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपका रेडियो होस्ट रेडियो दोस्त सैकत चैटर्जी। दोस्तों आइए आज सबसे पहले जान लेते हैं सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। दोस्तों अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 5:35 पर हम सुनेंगे युवाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युवाणी। हम चर्चा करेंगे, वार्ता भी सुनेंगे। वार्ता का विषय होगा इंटरनेट विशेषताएं और इसका लाभ। साथ ही दोस्तों किशोर कुमार, महान पार्श्व गायक किशोर कुमार के जन्मदिन पर हम सुनेंगे उनसे संबंधित गीतों को। इसके बाद दोस्तों शाम 6 बजे हम जुड़ जाएंगे रांची केंद्र से और सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचार खत्म होने के बाद 6:02 पर हम जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी से। इसके बाद दोस्तों 6:30 पर हम सुनेंगे चर्चा, बरसात के मौसम में गौशाला की साफ सफाई कैसे करें। हम सुनेंगे आज की बात जिसमें हम जानेंगे पशुओं का टीकाकरण के बारे में। हम सुनेंगे वार्ता नींबू वर्गीय पौधों की देखरेख। वार्ताकार होंगे डॉक्टर दिलीप कुमार पांडे जो कृषि विश्वविद्यालय चियांकी के कृषि विशेषज्ञ हैं। इनसे बात करेंगे रेडियो साथी संतोष कुमार। दोस्तों साथ ही हम सुनेंगे समसामयिक कृषि कार्य पर आधारित आज की नसीहत, मौसम विभाग से प्राप्त आज का मौसम और पलामू की मंडी से प्राप्त आज का बाजार भाव। छः 6:55 पर हम जुड़ जाएंगे रांची केंद्र से और सुनेंगे

विज्ञापन। 7 बजे का समय होगा रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनने का, और 7:10 पे भी हम रांची केंद्र से जुड़कर सुनेंगे जिले में आजकल। दोस्तों 7:15 पर हम वापस आएंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र पर एफएम के 103 MHz पर, जहां से सुनेंगे फिल्मी संगीत का कार्यक्रम एक रंग। दोस्तों आज एक रंग के तहत हम सुनेंगे मिठुन चक्रवर्ती पर फिल्माए गए गीतों की कड़ी और सुनेंगे हेमंत कुमार द्वारा प्रस्तुत गीतों को। 7:45 का समय होगा खुला आकाश सुनने का, जिसमें हम सुनेंगे राज अलोक सिन्हा से वार्ता, विषय होगा गहराता जल संकट। 8 बजे दिल्ली केंद्र से जुड़ने का समय है दोस्तों, जहां से हम सुनेंगे संसद समीक्षा। दोस्तों 8:15 पे हम सुनेंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से प्रस्तुत फिल्मी संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। साथ ही 8:30 से 8:45 तक हम सुनेंगे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश गान। 8:45 का समय होगा दिल्ली केंद्र से जुड़कर हिंदी समाचार सुनने का, 9 बजे अंग्रेजी समाचार और 9:15 पे दिल्ली केंद्र से ही सुनेंगे उर्दू समाचार। 9:30 पे विविध भारती से सुनेंगे आज के फनकार। 10 बजे संसद में प्रश्नकाल या फिर रजनीगंधा, जो फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम होगा। 11 बजे हम दिल्ली केंद्र से जुड़कर सुनेंगे हिंदी समाचार। 11:05 पे अंग्रेजी समाचार और 11:10 पे आज की सायंकालीन सभा की समापन की जाएगी।

तो आइए दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम शुरू करते हुए युवा दिलों की धड़कन, महान पार्श्व गायक, अभिनेता, निर्देशक किशोर कुमार के जन्मदिन पर सुनते हैं उनके और लता मंगेशकर के गाए अलग अलग फिल्म से आनंद बख्शी के लिखे और संगीतकार आर डी बर्मन के संगीतबद्ध एक गीत।

0: आइए दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम के तहत अब सुनते हैं एक वार्ता, इंटरनेट विशेषताएं और इसका लाभ। वार्ताकार हैं रत्नेश कुमार द्विवेदी।
1: इंटरनेट शब्द को आज सभी लोग जानते हैं, बच्चे हों या बड़े, सभी लोग इसका प्रयोग करना अच्छी तरह से जानते हैं। अगर सही अर्थों में देखा जाए तो आज इंटरनेट हम सभी के लिए आवश्यक बन चुका है। इंटरनेट ने आज बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया है, जिसकी वजह से हमें हर काम बहुत आसान लगता है। 100 साल पहले किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि इंसान किसी ऐसी चीज़ की रचना कर देगा जिससे दुनिया की तमाम सारी जानकारी एक ही स्थान पर बहुत ही आसानी से मिल पाएगी और दुनिया के सभी देश आपस में जुड़े होंगे। इंटरनेट हमारे आज के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आज के समय में इंटरनेट दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेटवर्क बन चुका है। इंटरनेट को आधुनिक और उच्च तकनीकी विज्ञान का आविष्कार भी माना जाता है। दुनिया भर के सभी नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े जा रहे हैं। इंटरनेट को हम नेटवर्कों का नेटवर्क भी कह सकते हैं। इंटरनेट आधुनिक और उच्च तकनीकी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। ये किसी भी व्यक्ति को दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करने एवं प्राप्त करने की अद्भुत सुविधा देता है। इसके माध्यम से हम लोग आसानी से कई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा हम कुछ सेकेंडों में ही बड़े या छोटे संदेशों अथवा किसी प्रकार की जानकारी एक कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस जैसे टैबलेट, मोबाइल, पीसी से दूसरे डिवाइस में आसानी से भेज सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आम जन का जीवन भी काफ़ी आसान हो गया है। अब इंटरनेट मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। इंटरनेट आईटी के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला विश्व का पहला ढाल, शक्तिशाली और सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसे संक्षिप्त में नेट भी कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े बहुत सारे कंप्यूटरों का जाल है और वी ए

प्रणालियों तथा टेलीफोनों के जरिए संपूर्ण विश्व के करोड़ों कंप्यूटर्स एवं उप नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसाधनों को साझा करने अथवा सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए TCP के द्वारा दो अथवा कई कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़कर अतः संबंध स्थापित करके इस प्रक्रिया को इंटरनेट कहते हैं तथा इनके बीच की साझा करने की प्रक्रिया को कंप्यूटर नेटवर्क्स कहते हैं। पहले के समय में जब लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं थी तो उन्हें कई प्रकार के सामान्य कार्यों के लिए भी कई घंटों तक लाइनों में लगे रहना पड़ता था, जैसे रेलवे का टिकट लेने, बिजली बिल जमा करने तथा आवेदन पत्र जमा करने जैसे कार्यों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आधुनिक समय में लोग बस एक क्लिक से टिकट की बुकिंग कर सकते हैं तथा इसकी एक और सॉफ्ट कॉपी मोबाइल में भी रख सकते हैं। इंटरनेट सूचनाओं के आदान प्रदान का प्रमुख साधन है। इसके द्वारा लोग अपने घर बैठे सारे क्रियाकलापों का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। अब ऐसी धारणाएं दी जा रही हैं कि इंटरनेट के बिना मानव जीवन अधूरा सा है। इंटरनेट अपने आप में कोई आविष्कार नहीं है, यह टेलीफोन, कंप्यूटर व दूसरी तकनीक को इस्तेमाल करके बनाया गया एक ऐसा जाल है जिसमें सूचना व तकनीक का साझा उपयोग किया गया है। इंटरनेट का आविष्कार 1969 ईस्वी में टिम बर्न्स ली ने किया था। इसे सबसे पहले सन 1969 में अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग द्वारा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के गुप्त आंकड़ों और सूचनाओं को दूर दराज के विभिन्न राज्यों तक भेजने व प्राप्त करने में लाया गया था। हमारे भारत में इंटरनेट 1980 के माध्यम के दशक में आया था। इंटरनेट के सुगम इस्तेमाल को एप्पल नाम की कंपनी ने सन 1984 में कंप्यूटर में फाइल फोल्डर और ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया, जिसके कारण आज इंटरनेट चलाना बहुत आसान हो गया है। अगर एप्पल कंपनी नहीं होती तो आज हमें कोडिंग करके ही इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ता। भारत में इंटरनेट का सबसे पहला इस्तेमाल 15 अगस्त साल 1995 में किया गया था। इंटरनेट का पुराना नाम आर्पानेट है। 1960 से लेकर 1983 तक इंटरनेट को द आर्पानेट नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि उस समय पूरा इंटरनेट को अमेरिका कंट्रोल कर रहा था। द आर्पानेट अमेरिका की एक ऐसी संस्था थी, इसलिए उस समय इंटरनेट का नाम आर्पानेट रखा गया था। इंटरनेट के आविष्कार का मुख्य श्रेय अमेरिका और रूस को जाता है। इन दोनों देशों ने प्रतिस्पर्धात्मक रूप से इंटरनेट के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया है। आज अमेरिका और रूस के वजह से ही विश्व के सारे लोग इंटरनेट का लाभ ले पा रहे हैं। इन देशों के कारण ही इंटरनेट का विकास संभव हो पाया है। इंटरनेट को देखने और उससे सूचना एकत्रित करने के कार्य को सर्फिंग कहते हैं। वैसे तो सर्फिंग करने का तरीका कठिन नहीं है, परंतु सूचनाएं इंटरनेट पर प्रविष्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की आवश्यकता होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाना काफ़ी कठिन कार्य है। इंटरनेट की अपनी एक दुनिया है और इस दुनिया में से संबद्धता करने के लिए तीन स्तर होते हैं। प्रथम स्तर पर उपभोक्ता केवल इंटरनेट पर सूचनाएँ या जानकारी देख सकता है। द्वितीय स्तर पर उपभोक्ता केवल इंटरनेट का एक आंशिक भाग बन जाता है और सूचनाएँ एकत्रित करने के लिए के अलावा वह वेबसाइट भी बना सकता है। तृतीय स्तर पर उपभोक्ता स्वयं इंटरनेट प्रणाली का मुख्य हिस्सा बन जाता है। यहीं से उपभोक्ता इंटरनेट का संचालन शुरू कर देता है। धीरे धीरे उन वेबसाइटों पर उपभोक्ता अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से इंटरनेट और उपभोक्ता में आपस में कनेक्टिविटी हो जाती है। आज के वर्तमान समय में इंटरनेट का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। इंटरनेट का उपयोग आज के दौर में लगभग कार्यों में किया जाने लगा है। आज इंटरनेट से आंकड़ा संग्रहण, टिकट बुकिंग इत्यादि कार्य किया जा रहा है। इंटरनेट का महत्व आज इसी बात से समझा जा सकता है कि इंटरनेट के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज इंटरनेट के बिना मानव का जीवन अधूरा सा लगता है। इंटरनेट का महत्व कुछ इस प्रकार प्रकाशित किया जा रहा है, जैसे मेट्रो, रेलवे, व्यापारिक उद्योग, दुकान, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, NGO, विश्वविद्यालय, कार्यालय, सरकारी तथा गैर सरकारी में हर डाटा को कंप्यूटरीकृत करके बड़े स्तर पर कागज और कागजी कार्यों से बचा जा सकता है। ऐसा करके बड़े स्तर पर कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी तथा समय की भी बचत होगी। प्रत्येक स्तर पर घर के हर सदस्यों के द्वारा अलग अलग उद्देश्यों के लिए, जैसे ही हम अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता को इसके कनेक्शन के लिए पैसे देते हैं, उसी समय से हम इसका प्रयोग दुनिया के किसी भी कोने से उसका आनंद उठाते हैं। वर्तमान युग में दुनिया का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर इंटरनेट का उपयोग नहीं किया जा रहा हो। इंटरनेट सूचनाओं का भंडार है, इसलिए यहां पर आपको हर प्रकार की सूचना जैसे अंतरिक्ष, मौसम

0: तकनीक, दवाई, रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय, पत्रिका, अखबार, समाचार, खेल, साहित्य, तत्कालिक घटनाएं, राजनीति इत्यादि अनेक क्षेत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाती है। आज के अत्याधुनिक वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर हमारे जीवन का मुख्य भाग बन गया है। इसके अभाव में आज हम अपने जीवन में विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज हम अपने घर में बैठे बैठे देश विदेश या पूरी दुनिया का दृश्य देख पा रहे हैं। इन सब के पीछे इंटरनेट का तीव्र गति से विकास होना ही प्रमुख कारण है। इंटरनेट की सहायता से हम किसी भी प्रकार की जानकारी और किसी भी सवाल का हल कुछ ही पलों में प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट पर प्रश्न लिखने के कुछ क्षण बाद स्वतः ही उसका हल भी सामने आ जाता है। इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी भी व्यक्ति से बिना शुल्क के घंटों तक बातें कर सकते हैं। इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड वेब है जिसकी सहायता से हम दुनिया के किसी भी कोने में अपनी मेल या जरूरी से जरूरी दस्तावेजों को पलक झपकते ही भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट मनोरंजन का एक बहुत अच्छा माध्यम है। इंटरनेट के माध्यम से संगीत, गेम, फिल्म, खेल आदि को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के मनोरंजक बना सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से बिजली, पानी और टेलीफोन का बिल घर बैठे बिना किसी परेशानी के और बिना लंबी लाइनों में खड़े हुए किया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से होने वाली वित्तीय एवं वाणिज्यिक प्रयोगों ने बाज़ार की अवधारणाओं को एक नई रूपरेखा प्रदान की है। इंटरनेट के आने से शिक्षा क्षेत्र में व्यापक असर देखने मिल रहा है। इससे नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं।
1: दोस्तों, आप सुन रहे थे इंटरनेट के विषय पर वार्ता। अब दोस्तों, चलिए सुनते हैं बाल श्रम एक ज्वलंत समस्या विषय पर वार्ता। किसी भी देश का भविष्य दोस्तों उसके बच्चों पर निर्भर करता है। बच्चे राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होते हैं। उनका बचपन खेलने, सीखने और सपने देखने के लिए होता है, लेकिन जब यही बच्चे स्कूल की जगह कारखानों, होटलों, ढाबों, दुकानों, ईंट भट्टों या घरों में काम करने को मजबूर हो जाते हैं, तब यह केवल एक सामाजिक समस्या नहीं बल्कि मानवता के लिए चिंता का विषय बन जाती है। दोस्तों, बाल श्रम के पीछे की बात करें तो इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हम देखें तो गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या तथा जागरूकता की कमी को हम देख पाते हैं। कई परिवार दोस्तों ऐसा देखा गया है कि आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को कम उम्र में ही काम पर भेज देते हैं। कुछ नियोक्ता भी कम मजदूरी देकर बच्चों से काम करवाना आसान समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पैसे बच रहे हैं। साथियों, बाल श्रम का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। आप सोचिए ना, दिन भर कोई बच्चा काम करेगा, जब उसका पढ़ने का समय है तो पढ़ेगा कब? कठिन और असुरक्षित परिस्थितियों में काम करने से उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनका बचपन छीन जाता है और वे अपने सपनों को साकार करने का अवसर खो देते हैं। भारत सरकार ने बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए कई कानून बनाए और शिक्षा को बच्चों का अधिकार बनाया है। इसके बावजूद इस समस्या को पूरी तरह से अभी समाधान हम नहीं कर पाए हैं। ये तभी संभव है दोस्तों, जब सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सरकार के साथ समाज, विद्यालय, अभिभावक और प्रत्येक नागरिक, यानी कि हम और आप, मिलकर प्रयास करें। यदि हमें कहीं भी बाल श्रम दिखाई दे तो हमें संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना देनी चाहिए और ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में सहयोग करना चाहिए। तो आज आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र के माध्यम से हम आपसे ये अपील करते हैं कि आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण बचपन मिले, क्योंकि जब हर बच्चा पढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और एक सशक्त, समृद्ध तथा विकसित भारत का निर्माण होगा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी। आइए दोस्तों, आज युवाणी कार्यक्रम के तहत फिर से सुनते हैं युवा हृदय सम्राट, सुरों के शहंशाह किशोर कुमार के गाए एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म हिरासत से। उनका साथ दे रही हैं आशा भोसले, गीत को लिखा है अनजान, जबकि धुन है कल्याण जी आनंद जी की।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलन के महानायक और पद्म भूषण से सम्मानित दिशम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर मोरहाबाद स्थित उनके आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शिबू सोरेन के परिवार के सदस्यों ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके संघर्षपूर्ण जीवन और योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिबू सोरेन का संघर्ष, विचार और आदर्श सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे तथा उन्होंने अपना जीवन आदिवासियों, मूलवासियों और वंचितों के अधिकारों के लिए समर्पित किया। रांची में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य किया जा चुका है। कल 5 अगस्त को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार द्वारा संशोधित मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन किया जाएगा। 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दावे प्रस्तुत करने के लिए समय दिया जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज जमशेदपुर में मीडिया से बात करते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में लंबे समय से परीक्षाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं और छात्र लगातार पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए। झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के निर्देश पर सूबे के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया गया। और चतरा जिले में पुलिस ने दो युवकों को देसी पिस्तौल और कई कारतूस तथा अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया है। ये दोनों भाकपा माओवादी संगठन के जोनल कमांडर मनोहर गंजू के निर्देश पर भुयांडी घाटी में फायरिंग कर मालवाहक वाहनों में आगजनी की घटना को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैलाने जा रहे थे। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी।

0: जय जवान जय किसान।
1: किसान वाणी कार्यक्रम में रौर मन का बहुत बहुत स्वागत है।
0: सुनवाइया सो भाई बहन मन के रौर मन के रेडियो संगी जुगनी बहन और
1: मनोज कुमार का
0: नमस्कार
1: जोहार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: और मनोज भाई रौर बटले कैसन हाल समाचार है, बरखा पानी कैसन है, खेत बाड़ी में कैसन काम धाम चले लागल है?
1: एकदम बढ़िया है बहन, देखो नी बरखा पानी तो तनी देर से होलक लेकिन ठीके होलक और खेती बाड़ी बढ़िया चलत है। और देखो नी एखन कर मौसम में कहब तो चारो दने से हरियर हो जाए है और सावन कर महीना भी चलत है तो और बेस लागत है।
0: एकदम बढ़िया कहले रौरे। और देखो बरखा का दिन है के बरखा तो होबे करी और कोनो ठाँ बतले बरखा पाछे है तो सिकर से रोपनी मन भी धान खेत में रोपा मन पछे होल है। और कोनो ठाँ ले रोपा मन सिरा गेलक है और खेत हरियर हो लगल है। और देखो झारखंड ऐसा राज्य है जे की बोन पत्रा का राज्य है के और झारखंड में खेती बाड़ी मौसम से आधारित है।
1: सही बात है। और देखो मौसम कर बात करे थी बहिनी तो मौसम के हमरे मन के अनुमान करे के मुश्किल होला, लेकिन हमरे मन रेडियो कर संगे चाहे पेपर कर माध्यम के संगे बेरा बेरा से जानकारी में देते रहिला कि कौन कौन बेरा से बरखा पानी होते रही तो इकर से हमरे मन के फायदा होला है कि नहीं।
0: एकदम नगद गोइठ रौरे कहली। देखो बरखा पानी कर बेरा में अगर हमरे के मौसम पूर्व अनुमान अगर जानकारी रहेला तो देखो बरखा पानी बेरा ठनका मन कर भी आपदा से हमरे के डर रहेला तो हमरे मन ई मन से बच सकीला। और खेती बाड़ी करेला तो खेत बाड़ी में ठनका जैसन आपदा कर संभावना रहेला तो हमरे मन के ऐसन बेरा में अगर मौसम कर पूर्व अनुमान रहेला तो हमरे अपने सुरक्षित जगह में जा सकीला और अपन जीव जान के बचा सकीला।
1: और देखो भाई बहन हमारे मन के मौसम के बारे में तो जानकारी एकदम चाहिए और संगे संगे देखो हमारे मन के नहीं अब पहले जैसे खेती बाड़ी करत रही नहीं पारंपरिक ढंग से उसने एखन हमारे मन करब नहीं तो हमारे का जो फसल है नहीं वो बढ़िया हो गया है कि नहीं।
0: एकदम नगद गोट कहली। देखो अगर हमरे पारंपरिक खेती करब तो हमरे कर फसल बढ़िया होवे और हमरे कर आमदनी भी बढ़िया होवे। काले की देखो पहले हमरे जे खेती करत रही तो उ बेरा कर खेत में हमरे जैविक खेती कर उपयोग करत रही, गोबर खाद जे की हमरे कहिला उकर उपयोग करत रही सेकर से हमरे कर माटी बढ़िया रहत रहे और उकर उर्वरा क्षमता जे रहत रहे से बनल रहत रहे। और जे हमरे जैविक खेती कर उपजल अगर हमरे कर सेवन करत रही तो उकर से हमरे कर स्वास्थ्य बढ़िया रहत रहे और हमरे के जे कोन भी बीमारी से लड़े कर क्षमता भी बढ़िया रहत रहे।
1: सही बात है कहले बहनी। और देखो एखनो तक हमरे कर गांव में चाहे बहुत सारे सन गांव में खेती बाड़ी में नहीं जैविक खाद कर प्रयोग करे ना जेकर में खास करके गोबर खाद रहे एकर से का होल नहीं कि उकर फसल बढ़िया होला उकर बिक्री भी जल्दी से झट से हो जाएला। तो बहन चलो ने देखो परंपरा खेती कर बारे में एक तो बढ़िया से हमरे मन संदेश भी सुनी ला।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: पुतला बोल ले
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी। अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
3: परम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई,

0: नहीं ब्याज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
1: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
2: और देखो बहन, संगे संगे हमारे मन के खेती बाड़ी करे कर संगे हमारे मन के फसल बीमा मन भी करवाए चाहिए, चूंकि सरकार कहे ना कि अगर मौसम कर अनुसार से खेती बाड़ी हमारे मन करत ही और सही रूप से खेती बाड़ी नहीं होते नहीं तो हमारे मन के फसल मन के बीमा जरूर करवाए चाहिए।
3: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कर खेती बाड़ी मौसम से आधारित है और अगर मौसम हमारे के खेती बाड़ी में साथ नहीं दिलक और फसल को तरह नुकसान हो गया तो हमारे के फसल कर बीमा करवाए से फसल नुकसान कर जिस सरकार दन से मुआवजा भेटाएला शिकर से हम किसान भाई मन के राहत मिलेला।
2: और देखो सरकार बहुत सा योजना मन हमारे लिए लाई है और हमारे मन के बस जरूरत है कि जाने कर की कौन कौन सा बीमा चाहे कौन कौन सा योजना हमारे लिए लाभदायक है कि हमारे मन के फायदा उठाएक चाहिए। तो बहन देखो एक जानकारी ले हमारे मन के नजदीकी ब्लॉक स्तर पर जाके हमारे मन संपर्क कर सकेला और संगे संगे बैंक में जाके एक बारे में हमारे मन जानकारी ले सकेला।
4: हर जोखिम

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: तो हमरे गोठियाते रहब, लेकिन हमरे के कार्यक्रम के भी आगे बढ़ाए के, तो आज हमरे कार्यक्रम में काकर लाइन है से की एक बार जानकारी कर ले विला। तो मनोज भाई और कार्यक्रम के बारे एक बार जानकारी दे दे।
7: तो देखो भाई बहन, आज कर कार्यक्रम में हमरे में लाइन ही आज कर बात में बरसात कर मौसम में जो मछली पालन रखे वाला विशेष ध्यान कर बारे में हमरे मन सुनब आशीष कुमार से। एक बाद हमरे मन कृषि विकास गीत में सुनब इग्नेश कुमार और संगी मन कर गावल गीत, और नवम्बर का नव फसल में हमरे मन किसान से भेंट मुलाकात करवाईला। तो आज कर किसान है सुमित्रा देवी।
6: तो भाई हमरे खेती बाड़ी तो करीला, लेकिन खेती बाड़ी कर संगे संगे हमरे अन्य व्यवसाय भी कर सकीला। और देखो एखन बरसात का दिन है के, और बरसात का दिन में हमरे तालाब में मछली पोस के हमरे आमदनी ले सकीला। चलो इकरे बारे में जानकारी करब और इनकर बारे में जानकारी देबे विशेषज्ञ आशीष कुमार, और इनकर से बातचीत कर रहे हैं गौरव कुमार।
8: श्रोताओं नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। आज हम बात करेंगे मत्स्य पालन यानी मछली पालन के विषय में। ग्रामीण क्षेत्र में मत्स्य पालन या मछली पालन कह लें, मछली पालन एक प्रमुख रोजगार के तौर पर उभरा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में है आशीष कुमार, सेवानिवृत्त उप मत्स्य निदेशक झारखंड सरकार। सर स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
9: धन्यवाद जोहार।
8: सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि झारखंड में मछली पालन की क्या स्थिति है।
9: झारखंड राज्य बनने के उपरांत झारखंड में मछली पालन बहुत ही तेजी से विकसित हुई है। जब राज्य बना था वर्ष 2000 में तो मात्र 14,000 मेट्रिक टन उत्पादन था, जो बढ़कर अभी 3,63,000 मेट्रिक टन हो गया है। तो इसमें सरकार की भूमिका और मत्स्य पालकों की भूमिका बहुत ज़्यादा है, जो कि वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन को अपना करके उत्पादन बढ़ा लिया है।
8: झारखंड की अगर भौगोलिक स्थिति को देखें सर, तो ज़्यादातर यहाँ नदियाँ जो हैं वो पहाड़ी मानी जाती हैं, बरसाती नदियाँ मानी जाती हैं। तो ऐसे में जल क्षेत्रों के विषय में कुछ जानकारी दें सर।
9: देखिए झारखंड में बहुत तरह के जल क्षेत्र हैं, जैसे कि सरकारी तालाब है, निजी तालाब है, इसके अलावा नदियाँ हैं, जलाशय हैं बहुत सारे संख्या में, और इसके अलावा डोभा यहाँ बनाए गए हैं कृषि विभाग से कुछ वर्ष पहले। इन सभी में मछली पालन हो रहा है और अलग अलग तरीकों से मछली पालन करके इनका संपूर्ण दोहन हो रहा है। तो विभाग का एक नारा भी है कि जहाँ कहीं भी पाओ पानी वहाँ पर पालो मछली रानी। तो सभी प्रकार के जल क्षेत्रों का उपयोग मछली पालन के लिए किया जा रहा है।
8: तो मछली पालन के लिए सर सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं?
9: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आम जनता को मछली पालन में आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिसमें झारखंड सरकार की भी योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की भी योजनाएं हैं। इसमें मछली पालन के लिए प्रशिक्षण है, मछली के बीज उत्पादन के लिए अनुदान है, और हैचरी निर्माण के लिए अनुदान है, तालाब निर्माण के लिए अनुदान है, मछली के दाना पर अनुदान है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से

0: मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार के अभी हाल ही में एक योजना पूर्ण हुई है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके लिए विभिन्न कार्यों के लिए 40 से 60% अनुदान की व्यवस्था की गई है और इससे काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं।
1: अगर कोई मछली पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए?
0: देखिए, मछली पालन तो तालाब में होता है, तो सबसे पहले तो तालाब की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि उनके पास अपना तालाब है तो वो उसमें कर सकते हैं, यदि नहीं है और उनके गांव में कोई सरकारी तालाब है तो सभी सरकारी तालाबों की बंदोबस्ती मत्स्य विभाग के द्वारा किया जाता है। तो यदि उनके गाँव में सरकारी तालाब है तो वो जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क करके उसका डाक ले सकते हैं, 3 वर्ष के लिए डाक होता है। यदि अपना तालाब नहीं भी है तो आप नया तालाब बनवा सकते हैं, यदि उसके पास ज़मीन है उनके पास। इसके अलावा अभी छोटे छोटे बायोफ्लॉक सिस्टम आ गया है, एक पॉन्ड बायोफ्लॉक सिस्टम है जिसमें मात्र 25 डिसमिल के तालाब में मछली पालन किया जा रहा है, तो कम ज़मीन भी है तो वो भी किसान मछली पालन कर सकते हैं।
1: मछली पालन के लिए सर बीज की उपलब्धता कहाँ से होगी?
0: मछली पालन के लिए सरकार के सभी जिलों में मत्स्य प्रक्षेत्र हैं, फार्म हैं, 80 से ऊपर फार्म है पूरे राज्य में, जहाँ से सरकारी दर पर मछली का बीज उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा निजी क्षेत्र के भी लोगों को मछली बीज के उत्पादन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें स्पॉन, जो छोटी मछली होती है 3 दिन की, उसको दिया जाता है, जिससे कि वे मछली बीज उत्पादन करके स्थानीय लोगों को मछली का बीज बेच सके। इसलिए बीज की कोई कमी नहीं है, पूरे राज्य को आच्छादित किया गया है बीज के उत्पादन के लिए।
1: साथ ही सर, बीज उत्पादन के बाद जब स्पॉन और बीज दोनों उपलब्ध करा दिया जाता है तो मछलियों को जो दाना दिया जाता है उसकी उपलब्धता के संबंध में बताएं।
0: झारखंड में जब मछली पालन का विकास हुआ तो धीरे धीरे मछली के दाना की भी आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए विभाग के द्वारा 4-5 जगहों पर मछली का दाना का फैक्ट्री बनाया गया है, जहाँ से दाना उपलब्ध होता है और वह किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा कई बाहरी कंपनियों के भी दाना अब झारखंड में उपलब्ध हैं। यदि किसान बाहरी कंपनियों का दाना खरीदते हैं तो उस पर भी उनको अनुदान दिया जा रहा है। इस प्रकार यदि वे एक यहाँ फेडरेशन है झास्को फिश करके, झारखंड राज्य सहकारी मत्स्य संघ लिमिटेड, उसके द्वारा संचालित फीड मिलों से यदि लेंगे तो 50% का अनुदान है, यदि बाहर से लेंगे तो उस पर भी उनको 18 रुपये प्रति किलो का अनुदान है। इस प्रकार से दाना की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई।
1: सर, स्पॉन से एक मछली बनने तक की जो प्रक्रिया है, जब मछली पूरी बड़ी हो जाएगी तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है कि मछली पालक उस मछली को किस प्रकार बाजार में ले जा सकता है और सरकार ने क्या इसके लिए प्रावधान किए हैं?
0: देखिए, मछली बिक्री के बाद बाजार में ले जाने के लिए एक तो सरकार अनुदान पर वाहन देती है, पिकअप वैन हो गया या रेफ्रिजरेटेड वैन हो गया या फिर इंसुलेटेड वैन हो गया, एक ये व्यवस्था है। इसके अलावा जो मछली मारते हैं, शिकार माही करते हैं, वो लोग भी ले जाते हैं। किसान हमारे यदि मछली के जो शिकार माही करने वाला समूह है उनसे संपर्क करेंगे तो वो मछली निकाल भी लेते हैं और बाज़ार भी ले जाते हैं, वहाँ बिक्री करके पेमेंट कर देते हैं। इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं होती है।
1: व्यावसायिक तौर पर सर किन मछलियों का पालन करना और उनका उत्पादन करना मछली पालकों के लिए अच्छा रहता है?
0: झारखंड में देखिए, रेहू कतला जो मछलियां हैं ये बहुत दिनों से काफ़ी प्रचलित है, लोग पसंद करते हैं। तो रेहू कतला मृगल जो मछलियां हैं ये भारतीय मछलियां हैं, इनका पालन करना चाहिए। इसके अलावा 3 विदेशी मछलियां हैं, जैसे कि सिल्वर कार्प है, कॉमन कार्प है, ग्रास कार्प है, उसको भी एक साथ पाली जा सकती है। इसके अलावा झारखंड का राजकीय मछली जो है वो मांगुर मछली को घोषित किया गया है, तो मांगुर के विकास के लिए भी सरकार अभी कार्यक्रम बना रही है, उसको भी पाल सकते हैं, उसका दर काफ़ी अच्छा है बाज़ार में, काफ़ी फायदा होता है। इसके अलावा जलाशयों में जो केज लगे हुए हैं उसमें पंगास मछली और तिलापिया मछली, ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। बल्कि पंगास तो राज्य के बाहर बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट भी हो रहा है राज्य से, तो ये सारी मछलियाँ हो गई जो मेजर कार्प मछलियाँ हैं। इसके अलावा मांगुर और सिंगी हो गई और तिलापिया और पंगास हो गए। इसके अलावा बहुत लोग कवई मछली भी पाल रहे हैं, छोटे छोटे हौदा बना करके, तो ये सारी मछलियाँ पाली जा रही हैं और इनका अच्छा बाज़ार भी मिल रहा है।
1: जो किसान या जो भी व्यवसायी मछली पालन करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं उनको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, मछली पालन में एक तो तालाब में पानी का स्तर को बनाए रखना है कि पूरा पानी रहे, पानी कम होने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पानी का तापक्रम बढ़ जाता है, मछलियाँ मरने लगती है, तो एक तो पानी का स्तर बनाए रखना है। इसके अलावा

0: का कुछ गुणवत्ता होता है, जैसे उसका पीएच है, ऑक्सीजन है, ये सब देखते रहना है। इसके अलावा मछलियों को नियमित भोजन देना है जिससे कि उनकी वृद्धि होती रहे, और उनके बीमारियों की जांच करते रहना चाहिए जिससे कि यदि कोई इन्फेक्शन हो जाए तो तुरंत उसका उपचार किया जाए, नहीं तो सभी मछलियों में संक्रमण फैलने की और संभावना रहती है। तो इस प्रकार से क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इसके लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, आवासीय प्रशिक्षण है, और उसमें ये सभी बातें बताई जाती हैं जिसका पालन करके किसान भाई अच्छा से मछली पालन करके ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं।
1: एक सर बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ और आता है कि कोई किसान अगर मछली पालन कर रहा है तो जैसे फसल बीमा योजना है, तो क्या इस प्रकार की कोई बीमा योजना भी है मछली पालन हेतु?
0: अभी हाल ही में शुरू किया गया है, बहुत दिन से प्रयास लोग कर रहा था, लेकिन अभी ये हो गया, मूर्त रूप ले लिया है, मछली पालन के भी के लिए बीमा शुरू हो गया है, और इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और NFDB जो है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, उन तीनों की सहभागिता है। जो भी किसान चाहें वो अपने मछलियों का बीमा करा सकते हैं।
1: सर, आकाशवाणी के नियमित श्रोता अक्सर किसान रहे हैं और उनको काफ़ी सारे संदेश यहाँ से पहुँचाए जाते हैं, तो किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: किसानों को ये संदेश देना चाहेंगे कि मछली पालन से बहुत ज़्यादा लाभ है, इसके लिए जो भी सामग्री चाहिए वो आपको स्थानीय स्तर पर ही मिल जाती है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के द्वारा हर कदम पर आपको सहयोग दिया जा रहा है, आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बीज दिया जा रहा है, दाना दिया जा रहा है, मिट्टी पानी के जांच की सुविधा है, तो आप इसको अपनाएं। और मछली का दर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है, मतलब आप समझिए 200-300 रुपये 400 रुपये किलो तक चली जा रही है। इसके अलावा जो छोटे जलाशय हैं उनमें प्रॉन मछली, जो झींगा मछली, उसका भी पालन हो रहा है, उसमें किसान काफ़ी लाभ कमा रहे हैं। तो ये बहुत ही लाभ का बिजनेस है, इसको आप अपनाइए। यदि आपको कोई भी जल क्षेत्र मिल जाए तो उसको ले करके उसमें मछली पालन कीजिए, सरकार के संपर्क में रहिए, योजनाओं का लाभ उठाइए और अपना भी आमदनी बढ़ाइए।
1: सर, आप किसान श्रोताओं को बड़ी अच्छी जानकारी दी और आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो भाई बहन देखू, एखन हमारे सुन ली कि बरखा कर मौसम में मछली पोसे के लिए हमारे मन के का विशेष ध्यान रखे के चाहिए, तो सही बात है भाई बहन। देखो कोनो चीज के हमारे मन खेती बाड़ी करत है नी, उकर जानकारी बहुत जरूरी है। जानकारी के अभाव में हमारे मन खेती बाड़ी ठीक से नहीं करे पारेला, तो हमारे मन का प्रशिक्षण जरूरी है। और संगे संगे देखो दोसर मन से भी हमारे मन पूछ के चाहे देख के हमारे मन सीख सकी है कि नहीं?
3: एकदम नगद गोट कहली कि हमारे मन के दूसर मन से भी हमारे देख के प्रेरणा ले सकेला और उके हमारे अपना सकेला और से हमरे आमदनी ले सकेला।
2: और बहन देखो अब एक बाद हमके लगत है कि काटो गीत मन सुने के चाहे, चूंकि देखो गीत कर बिना हमरे कर खेती बाड़ी तो अधूरा रहबे करे।
3: एकदम नगद गोइठ रहे कहली कि देखो खेत में काम करके मन थाकल रहेला, तो हमरे के गीत गोविंद कर संगे रिझ रंग करे के चाहिए, इकर से हमरे कर जे थाकल मन है से दूर होला। तो चलो हमरे एगो नागपुरी लोक गीत सुनब, इग्नेश कुमार और संगे मन कर गावल गीत।

0: गीत तो बड़ा नगद लगलक, मन के रिझा देलक। मन तो करत है कि गीत के सुनते रह, लेकिन कार्यक्रम के भी आगे बढ़ाए के। और आगे कार्यक्रम में हमरे किसान से करल गोइठ के सुनब, जे महिला किसान है सुमित्रा देवी, जे की जैविक खाद अपने से बनाए ना और जैविक विधि से कीटनाशक दवाई भी बनाए ना। तो चलो इकरे गोइठ के हमरे सुनीला, और इनकर से गोठियाए हैं हमरे कर संगी मनोज कुमार।
1: आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं?
2: मेरा नाम सुमित्रा देवी है और मैं कांके ब्लॉक से गागी गांव से आई हूँ।
1: तो सुमित्रा बहन, आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ हुई थी क्या?
2: हाँ, कुछ बहुत पढ़ाई हुई है, मैट्रिक तक पढ़ाई हुई है।
1: और क्या करते हैं आप?
2: अभी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं।
1: जैसे कि बात करते हैं हम लोग खाद के बारे में, और बहुत सारे किसान भाई खाद देते हैं, बहुत सारे रासायनिक खाद देते हैं, बहुत सारे जैविक खाद देते हैं, तो आप कौन सा खाद का ज्यादा प्रयोग करते हैं?
2: अधिकतर हम ऑर्गेनिक खाद, जैविक खाद प्रयोग करते हैं।
1: तो ये सब खाद के बारे में जब बात की है, जैविक खाद के बारे में, तो अपने से बनाते हैं कि खरीदते हैं?
2: हम जैविक खाद अपने से बनाते हैं।
1: उसमें क्या क्या बनाते हैं?
2: उसमें हम केचुआ खाद बनाते हैं। जैसे मेरा खेत में जो भी सब्जी का अवशिष्ट बचता है, लतर हो गया, जो भी साग का पत्ता उत्ता हो गया, उससे हम केचुआ खाद बनाते हैं। और हम खाद में बनाते हैं कि डीएपी खाद के जगह हम बनाते हैं मटका खाद हो गया, घनजीवामृत हो गया, और फिर द्रव जीवामृत हो गया, ये सब खाद बनाते हैं।
1: तो ये सब कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा हमारे किसान भाई को बताएं ताकि वो भी बना पाए।
2: जैसे मटका खाद हो गया, डीएपी का काम करता है, तो एक लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ डालते हैं, और 250 ग्राम बेसन डालते हैं, और आधा केजी गोमूत्र डालते हैं, आधा केजी गाय का गोबर डालते हैं। उसको हम एक सप्ताह के लिए छोड़ देते हैं। उसको सुबह शाम हमको दहिना और बाया दोनों तरफ से मिलाना पड़ता है, हिलाना पड़ता है उसको, तब एक सप्ताह में मेरा खाद तैयार हो जाता है। फिर उसको हम 15 लीटर पानी में मिला करके हम अपना खेत में छिड़काव करते हैं।
1: और इसके बाद फिर दूसरा कोई और खाद के बारे में?
2: गोबर को हम ले लेते हैं, फिर गोबर में बेसन डालेंगे, देसी गाय का गोबर 10 केजी रहेगा, उसमें आधा केजी गुड़ डालेंगे और आधा केजी बेसन डालेंगे, फिर उसमें गोमूत्र डालेंगे, उसको अच्छा से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम उसको दीवार में गोइठा छायादार जगह में गोइठा ठोकते हैं, फिर वो सूख जाता है, उसको हम एक जगह जमा करके और उसको चूर बनाते हैं। चूर बना करके उसको बोरी में हम डाल देते हैं, उसको हम समय समय से प्रयोग करते हैं।
1: इसको कौन सा खाद बोलते हैं?
2: इसको घन जीवामृत खाद बोलते हैं। और तीसरा खाद है द्रव जीवामृत है, वो भी डीएपी का ही काम करता है। जैसे 5 लीटर पानी में हम 1 पाव गुड़ डालते हैं, 1 पाव बेसन डालते हैं, और 250 ग्राम गोमूत्र डालते हैं, गोबर आधा केजी डालते हैं, उसको हम कोई घड़ा या डब्बा में उसको घोल करके छाया जगह में रख देते हैं, और उसको भी हम सुबह शाम उसको चलाते हैं। फिर एक सप्ताह में वो तैयार हो जाता है। उसके बाद हम उसमें 25 डिसमिल जमीन के लिए 15 लीटर पानी में मिला करके हम उसको डालते हैं। वो मेरा खाद 1 महीना तक अच्छा रहता है, एक महीना के बाद वो खराब हो जाता है, इसलिए हम उसको 1 महीना में अपना खेत में यूज करते हैं।
1: दवा में क्या क्या बनाते हैं?
2: कीटनाशक दवा में ये है कि जैसे निमास्त्र हो गया, कीड़ा को मारने के लिए निमास्त्र बनाने के लिए 25 लीटर पानी में 2.5 किलो करंज का पत्ता डालते हैं, फिर 2.5 किलो नीम का पत्ता डालते हैं, और धोथुरा का पत्ता हो गया, थेथर का पत्ता हो गया, ये सबको हम मिला करके कूट के और पानी में 25 लीटर पानी में उसको हम डालते हैं। फिर उसमें हम 2.5 केजी गोबर डालते हैं, फिर और 2.5 लीटर गोमूत्र भी उसमें हम डालते हैं, उसको हम रख देते हैं, एक सप्ताह के बाद वो तैयार हो जाता है। फिर उसको हम 1 लीटर पानी में उसको छान लेते हैं, फिर 1 लीटर पानी में 250 ग्राम हम उसमें डालते हैं और अपना खेत में छिड़काव करते हैं ताकि कीटनाशक मर सके।
1: तो कौन कौन खेत में प्रयोग करते हैं इसका कीटनाशक का?
2: हाँ, कोई भी खेती में हम लोग कर सकते हैं छिड़काव।
1: इसके अलावा और कोई कीटनाशक बनाते हैं?
2: हाँ,
1: बताइए।
2: ब्रह्मास्त्र है, तो ब्रह्मास्त्र में सब वही सब रहता है, तो उसमें ब्रह्मास्त्र में नीम का पत्ता, करंज का पत्ता, जो भी पत्ता है जिसको जानवर नहीं खाता है, सब पत्ता को कूट करके हम पानी में डाल देते हैं। तंबाकू का डंठल हो गया, या मिर्ची भी हो गया, लहसुन हो गया, वो सबको हम उसमें सबको कूट करके मिलाते हैं। उसके बाद एक सप्ताह में वो भी तैयार हो जाता है। एक सप्ताह के बाद उसको छान के हम लोग अच्छा से बोतल में रख देते हैं, और बोतल में रखने के बाद हम उसको छिड़काव करते हैं, जैसे

0: एक लीटर पानी में 250 ग्राम करके मिलाते हैं और उसको हम एक सप्ताह के अंतराल में छिड़काव करते हैं, जिससे बड़ा कीट छोटा कीट जो भी कीड़ा हमारे खेत में है उसको हम छिड़काव करते हैं तो मर जाता है।
1: चलिए अच्छी बात है किसान भाइयों कि आप लोग अपने खेतों में खाद और कीटनाशक का प्रयोग करने के लिए खुद से बनाएं, जैसा कि हमारे सुमित्रा बहन बता रही हैं आपको, तो अवश्य हमारे खेतों में इसका प्रयोग करना चाहिए। सुमित्रा बहन, आप जितने सारे जो खाद और कीटनाशक के बारे में बताएं, ये सब की जानकारी आपको कहाँ से मिली?
0: जो जानकारी मिली जो कीटनाशक खाद हो गया, कीटनाशक दवा हो गया, ये हम लोग को JSLPS में हम जुड़े हैं तब हम लोग को वहाँ से प्रशिक्षण मिलता है, या तो आत्मा ब्लॉक से वहाँ से भी हम लोग को ट्रेनिंग मिला और हम लोग सब अपना खेत में यूज करते हैं।
1: तो इस सब को देख के आपके गांव वाले चाहे और आसपास के गांव वाले, तो वो लोग भी खुद बनाते होंगे?
0: हाँ, हम लोग मिल के बनाते हैं, फिर अगला दीदी अगला किसान है उन लोग को भी हम लोग जानकारी देते हैं और मिल के एक साथ 10-15 किसान मिल के हम लोग वो सब काम करते हैं ताकि अगला किसान भी इसको जाने और समझे।
1: जो किसान भाई हमारे बात को सुन रहे हैं उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: जो किसान दादा और दीदी सुन रहे हैं उन लोग को हम यही सलाह देना चाहते हैं कि पहले हम लोग रासायनिक खाद से रासायनिक दवा से खेती करते थे, उससे हमारे मिट्टी में भी बहुत सारा उर्वरक शक्ति था वो खराब हो गया, नष्ट हो गया, और जो रासायनिक दवा था वो उससे भी हमारे शरीर में नुकसान पहुंचता है। इसीलिए हम यही सलाह देना चाहेंगे कि जो भी किसान दादा दीदी हैं उन लोग को हम रासायनिक खेती को हटाना है और जैविक खेती को
1: अपनाना है। सही बात है किसान भाइयों, हम लोग को नए नए तरीके अपनाने हैं और खाद को हम लोग को बढ़िया से ध्यान देना है। तो किसान भाइयों, आज हमारे साथ मौजूद थे सुमित्रा बहन, जो कि गागी रांची के रहने वाले हैं, जो कि खेती बाड़ी करते हैं और साथ में खाद और कीटनाशक खुद बनाकर अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। सुमित्रा बहन, आपको भी नमस्कार, जोहार, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो संगी साथी मन और भाई बहन मन, देखो आज कर जे किसान रहे सुमित्रा देवी, इकर से हमरे मन जे गुठियाली और हमरे मन जान ली कि का लेखे हमरे मन के जैविक खाद में बनाए चाहिए और कीटनाशक दवा के हमरे मन कैसे बनाए के अपन खेत में प्रयोग कर सकेला। तो हमके लगा थे कि किसान भाई मन ले बढ़िया जानकारी है कि नहीं?
2: एकदम बहुत नगद जानकारी है। तो जे किसान भाई मन सुनत है तो इकर से किसान भाई मन प्रेरणा ले सकेन और ई गोइठ बड़ा नगद रहे और एकर गोइठ से नवा संदेश भेटालक और जे किसान भाई मन खेती बाड़ी करे ना तो उमन भी जैविक विधि से कीटनाशक दवाई मन कर उपयोग करू और खेती करू और खेती करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाऊ।
1: तो यह गोइठ संगे आज कर हमारे कर कार्यक्रम कर विदा होए कर बेरा हो गलक। तो कहे चाहते कि ये कार्यक्रम का प्रायोजक रहे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार,
2: प्रस्तुति रहे आकाश रांची।
1: तो भाई बहन आज ले बस इतने, दूसरे दिन फिर भेटाब एगो नवा जानकारी के संगे। तब तक रोर मन के रेडियो संगी मनोज और
2: जुगनी बहन के देव विदा।
3: नमस्कार, जोहार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। हम आकाशवाणी के डालरनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रामीण सभा। किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं, बरसात का मौसम प्रारंभ हो चुका है। इसमें हमारी जो गौशाला है, जो भी हमारे किसान भाई पशुधन रखते हैं, तो गौशाला की साफ सफाई अत्यंत आवश्यक है। अगर बरसात के मौसम में हमारा गौशाला साफ सुथरा नहीं रहा तो पशुधन को बीमारी लगेगी और इससे आपको क्षति होने का भी पूरी संभावना है। तो गौशाला के साफ सफाई पर आपको विशेष ध्यान देना है। कोशिश करना है कि आपके मवेशी जो हैं, जो भी जानवर हैं, वो सूखे स्थान पर रहें, नमी ना हो। चूने का व्यवहार अवश्य करें समय समय पर। उन्हें मच्छरों और मक्खियों से सुरक्षा भी उसमें शामिल है। चमोकन वगैरह भी बरसात के मौसम में पशुओं में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसकी भी नियमित रूप से आप निगरानी करते रहें ताकि आपको पता चले। और जब आपका पशुशाला साफ सुथरा रहेगा तो पशुओं को बीमार होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। अब अगर उसके बावजूद भी किसान भाई, ऐसा होता है कि मवेशी दूसरे मवेशी

0: के संपर्क में भी आने से बीमार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मौसम है बरसात का, उसमें पशुओं को खतरनाक और जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए समय पर टीकाकरण कराना बहुत ज़रूरी होता है। हम प्रमुख टीकों की बात करेंगे, जिसमें खुरपका मुंहपका के नाम से जिसे हम लोग FMD बोलते हैं, गलघोंटू जिसको HS बोलते हैं, और लंगड़ा बुखार BQ इसमें शामिल है। यह पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है अगर आप इसका टीका पशुओं को लगवाते हैं तो, और दूध जो है उत्पादन वह भी सुरक्षित रहता है। तो किसान भाई, आप सतर्क रहें, सावधान रहें, बरसात का मौसम प्रारंभ हो चुका है। सबसे पहला ध्यान गौशाला की साफ सफाई, दूसरा पशुओं का टीकाकरण। अब हम बात करेंगे कि जो खुरपका और जो मुंहपका है, जिसे FMD के नाम से जानते हैं, इसकी पहली खुराक 4 महीने की उम्र में, फिर हर 6 महीने पर साल में 2 बार दी जाती है। गलघोंटू की अगर हम बात करें किसान भाई, तो मॉनसून से पहले यानी मई जून और साल के अंत में वर्ष में 2 बार लगाया जाता है। और जो हम बोलते हैं लंगड़ा बुखार से BQ को बोलते हैं, और एंथ्रेक्स आमतौर पर बरसात शुरू होने से पहले 6 महीने की उम्र से अधिक वर्ष में 1 बार लगाया जाता है। तो किसान भाई, जो टीका हमेशा पूरी तरह जो पशु आपका स्वस्थ हो उसे ही लगवाएं, और गर्भावस्था में आमतौर पर गर्भवती जो पशुओं के गर्भकाल के अंतिम दिनों में टीका नहीं लगवाना चाहिए। और टीका लगवाने से कुछ दिन पहले पशुओं को पेट की जो कीड़े मारने की दवा है डिवॉर्मिंग देना फायदेमंद होता है। किसान भाई, टीकाकरण इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि आपका पशु इससे पूरी तरह से स्वस्थ रहता है, सुरक्षित रहता है, आपको हानि नहीं उठानी पड़ती है। तो ये तो आप समझ रहे होंगे कि गौशाला की साफ सफाई कितनी आवश्यक है और हमारा समय समय पर पशु का टीकाकरण लगाना जरूरी क्यों है, क्योंकि इससे आपका पशु सुरक्षित रहेगा। अगर हम विशेषकर गाय और अगर हम भैंस की बात करते हैं किसान भाई, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर जो जानकारी आपको नहीं है, तो आप नज़दीकी जो भी आपके पशु चिकित्सक हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनके अनुसार आप उनका टीकाकरण करा सकते हैं। तो ये तो बात हुई बरसात के मौसम में गौशाला की साफ सफाई और पशुओं का टीकाकरण के बारे में। आइए अब सुनते हैं वार्ता, भेंट वार्ता, नींबू वर्गीय पौधों की देखरेख। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर दिलीप कुमार पांडे, कृषि विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र चिया की पलामू, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी भाई संतोष कुमार।
1: हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। ग्रामीण भाइयों, आज कार्यक्रम में हम फल उद्यान की बात करेंगे, विशेषकर नींबू वर्गीय पौधों की खेती हमारे पलामू जिला में या फिर पूरे झारखंड सूबे में आसानी से की जा सकती है और इससे हमारे ग्रामीण बंधु बहुत अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। नींबू वर्गीय फलों की खेती हम किस प्रकार से करें, क्या क्या वैज्ञानिक तकनीकियां उसमें अपनाएं, इससे संबंधित विशेष जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियाकी के कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: नमस्कार आपको संतोष जी और श्रोता बंधुओं को भी।
1: सर्वप्रथम तो ये बताया जाए कि हमारे ग्रामीण भाई बहन जो फलोद्यान लगाना चाहते हैं, तो विशेषकर नींबू वर्गीय अगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जमीन कैसी होनी चाहिए, कैसे हमारे किसान भाई खेती शुरू करें?
2: जमीन के लिए लाल मोरम वाली जो भी जमीन है, जो हम लोग टाण बोल सकते हैं, और जिसका pH मान 5.5 से 7.5 के बीच में हो, वो जमीन नींबू वर्गीय पौधों की खेती के लिए उपयुक्त है। केवल ध्यान किसान भाइयों को ये देना होगा कि यदि मोरम युक्त जमीन हो

और ज़्यादा कंकड़ीला हो, तो वैसी स्थिति में जो हम लोग गड्ढा तैयार करेंगे तो गड्ढे का साइज जहाँ जनरल में हम लोग 2 फीट बाई 2 फीट रखते हैं, वहाँ हम लोग 3 फीट या 3 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा लंबाई चौड़ाई और गहराई

0: और उसी में 20-25 केजी गोबर का खाद मिला करके गड्ढा भरने के समय में नीचे डालेंगे तो सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूँगा कि जब नींबू वर्गीय फल की हम लोग बात करते हैं
1: जी,
0: तो हमारे मन में आता है कागजी नींबू, संतरा, ये दो मुख्य रूप से आती है। और अभी के समय में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 3-4 वर्षों से हम लोग जिला के विभिन्न कार्यक्रमों में लोगों को संतरा के उत्पादन के लिए बहुत प्रमोट कर रहे हैं। और यहाँ के लिए इतना सुंदर जलवायु है जिसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। मिठास जो आपको यहाँ के फलों में मिलेगी वो ओरिजिनल फल जहाँ से होता है वही टेस्ट आपको यहाँ का जो उत्पादन होता है संतरा हो नींबू हो ये सब में आपको वही टेस्ट मिलेगा।
1: अच्छा।
0: तो जहाँ तक हम जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क है, पूरा ड्राई नहीं है, अर्ध शुष्क है। और ये जो पूरा पलामू पर मंडल की हम लोग बात करें, गढ़वा, लातेहार, मेदिनीनगर का पार्ट, चतरा का पार्ट, तो ये सब संतरा उत्पादन के लिए, कागजी नींबू के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है। और सबसे बड़ा चीज इसमें यह है कि इसमें यदि किसान भाई अपना सालों भर का शेड्यूल बना करके केवल बाग में घूमते रहे तो उत्पादन हमेशा होता रहेगा।
1: बिल्कुल।
0: सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग नींबू वर्गीय खेती की बात करते हैं तो दो तरीका से इसको हम लोग फल को बांटते हैं, एक मीठा फल हो गया, एक खट्टा फल। तो खट्टा फल में हम लोग लेमन और लाइम दो है। तो लेमन में जो हम लोग कागजी नींबू की बात करते हैं वो लेमन वर्ग का हो गया और उसमें क्या है छिलका पतला है। तो वो नींबू जो है इसका समय आता है कि साल पूरे साल में 5 बार इसमें फूल आने की संभावना रहती है। तो आप मैनेजमेंट करेंगे बढ़िया से तो 160 दिन में फूल लगने से 160 दिन के बाद आपको फल मिलेगा। और 5 बार यदि सिस्टम को आप मेंटेन करते हैं तो आप हमेशा बाजार को पकड़ सकते हैं। और जहां तक संतरा की बात करें या मीठा नींबू की बात करें, गागर जो होता है हम लोग उसकी बात करें, तो वो सब कल जो फूल लगा तो फूल लगने से उनका कार्यकाल होता है 265 दिन के अंदर में वो बाजार में जाने लायक होते हैं। तो 265 दिन की हम लोग बात करें तो 20-30 दिन यहाँ पहले तैयार हो जाते हैं।
1: अच्छा।
0: बाजार में भेजने के लिए। तो हम लोग इसको यदि मेंटेन करें तो बाजार को हमेशा पकड़ सकते हैं और इसकी मांग ऐसी है कि कभी कम नहीं होती है। तो इसके अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि यदि किसान भाई सालों भर अपने दिमाग में प्रोग्राम बना करके रखें इसका मेंटेन करने के लिए, यदि मेंटेन नहीं करना चाहेंगे तो साइट्रस में एक साइट्रस डिक्लाइन की प्रवृत्ति होती है, मतलब खुद से पौधा सूखने लगेगा, मरने लगेगा और फिर मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किसान भाई इस चीज को यदि ध्यान में रखेंगे शुरुआत से ही तो बहुत फायदा है इसमें।
1: सिंचाई व्यवस्था कैसी होनी चाहिए?
0: देखिए सिंचाई जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप मार्च के बाद से ही देखें कि पानी की कमी शुरू हो जाती है। तो मार्च, अप्रैल, मई और आधा जून वो पानी का कमी हो जाता है। लेकिन ये कहाँ पे है, हम लोग शहरी स्थिति को देखते हैं, लेकिन गांव में या जहाँ पे किसान भाई खेती करते हैं तो वो पलवार का प्रयोग करें तो पानी उनको कम खेत में देना पड़ेगा। पलवार मल्चिंग, जैसे प्लास्टिक मल्चिंग हो गया, सूखा घास वगैरह है उसको जो है जड़ से कम 2-2.5 बीता छोड़ करके चारों बगल में 15 सेंटीमीटर की मोटाई में डालेंगे तो पानी की कम जरूरत पड़ेगी और पानी भी आपको 7-8 दिन के अंतर पे देना पड़ेगा।
1: अच्छा।
0: तो इस तरीका से पानी की डिमांड को हम कम कर सकते हैं। दूसरा चीज है ड्रिप इरिगेशन की बात हम करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन में किसान भाई को यह ध्यान देना है कि ड्रिप इरिगेशन में वो सिस्टम बना रहता है कि 1 घंटा में 4-4.5 लीटर तक पानी आता है। तो दोनों साइड में 1.5 मीटर की दूरी पे पाइप जड़ से रहेगा और उसको जो है 1 घंटा चलाएंगे 4-5 दिन के अंतर पे तो वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: तो पानी की समस्या नहीं है, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें ये है कि हम ज्यादा पानी न लगने दें, ये हमको देखना है।
1: अच्छा। तो नींबू वर्गीय में हमारे ग्रामीण बंधु को सबसे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि अधिक से अधिक पानी उसमें न लगने दें, नहीं तो फसल बर्बाद हो सकती है।
0: हाँ, किसान भाइयों को ये ध्यान देना होगा कि जहाँ पे वो नींबू की खेती करते हैं बड़ा प्लॉट है तो उस प्लॉट को छोटे छोटे भागों में बांट लें और छोटे छोटे भाग में बांट करके पानी की उचित निष्कासन की व्यवस्था रखें

0: और उसमें जो पानी है जमने न दे, हल्का सा ढाल हो। सबसे बड़ा आसान सा चीज़ ये है कि फसल लगाने से पहले वो पूरे खेत की जुताई कम से कम 3-4 बार कर ले, और पट्टा दे करके उसको सब प्लॉट में, छोटे छोटे प्लॉट में बांट करके पौधा लगा सकते हैं।
1: जी, और उर्वरक की बात अगर आती है तो क्या कर सकते हैं हमारे ग्राउंड में? तो
0: उर्वरक इसके लिए, चूंकि 5 बारिश हम लोग देख रहे हैं कि पत्ती का फलस आता है, तो इसके लिए उर्वरक का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। उर्वरक का सीधा संबंध है प्रोडक्शन से।
1: अच्छा
0: तो जब हम लोग फसल लगाते हैं, तो फसल लगाने के समय में हम लोग 15 से 25 केजी के बीच में कंपोस्ट देने का रिकमेंडेशन करते हैं, और यहाँ पे झारखंड के केस में 300 से 500 ग्राम DAP वो प्रयोग कर सकते हैं
1: प्रति हेक्टेयर।
0: प्रति गड्ढा,
1: अच्छा
0: और 50 से 60 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस गड्ढा के समय में लगाएंगे। लेकिन उसके बाद जब जैसे हमारा फसल होते जा रहा है, तो हम इसको, जो हमारे यहाँ सिचुएशन है, ऐसे हम लोग चाहें तो 3-3 महीना के अंतराल पे दे सकते हैं।
1: जी,
0: लेकिन चूंकि किसान भाइयों के पास, चूंकि
1: पूंजी का अभाव।
0: पानी या ये सब का दिक्कत होता है, तो किसान भाई क्या कर सकते हैं कि जून जुलाई में एक बार खाद देंगे, और दूसरा खाद जो है सितंबर अक्टूबर में देंगे।
1: अच्छा
0: तो सितंबर अक्टूबर में देंगे, और एक ये करना उनको है कि दोनों समय में गोबर खाद मिलाएंगे,
1: अच्छा
0: और गोबर खाद देते समय में जरूर क्लोरोपाइरीफॉस का प्रयोग करेंगे। 60-70 ग्राम प्रत्येक गड्ढा में क्लोरोपाइरीफॉस का यूज करेंगे। और जहाँ तक खाद की बात है, तो DAP शुरुआत में किसान भाई 300, एक पहला साल 300 DAP रखेंगे, 500 यूरिया रखेंगे, और 200 से 300 के बीच में पोटास रखेंगे। इसकी
1: जी।
0: मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, 5-6 साल बाद स्थिर कर लेंगे। स्थिर कर लेंगे, उसमें उनको क्या करना है कि DAP की मात्रा को 1 केजी तक पहले जब दे रहे हैं, तो 800 ग्राम से 1 केजी के बीच में DAP देंगे, और 400 से 600 ग्राम के बीच में पोटास देंगे, और उनको लगे कि कंपोस्ट यदि ज़्यादा दे रहे हैं तो यूरिया की मात्रा कम देंगे, और कंपोस्ट ज़्यादा देते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद है।
1: जी
0: इसके अलावा किसान भाइयों को ये मेरा सलाह है कि प्रत्येक गड्ढा में शुरुआत में वो जिंक सल्फेट और बोरोन, जिंक सल्फेट 50 ग्राम और बोरोन 20 ग्राम हर एक साल कम से कम दें,
1: अच्छा
0: तो इससे उनकी उर्वरक की डिमांड पूरी होगी।
1: अच्छा कभी कभी हमारे ग्रामीण बंधु लोग जैसे प्रथम वर्ष में जैसे फल फूल अगर लग रहे हो तो उस स्थिति में उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
0: शुरुआत में किसी भी नींबू वर्गीय या किसी भी फल के मैं बात करूं, तो किसान भाइयों को ये सलाह है कि जो पहला साल वो लगा रहे हैं,
1: जी
0: चूंकि वो गुटी वाला रहता है, तो उसमें कंडीशन है कि वो आएगा ही फूल, तो किसान भाई ऐसी स्थिति में फूल को 3 साल तक तो किसी कीमत पे नहीं लेना है।
1: अच्छा
0: 3 साल तक किसी कीमत पे नहीं लेंगे,
1: जी
0: और उनको ये करना है कि शुरुआत में किसान भाई पौधा सीधी तरीका से जाए। उसके लिए वो एक डंडा 3-4 फीट का रखेंगे, उसी में पौधे को बांध देंगे। लेकिन डंडा को जमीन में गाड़ने से पहले 2 ml क्लोरोपाइरीफॉस 1 लीटर पानी में मिला करके उसको ट्रीट कर लेंगे,
1: अच्छा अच्छा
0: और उसको नीचे रखेंगे, उससे दीमक का प्रकोप कम होगा। और शुरुआत के जो 50 से 60 सेंटीमीटर का है, वहाँ तक कली निकलने नहीं देंगे,
1: अच्छा
0: और उसको सीधे बढ़ने देंगे।
1: अच्छा
0: कहीं पे भी उनको लगे, तो जैसे ही हुआ तो 60 डिग्री के अंतर पे एक दो पौधा, फिर 30 सेंटीमीटर के बाद दूसरा कली निकलने देंगे, और कहीं पे भी 3 साल तक फुल सिम्टम्स दिख रहा है, तो इमीडिएट उसको, प्रैक्टिकल के तौर पे छोड़ेंगे नहीं, इमीडिएट उसको उनको तोड़ देना
1: तोड़ देना
0: चाहिए।
1: चाहिए जी। नींबू वर्गीय पौधों से छुट्टी खेती बाड़ी में और वैसी कोई बात है?
0: किसान भाइयों को एक काम हमेशा करना चाहिए, जब भी नींबू की खेती कर रहे हैं तो समय समय पे उनको अपने बाग को घूमना चाहिए।
1: अच्छा
0: जैसे इसमें एक होगा, कभी देखेंगे कि पत्ती बहुत छोटा हो रहा है, तो साइला नामक कीड़ा माइकोप्लाज्म से होता है, तो उसके लिए उनको कीटनाशक का छिड़काव कम से कम 2-3 छिड़काव करना चाहिए
1: अच्छा अच्छा
0: जब पत्ती छोटी होने लगे। दूसरा चीज होता है कि कहीं कहीं जो है उनको गोंद जैसा नजर आने लगे, वो फंगल अटैक है। उस फंगल अटैक को रोकने के लिए किसान भाई अपने खेत में बेविस्टीन, मैनकोजेब या ब्लू कॉपर का छिड़काव करना चाहिए।
1: अच्छा
0: ब्लू कॉपर का

0: छिड़काव करते हैं तो एक लीटर में 3 ग्राम मिलाएंगे।
1: अच्छा।
0: वेविस्टिन हो तो 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे। दूसरा एक चीज आता है कैंकर, जो उनको फल जब लगेगा उस स्थिति में आती है, पत्ती में काला काला दाग हो जाएगा, फल में काला काला दाग हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में किसान भाइयों को कैंकर से बचाव के लिए दवा एस्ट्रिप्रोसाइक्लिन दवा है, उसका 10 लीटर पानी में 1 ग्राम घोल करके समय समय पर छिड़काव करते रहना चाहिए,
1: तो इससे बचाव हो
0: तो ये उनका ओवरऑल हो गया। एक चीज आती है यहाँ पे कि कभी कभी फल में छेद, फल मक्खी का भी प्रकोप होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो उसके लिए किसान भाई को मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहूँगा, जो पानी का बोतल, जो हम लोग 1 लीटर वाला पानी का बोतल पीते हैं, उसी का जो गर्दन है, गर्दन से नीचे 2 से 3 सेंटीमीटर के पास में काट करके 3 तरफ से कर लेंगे, और उसको ऊपर साइड वाला में नहीं काटेंगे और एक तरीका से छेद कर लेंगे, एक लियोर बनाएंगे। कभी इसको हम लोग रखें कि वीडियो के माध्यम से लोगों को दिखाएं, या हो सकता है कि मैं केवीके से आ करके किसान भाई सलाह ले सकते हैं कि लियोर मिथाइल यूजेनॉल का प्रयोग करके वो कर सकते हैं, तो उससे फल मक्खी का हम लोग कंट्रोल करते हैं।
1: तो उसको लगाएंगे कहाँ पर?
0: पेड़ में लगा देना है उनको।
1: अच्छा।
0: 8-10 पेड़ के बीच में एक जगह लगा देना है। अच्छा। और उससे क्या है कि फल मक्खी कंट्रोल हो जाती है।
1: तो ये थी बातें नींबू वर्गीय पौधों की खेती की, और हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे जी। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और नींबू वर्गीय पौधों से संबंधित जानकारियां हमारे ग्रामीण भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता नींबू वर्गीय पौधों की देखरेख। भेंट वार्ता करते हैं डॉक्टर दिलीप कुमार, कृषि विशेषज्ञ क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी पलामू, और इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे साथी भाई संतोष कुमार। आइए अब सुनते हैं लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। अब चलते चलते मौसम का हाल। आज स्थानीय शहर डालरियनगंज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह में आर्द्रता रही 85% जबकि शाम की आर्द्रता 95% दर्ज की गई। वर्षापात 0.10 मिलीमीटर। इसी के साथ ही हमारा आज का यह सभा अब यहीं समाप्त होता है। अपने रेडियो दोस्त प्रदीप को दें इजाज़त। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3

0: सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
1: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
2: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
1: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
3: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
7: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
8: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
7: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
9: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पद्मभूषण दिशम गुरु दिवंगत शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 100 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जेपीएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। झारखंड में एसआईआर अभियान के तहत कल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का किया जाएगा प्रकाशन। देवघर के राजकीय श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं के लिए आज से विशेष हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। और राजधानी रांची समेत राज्यभर में अच्छी बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 अगस्त तक भारी वर्षा का जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। पद्मभूषण दिशोम गुरु दिवंगत शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर रामगढ़ के बरलंगा थाना क्षेत्र के लुकैया टांड में आज विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 100 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां दिवंगत शिबू सोरेन के आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। दिशोम गुरु की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आज राज्य के सभी जिलों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
10: पूरे राज्यभर में आदरणीय गुरुजी के याद में लोग एकत्रित हो रहे हैं। हर एक जिला आज उनके याद में राजनीतिक दल से ऊपर उठकर लोगों को इकट्ठे होते भी हम देख रहे हैं, क्योंकि आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी अपने आंदोलन के माध्यम से अलग पहचान बनाते बनाते उन्होंने योगदान दिया और धीरे धीरे वो राजनीतिक लकीर को पार कर इतना आगे चले गए जहाँ उनके पास नेता, विधायक, मंत्री सभी फीके पड़े।
9: दिशोम गुरु शिबू सोरेन को आज रांची स्थित कांग्रेस भवन में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान नेताओं ने कहा कि शिबू सोरेन का पूरा जीवन संघर्ष, सामाजिक न्याय और झारखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए समर्पित रहा।
11: दलित, शोषित, पीड़ित, यहाँ के आदिवासी, पिछड़े तमाम वर्गों के लोगों के हित के लिए वे बराबर संघर्ष करते रहे। उन्होंने सत्ता को नहीं बल्कि संघर्ष को, और उन्हीं के संघर्ष का देन है कि आज हम झारखंड अलग प्रांत में रह रहे हैं और यहाँ की अस्मिता के लिए हम सबों को एकजुट होकर के गुरु जी के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा ली।
9: साहिबगंज के सिद्धो कान्हू स्टेडियम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में जननायक पद्मभूषण शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर झामुमो नेताओं और स्थानीय लोगों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही राज्य के राजस्व, निबंधन, भूमि सुधार और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा द्वारा

0: अनावरण किया गया।
1: इस राज के निर्माता रहे गुरु जी, जल जंगल जमीन की आवाज को हमेशा मुखर होकर के उन्होंने उठाया। आज गुरु जी सिर्फ एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज के एक आदर्श। हम लोग चाहते हैं कि गुरु जी का त्याग, उनका संघर्ष और उनके बताए रास्तों को संसार आशंसा करते हुए उनके सपनों का राज समृद्ध झारखण्ड और अग्रणी झारखण्ड बनाने का हम लोग।
0: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार मामले पर गंभीरता से नजर रखे हुए है, जांच जारी है और समय आने पर छात्रों की मांगों के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। इस बीच भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मामले में सरकार को शीघ्र ठोस निर्णय लेना चाहिए। उधर जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी सीबीआई जांच की मांग की।
2: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं, जेएसएससी और जेपीएससी सीजीएल के परीक्षाओं में गड़बड़ियों के लिए सीधे छात्रों से बातचीत की जाए और उनके मांगों के अनुरूप त्वरित कदम उठाए और न सिर्फ सीबीआई के जांच के आदेश दिए जाए बल्कि ऐसे प्रावधान भी बनाए जाए ताकि भविष्य में कोई अनियमितता बरतने की हिम्मत न कर सके।
0: राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत कल 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची और एएसडीडी सूची का ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मतदाताओं से मतदाता सूची में अपना विवरण जांचने और पात्र लोगों को नाम जुड़ाने के लिए जागरूक करने की अपील की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय कल पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक #NewVoters सोशल मीडिया अभियान भी चलाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
3: सेवा जोहार, तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5000 से अधिक लोक कलाकारों, झूमर, छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से। महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियां, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
4: यहां मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खानपान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए। अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: देवघर के राजकीय श्रावणी मेले में आए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए झारखंड सरकार ने आज से विशेष हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत करा दी है। जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आज से देवघर और बासुकीनाथ के बीच किफायती हवाई सेवा का संचालन किया जा रहा है। टिकट की बुकिंग हदगढ़ मैदान में बनाए गए काउंटर से की जा रही है। विशेष जानकारी के लिए वेबसाइट www.jharkhandaviation.in और हेल्पलाइन नंबर 9122583111 पर जारी किया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार 7 अगस्त को जमशेदपुर स्थित ब्रह्म कुमारीज यूनिवर्सल पीस पैलेस रिट्रीट सेंटर से 10 करोड़ देशव्यापी नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे विशेष रूप से तैयार की गई नशामुक्ति जनजागरण बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह अभियान ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नशा मुक्त भारत अभियान तथा गृह मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मिशन स्पंदन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। रिम्स में विश्व अंगदान दिवस के तहत सोसाइटी ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पोस्टर, निबंध, नुक्कड़ नाटक और प्रश्नोत्तरी जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से अंगदान के महत्व की जानकारी दी गई। चतरा जिले में पुलिस ने दो युवकों को देसी पिस्तौल और कई कारतूस तथा अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वे दोनों भाकपा माओवादी संगठन के जोनल कमांडर मनोहर गंजू के निर्देश पर भुईयाडीह घाटी में फायरिंग कर मालवाहक वाहनों में आगजनी की घटना को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैलाने जा रहे थे। मौसम। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में इस सप्ताह अच्छी बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 8 अगस्त तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, आकाशीय बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। पद्म भूषण दिशम गुरु दिवंगत शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जेपीएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। झारखंड में एसआईआर अभियान के तहत कल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का किया जाएगा प्रकाशन। देवघर के राजकीय श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं के लिए आज से विशेष हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। और राजधानी रांची समेत राज्यभर में अच्छी बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 अगस्त तक भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
6: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
7: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे दुमका संवाददाता।
1: उपराजधानी दुमका में आज दिशम गुरु शिव सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। शहर के खिजरिया स्थित शिव सोरेन आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में दुमका के विधायक और गुरुजी के छोटे पुत्र बसंत सोरेन, जामा विधायक लुईस मरांडे तथा सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके संघर्ष और सपनों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर बसंत सोरेन ने कहा कि
2: बाल बच्चे पढ़े लिखे स्वावलंबी बने और वही प्रयास हम लोगों का भी है और पार्टी का भी यही दायित्व है और वो उस चीज को कर रही है और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो उनके अधूरे सपने हैं बहुत सारे पूरे हो रहे हैं, बहुत सारे बाकी हैं, उन सबको हम लोग पूरा करें।
1: जामा विधायक लुईस मारांडी ने

0: गुरु जी के जीवन संघर्ष और उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि
1: आज पहले पुण्यतिथि के रूप में आज हम सारे लोग गुरु जी द्वारा स्थापित उनका आवासीय परिसर में हम सारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनको याद किए हैं और हम सारे लोगों को उनकी कमी खली है। उनका हम सभी ने देखा है कि वो किस तरह से गांव कैसे जाते थे, कैसे कहाँ बैठते थे, कैसे लोगों से बात करते थे।
0: दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव अपने उत्कर्ष पर है। मेले में अब तक करीब 4 लाख शिव भक्त और कांवरिया बाबा का जलाभिषेक कर चुके हैं। सावन की पहली सोमवारी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। रात 2:30 बजे मंदिर का पट खुला और सरकारी पूजा के बाद भोर 3:30 बजे से जलार्पण शुरू हुआ। आज मंगलवार को भी भक्तों की यहां भारी भीड़ रही। लोगों ने अर्घा के माध्यम से बाबा को जल अर्पित किया। मंदिर के पुरोहित सुबोध पंडा बताते हैं कि
2: श्रावण महा शेष महीना होता है, शिव का ही महीना कहा जाता है और शेष महत्व है जलाभिषेक का।
0: मंदिर के एक अन्य पुरोहित पप्पू पंडा ने बताया कि
3: जल भरते हैं तो एक जल बाबा बैद्यनाथ के लिए और एक जल बाबा बासुकीनाथ के लिए। बासुकीनाथ के बिना पूजा अधूरा माना जाता है।
0: भक्त बाबा का दर्शन और जलार्पण कर आनंद और सुख की अनुभूति से अभिभूत हो रहे हैं। भक्त बताते हैं कि
4: जितने भी मतलब लेडीज है, महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत खास है सोमवार, उनके लिए बहुत अच्छा है। हम जो भी मांगते हैं उपवास करते हैं, बाबा से कुछ भी मांगते हैं पूरा करते हैं, इसीलिए आज बाबा का दरबार आए हैं।
0: एक अन्य भक्त ने कहा कि
5: बाबा का बढ़िया करके बहुत आनंद
0: मेले में सांस्कृतिक आयोजनों के साथ साथ दुमका जिले के हस्तशिल्पों और महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए स्टॉल भी लगाए गए हैं। आजीविका मिशन से जुड़ी अंजू देवी बताती हैं कि
6: पीतल का सामान यहाँ हुआ है, मतलब लाया गया है, और बांस का सामान लाया गया है और शिवलिंग लाया गया है पत्थर का।
0: बहरहाल इस वर्ष श्रावणी मेला 28 अगस्त तक चलेगा। मेले में आने वाले भक्तों को जिला प्रशासन द्वारा हर स्तर पर सेवा सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। आर की नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
7: अभी आप सुन रहे थे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आप सबका रेडियो होस्ट सैका चैटर्जी और आपको सुनाने जा रहा हूं आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम एक रंग। दोस्तों आज हम बात करेंगे सदाबहार अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का। जी हाँ दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती यानी मिथुन दा का असली नाम है गौरांग चक्रवर्ती और उनका जन्म 16 जून 1950 में हुई थी। वो एक भारतीय अभिनेता हैं, फिल्म निर्माता हैं, उद्यमी और राजनीतिज्ञ भी है। 5 दशकों से अधिक के अपने करियर में उन्होंने 350 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है जिसमें अधिकतर हिंदी और बंगाली भाषाओं में है। इसके अलावा उन्होंने कुछ भोजपुरी, तेलुगु, ओडिया, तमिल, कन्नड़ और पंजाबी फिल्में भी की है। उन्हें महागुरु के नाम से भी बुलाया जाता है। वो राज्यसभा के पूर्व सांसद रहे हैं। इसके अलावा मिथुन दा को 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। जनवरी 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला 3रे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान वर्ष 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान किया गया जिसकी घोषणा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सितंबर 2024 में की गई। आइए दोस्तों मिथुन दा को याद करते हुए सुनते हैं वो गीत, वो सदाबहार गीत जिसे मिथुन दा ने अपने नृत्य के जरिए अमर कर दिया था। जी आप ठीक समझ रहे हैं, डिस्को डांसर फिल्म से हम सुनेंगे याद आ रहा है, जिसे गाया था बप्पी लहिरी ने, लिखा था अंजान और

दोस्तों मिठुन दा ने मृणाल सेन द्वारा निर्देशित आर्ट हाउस ड्रामा मृगया जो 1976 में आई थी उसी फिल्म से अभिनय करियर की शुरुआत की और उसी के लिए यानी कि अपनी पहली फिल्म के लिए ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उनकी प्रमुख सफलता बंगाली फिल्म नोदी थेके सागरे से मिली। चक्रवर्ती को 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर से और भी अधिक प्रसिद्धि मिली और युवाओं के बीच तो वो छा गए।

0: भारत और सोवियत संघ के बॉक्स ऑफिस पर डिस्को डांसर फिल्म को बड़ी सफलता मिली। अभी आप सुन रहे थे डिस्को डांसर फिल्म से एक गीत। आइए दोस्तों अब सुनते हैं मिठुन दा अभिनीत गुलामी फिल्म से गीत को, जिसमें मिठुन दा के अलावे धर्मेंद्र थे, अनीता राज, नसरुद्दीन शाह, रीना राय और स्मिता पाटिल जैसे कलाकार थे, लेकिन उसमें भी मिठुन दा की खास अदा को कोई शक। जी हाँ, इस डायलॉग को बहुत प्रसिद्धि मिली थी। आइए सुनते हैं गुलामी फिल्म से उस गीत को जिसे गाया है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार। गीत को लिखे हैं गुलजार जबकि धुन बनाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: बस यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे।

दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती मोनार्क ग्रुप के मालिक हैं, जिसकी हॉस्पिटलिटी और शिक्षा क्षेत्र में रुचि है। उन्होंने पापरजी प्रोडक्शंस के नाम प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया है। उन्होंने दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ मिलकर जरूरतमंद अभिनेताओं की सहायता के लिए सीने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन सिंटा नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की थी। वे फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड एलाइड मौजूद यूनियन के अध्यक्ष भी थे, जो सिनेमा कर्मचारियों के कल्याण की रक्षा करता है और उनकी मांगों और समस्याओं का समाधान करता है। दोस्तों उन्हें कई टीवी शोज में भी इन दिनों देखे गए हैं। आइए दोस्तों अब सुनते हैं 1981 में आए मिठुंदा की फिल्म हम पांच से उस गीत को, जिसे गाया है अमित कुमार, लता मंगेशकर और गीत को लिखा है आनंद बख्शी, जबकि धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस फिल्म में मिठुंदा के साथ देखा जा सकता है राज बब्बर, दीप्ति नवल, अरुण ऐरानी, संजीव कुमार और शाबाना आजमी सरीखे स्टार को। तो आइए दोस्तों सुनते हैं हम पांच फिल्म के गीत।

0: दोस्तों, जैसा कि पहले बताया है, मिठुन चक्रवर्ती ने 1976 में मृणाल सेन की आर्ट हाउस फिल्म रिगया से हिंदी फिल्म जगत में पदार्पण किया था और उसके बाद उन्होंने दुलाल गुहा की हिट थ्रिलर दो अनजाने में एक संक्षिप्त भूमिका निभाई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, रेखा और प्रेम चोपड़ा मुख्य भूमिका में थे। 1978 में मिठुंदा ने अरविंद मुखोपाध्याय की रोमांटिक ब्लॉकबस्टर बांग्ला फिल्म नोदी थेके सागोरे से फिल्म बनाई। उन्होंने मेरा रक्षक में रामेश्वरी के साथ अभिनय किया। आर त्यागराजन के स्वयं के निर्देशन में बनी फिल्म आटुकारा आलामेलू की रिमेक थी ये। उसमें व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था। 1979 में मिठुन चक्रवर्ती ने रविकांत नगाइज की जासूसी थ्रिलर सुरक्षा के साथ एक और हिट फिल्म दी थी। इसके बाद कई सफल फिल्में आई, जैसे तराना, पतीता, 1920, हम 5, हमसे बढ़कर कौन और बंगाली फिल्म कोलंकिनी कोंकाबोती। 1982 में मिठुन चक्रवर्ती ने शौकीन, अशांति, तकदीर का बादशाह जैसी लगातार सफलता हासिल की। इसी वर्ष बी सुभाष की डांस फिल्म डिस्को डांसर से उन्हें जबरदस्त प्रसिद्धि मिली। आइए दोस्तों, अब चलते चलते सुनते हैं मिठुन चक्रवर्ती की एक हिट फिल्म जीते हैं शान से के उस गीत को, जो काफी फेमस हुई थी। गीत को गाया था कविता कृष्णमूर्ति और अनु कपूर। गीत को लिखा था इंदिवर मिठुंदा के साथ। इसमें थिरकते नजर आई थी मंदाकिनी और इस गीत को धुनों में ढला था अनु मलिक।
1: सब लोग बोलता है तुम एक नंबर का बेवड़ा।
2: देखा, मुझे इसका नशा कहाँ चढ़ता है। मुझे तो तेरे प्यार का नशा यहाँ घसीट कर लाता है। तुझे मालूम, मेरे दिल में तेरे प्यार की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है।
3: अरे कौन सी फैक्ट्री है भाई?
2: रोमांस की, रोमांस। जॉनी एंड जूली कंबाइन, जहाँ मोहब्बत का वाइन बनता है, वेट 69 बनता है। पिया
3: नहीं
2: तो तुझे कैसे मालूम? ए जूली, मेरी शादी के कॉन्ट्रैक्ट पर कब साइन करता है?
1: शादी? You mean marriage?
2: Yes.
1: तुम्हारा माफिक बेवड़ा के साथ?
2: ए, फिर बेवड़ा बोली?
1: हाँ बेवड़ा।

0: को लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी

0: किया, ला ला ला ला ला ला, हाथ तेरा मांगा, साथ तेरा मांगा, सबको रिजेक्ट किया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक रंग। एक रंग के तहत अभी तक हम लोगों ने सुना अपने जमाने के प्रसिद्ध फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती के कुछ गानों को, और आज हम बात करेंगे आवाज के उस जादूगर, उस रूहानी आवाज के मालिक हेमंत मुखोपाध्याय का। उनका जन्म 16 जून 1920 को हुई थी दोस्तों, और वो एक भारतीय फिल्म संगीत निर्देशक पार्श्व गायक थे जिन्होंने मुख्य रूप से बंगाली और हिंदी में गाया, साथ ही मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, तमिल, पंजाबी, भोजपुरी, कोंकणी, संस्कृत और उर्दू सहित कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी गाना गाया। वो बंगाली और हिंदी फिल्म संगीत, रविंद्र संगीत और विभिन्न अन्य विधाओं के कलाकार थे। उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए और वे लोकप्रिय रूप से भगवान की आवाज़ के रूप में जाने जाते थे। तो आइए दोस्तों, हेमंत कुमार को याद करते हुए, जिनकी आवाज कानों में गूंजते ही लोग बेकरार हो जाते थे, गाना सुनते हैं 20 साल बाद फिल्म से, जिसे गाया है खुद हेमंत कुमार ने, लिखा है शकील बदायूनी और धुन दिया है हेमंत कुमार ने।

दोस्तों, हेमंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उनके नाना के घर हुआ था, जहां उनके नाना चिकित्सक थे। उनका पैतृक परिवार मूल रूप से जयनगर मजलपुर का था और 1900 के दशक के आरंभ में कोलकाता बसा था। कोलकाता में पले बड़े हेमंत अपनी प्रारंभिक शिक्षा नसीरुद्दीन स्कूल से प्राप्त की, जिसके बाद वे भवानीपुर के मित्रा इंस्टीट्यूशन ऑफ स्कूल में चले गए। स्कूल के दिनों में उनकी सुभाष मुखोपाध्याय, जो एक प्रसिद्ध कवि थे, उनसे बनी और लेखक संतोष कुमार घोष से गहरी मित्रता हो गई। हेमंत कुमार ने इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए जादवपुर स्थित बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में दाखिला लिया। हालांकि उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता की असहमति के बावजूद संगीत में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ समय के लिए साहित्य में भी हाथ अजमाया और बंगाली पत्रिका देश में लघु कहानी प्रकाशित की, लेकिन 1930 के दशक के अंत तक उन्होंने खुद को पूरी तरह से संगीत के लिए समर्पित करने का निर्णय ले लिया था। तो दोस्तों, आइए हेमंत कुमार की इस जर्नी को याद करते हुए हम सुनते हैं 1959 में बलराज साहनी मीना कुमारी अभिनीत फिल्म सट्टा बाजार के उस गीत को, जिसे गाया था हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने, गीत को लिखा था गुलशन बावरा और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी।

दोस्तों, यूं तो हेमंत कुमार गायक के रूप में प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में संगीत निर्देशन भी किया। 1954 में आई फिल्म नागिन में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर उन्हें मन डोले मेरा तन डोले गीत के लिए बेस्ट संगीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। आइए दोस्तों, सुनते हैं नागिन फिल्म से उस गीत को जिसे गाया है लता मंगेशकर, लिखा है राजेंद्र कृष्ण और म्यूजिक डायरेक्टर हैं हेमंत कुमार।

दोस्तों, हेमंत कुमार एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। उन्होंने न सिर्फ फिल्मों के लिए गीत गाए, गीतों का निर्देशन किया, बल्कि उन्होंने एक बंगला फिल्म का भी निर्देशन किया जो फ्लॉप रहा, लेकिन उन्होंने निर्माण किया कई बंगला और हिंदी फिल्मों का जो काफी हिट साबित हुए। 1969 में एक फिल्म आई थी खामोशी, इसके निर्माता थे स्वयं हेमंत कुमार, गीत के निर्देशक भी थे हेमंत कुमार, हीरो थे राजेश खन्ना, हीरोइन थी वहीदा रहमान और इसके गीत लिखे थे गुलजार, जबकि आवाज दिया था हेमंत कुमार। आइए सुनते हैं।

दोस्तों, इससे पहले भी हेमंत कुमार ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में किस्मत अजमाया था। 1964 में उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कोहरा। इसमें हीरो तो थे विश्वजीत, लेकिन हीरोइन थी वहीदा रहमान। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि हेमंत कुमार जब जब फिल्मों का निर्माण किया है, अधिकांश क्षेत्र में उन्होंने वहीदा रहमान को ही रिपीट किया है, क्योंकि वहीदा रहमान की अभिनय प्रतिभा की वो कायल थे। दोस्तों, हेमंत कुमार ने जिन जिन फिल्मों का निर्माण किया, उन फिल्मों में संगीत काफ़ी मज़ेदार होते थे, दर्शकों को काफ़ी पसंद आता था। कोहरा फिल्म में भी हेमंत कुमार ने अपने संगीत निर्देशन में कई अनमोल गीत गाए। इस फिल्म के गीतों को लिखा था कैफी आज़मी। आइए सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज़ में इस खूबसूरत गीत को।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक रंग। एक रंग के तहत हम लोगों ने सुना मिथुन चक्रवर्ती पर फिल्माए गए कुछ फिल्म गीतों को, हमने सुना हेमंत कुमार पर फिल्माए गए गीतों को भी। आइए दोस्तों अब जुड़ते हैं कार्यक्रम खुला आकाश के साथ। खुला आकाश कार्यक्रम के तहत आज हम सुनेंगे वार्ता जिसका विषय है गहराता जल संकट। वार्ताकार हैं राज आलोक सिन्हा।
1: जल संकट आज पूरी दुनिया भर में, विशेषकर भारत में, एक गंभीर समस्या बन गई है। जहां 60 करोड़ से अधिक लोग स्वच्छ पानी की कमी का सामना कर रहे हैं, तेजी से होता शहरीकरण, भूजल का अत्यधिक दोहन, जल प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा में अनिश्चितता इसके प्रमुख कारण हैं। भारत में विश्व की कुल आबादी का लगभग 18% हिस्सा निवास करता है, जबकि देश में पीने योग्य जल संसाधनों का मात्र 4% भाग ही उपलब्ध है। वस्तुतः जल संकट एक गंभीर वैश्विक चिंता का विषय है, जिसका भारत जैसे जल समृद्ध देश पर विशेष रूप से गहरा प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण जल की मांग लगातार बढ़ रही है, जबकि मीठे पानी के स्रोत सीमित हैं। इसके परिणाम स्वरूप जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां उपलब्ध जल संसाधन बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता भारत जैसे देश में इस संकट के दूरगामी परिणाम है। भारत में जल संकट के कई कारण हैं। तीव्र शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण जल निकायों में प्रदूषण बढ़ गया है, जिससे वे उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं। इसके अलावा कृषि पद्धतियों में अक्षमता और भूजल के अत्यधिक दोहन से महत्वपूर्ण जल स्रोत समाप्त हो गए हैं। जलवायु परिवर्तन से स्थिति और भी बिगड़ जाती है, जिससे वर्षा का पैटर्न अनियमित हो जाता है और नदियों का जल भंडारों के पुनर्भरण पर असर पड़ता है। खराब जल प्रबंधन और उचित बुनियादी ढांचे की कमी भी इस संकट को और भी गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए हम एक नज़र डालते हैं जल संकट के विनाशकारी परिणामों पर। जल संकट के विनाशकारी परिणाम होते हैं विशेष रूप से भारत में। जल की उपलब्धता में कमी से कृषि यानी खेतीबाड़ी प्रभावित होती है, जो हमारे देश भारतवर्ष की रीढ़ है, जिसके परिणाम स्वरूप फसलों की पैदावार कम होती है और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाती हैं। समुदायों को अपर्याप्त स्वच्छता और साफ सफाई से जूझना पड़ता है, जिससे जल जनित रोग फैलते हैं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के बीच जल संसाधनों को लेकर संघर्ष उत्पन्न होते हैं। कृषि पर अत्यधिक निर्भर क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक ताना बाना इन समस्याओं के कारण बुरी तरह प्रभावित होता है। जल संकट से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। इसके लिए हमें सतत जल प्रबंधन पद्धतियों को अपनाना होगा, जल उपचार और बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा, जल संरक्षण को बढ़ावा देना होगा और समान जन वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीतियां लागू करनी होगी। इस प्रयास में सरकार उद्योगों और समुदायों के बीच सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल संकट का सामना करने के लिए वर्षा जल संचयन, ड्रिप सिंचाई, जल पुनर्चक्रण, भूजल प्रबंधन और जन जागरूकता सबसे प्रभावी उपाय है। घरेलू स्तर पर नलों को बंद रखना और रिसाव को ठीक करना, जबकि सामुदायिक स्तर पर तालाबों का पुनरुद्धार और वृक्षारोपण महत्वपूर्ण है। यह जल संकट के अस्थायी समाधान हैं। आज हमारे समक्ष जो जल संकट की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो हमारे लिए यह आज एक समय ऐसा आ गया है जब हम सभी को अपने मन में इस बात के लिए गांठ बांध लेना होगा कि जल के बिना हम सभी प्राणियों का जीवित रहना असंभव है। इसलिए ऐसा कहा भी गया है कि जल है तो जीवन है। हमारी पृथ्वी का ज़्यादातर हिस्सा जल से भरा हुआ है, उसमें पीने और उपयोग करने वाले जल की मात्रा बहुत कम है। ऐसे में जल के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य को अपने दैनिक कार्य के लिए जल की आवश्यकता होती है। हम सुबह होते ही ब्रश करते हैं, उसमें जल की आवश्यकता होती है। स्नान करते हैं, उसके लिए जल की आवश्यकता होती है। हम खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, उसके लिए जल की आवश्यकता। मतलब जल के बिना आप जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन दिक्कत वहाँ होती है जहाँ जल का उपयोग हम दुरुपयोग करते हैं। जल का हमें उपयोग करना है, जल को बचाना है, तभी हम कल को बचा सकेंगे, कल को सुरक्षित रख सकेंगे, कल यानी कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको। और हमारे लिए भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। आप इस बात की कल्पना कीजिए कि बड़े शहरों में दिल्ली जैसे, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जल की समस्या इतनी गंभीर है, वहाँ हर आदमी जो नदी के किनारे जाके स्नान नहीं कर सकता है, तालाब का उपयोग नहीं कर सकता है, ऐसे में जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनके समक्ष कभी कभी नलों में पानी नहीं आने के कारण, पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें मतलब ब्रश करने की समस्या आती है, उनको अपना से

0: लिविंग करके भी ऑफिस नहीं जाने की समस्या आती है, तो ये इस चीज़ को हमें गंभीरता से समझना होगा कि आखिर अचानक से मौसम बदलने के कारण खासकर गर्मियों में मतलब पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत क्यों होती है। कई शहरों में ऐसी स्थिति हो जाती है जहाँ की जल की कमी नहीं होती थी, वहाँ का भी भूजल स्तर इतना नीचे चला गया है, हर आदमी अपने घर में पानी को किसी भी तरह से प्राप्त करने के लिए कई तरह के मतलब उपाय करते हैं लोग कि उनके घर में पानी आए, उसके लिए बोरिंग करवाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बोरिंग करवाना और जल का संचय नहीं करना हमारे लिए गंभीर समस्या खड़ी करता है। इस बात को हम सभी को समझना होगा, जन जागरूकता फैलानी होगी, और यह नहीं समझना हो कि हमारे घर में अगर पानी भरा हुआ है तो हम उसको यूं ही ऐसे खर्च करें। उसका एक एक बूंद जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हम समझते हैं कि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए हमारे शरीर में खून का होना ज़रूरी है, उसके एक एक बूंद का महत्व हम समझते हैं, उसी तरह से हम सभी को जल का भी महत्व समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारी सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएँ, हमारी नदियाँ और जल संसाधनों के किनारे ही विकसित हुए हैं, जो इस बात के प्रमाण हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। जल है तो कल है, यह सिर्फ एक कहावत नहीं है। इसे सिर्फ हम एक कहावत नहीं समझें, बल्कि हमको ये समझना हो कि यह हमारे जीवन का, जीवन जीने का हमारा प्रमुख मंत्र है। यह हमें जल के
1: दिया गया। उच्च सदन की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और कीमती सामान की चोरी का मुद्दा उठाया, जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी बात रखने के लिए कहा। खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की कथित चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों पर लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति की अनुमति से बोलते हुए कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है उसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब ये दल चंदा चोरी के मुद्दे पर नाटक कर रहे हैं। इस बीच द्रविड़ मुनेत्र कषगम के सदस्य तिरुचि शिवा ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में लिए जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच शून्यकाल में दो सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने देश में परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परिवहन आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन समय की आवश्यकता है। भाजपा की ही गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में कौशल विकास केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं तथा शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि औरैया में बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न भी पूछे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके जवाब भी दिए। प्रश्नकाल के दौरान लगातार नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश की अनुमति से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भाजपा की दर्शना सिंह, विश्वजीत सिन्हा, साधना सिंह, तृणमूल की ममता ठाकुर, द्रमुक के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के संतृप्त मिश्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मेदा रघुनाथ रेड्डी, अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरई, एम धनपाल, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, माकपा के वी शिवदासान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो और शिवसेना की ज्योति नागनाथ वाघमारे ने हिस्सा लिया। चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने माना कि देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण नागरिकों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विलंब से जन्म और मृत्यु पंजीकरण कराने से होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि जिन बच्चों का जन्म किसी अन्य देश में हुआ है, ऐसे बच्चों का भी जन्म भारत में दिखाया जाए और इसके लिए कानून की खामियों का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने आगाह किया कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी सही व्यक्ति के लिए कोई रोक नहीं है तथा इस प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 3.5 लाख से अधिक पंजीकरण केंद्र हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि देश में जन्म पंजीकरण स्तर 2014 में 86.6% था, जो 2024 में बढ़कर 99.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 72.5% था, जो बढ़कर 99.4% हो गया है। राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से देश और लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। मंत्री ने कहा कि सरकार जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जन्म या मृत्यु होने के 2 वर्ष के बाद यदि सूचना दी जाती है तो ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रजिस्ट्रार पंजीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में जन्म और मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर सूचना देने वाले मामलों में जो पुराने प्रावधान लागू हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने 2 साल से अधिक की अवधि वाले मामलों के लिए प्रावधानों में बदलाव करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि देश चाहता है कि भारत माता की गोद में पैदा होने वाली हर संतान का रजिस्ट्रेशन हो। ये मोदी सरकार का संकल्प है। साथ ही जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो भूत बनकर तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का मतदाता बना रहता है, ऐसे भूतों से देश छुटकारा चाह रहा है। राय ने कहा कि इसलिए समय से मृत्यु का पंजीकरण भी अत्यंत आवश्यक है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। उच्च सदन में ये विधेयक पारित होने के बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामा थमते न देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने आज विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। हालांकि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शोर शराबे के बीच ही सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा तो विपक्षी के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्न उत्तर होते हैं और सभी से अनुरोध है कि कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मैंने कल भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से ये अनुरोध किया था। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और चर्चा एवं संवाद के लिए है। ये नारेबाजी करने और तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि ये महत्वपूर्ण विधेयक है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विपक्ष के जिन सदस्यों ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पेश किए जाने के विरोध में बोलने के लिए नोटिस दिया था, उन्होंने आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया। इस विधेयक का उद्देश्य संदाय एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करते हुए उन्हें सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाना है। ये मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। आयकर अधिनियम 2025 तथा आयकर अधिनियम 1961 में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कर निर्धारण, अपील, दंड और अभियोजन से संबंधित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया गया है। कुछ मामलों में दंड की राशि बढ़ाने तथा कुछ मामलों में कर की दरों का युक्तिकरण करने का प्रस्ताव है। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिस्थितियों में दंड एवं अभियोजन से राहत का दायरा बढ़ाया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल भले ही नहीं चल सका, लेकिन सरकार ने कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वर्ष 2024 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में 254 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इन लोगों के कब्जे से 40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। मंत्री के अनुसार 103 विदेशी नागरिक अनिवार्य किराएदार सत्यापन के बिना किराए के मकानों में रह रहे थे। इस मामले में 63 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक अन्य लिखित उत्तर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एनक्रिप्टेड संचार एप्लीकेशन तथा डार्कनेट के माध्यम से संचालित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने के लिए खुफिया जानकारी आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि डार्कनेट आधारित मादक पदार्थ तस्करी तथा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होने वाले लेन देन की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल संबंधी विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सभी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में समर्पित डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी सेल स्थापित करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, उन्नत तकनीकों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से साइबर सक्षम संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देशभर में इस वर्ष 1 मार्च से अब तक लू के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4,853 मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में लू से सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जबकि तेलंगाना में सबसे अधिक मामले सामने आए। राय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने 2026-31 अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन कोष SDRF तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष NDRF के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों के अंतर्गत लू और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब SDRF और NDRF के माध्यम से राहत सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लू से बचाव और उसके प्रभाव को कम करने से संबंधित परियोजनाओं को भी आपदा न्यूनीकरण निधियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हालिया गिरावट का मुख्य कारण भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश की वृद्धि है। उनके अनुसार शुद्ध FDI वर्ष 2024-25 में घटकर 1 अरब अमरीकी डॉलर रह गया, जबकि ये 2023-24 में 10.2 अरब डॉलर तथा 2022-23 में 28 अरब डॉलर था। जितिन प्रसाद ने कहा कि शुद्ध एफडीआई प्रवाह में हालिया रुझान भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेश की बढ़ती वापसी से जुड़ा हुआ है। जितिन प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों एसईजेड से देश का निर्यात 2025-26 में 11.8% बढ़कर 16,36,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि एसईजेड की क्षमता का बेहतर उपयोग करने, निवेश आकर्षित करने तथा उन्हें घरेलू आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न कदम उठाती रहती है ताकि इन निर्यात क्षेत्रों की परिचालन दक्षता में वृद्धि हो सके। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण लगातार 12वें दिन आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे हैं।

दोस्तों ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। दोस्तों अब हम सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम चित्रपट से। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत करते हुए हम बात करेंगे एसपी बाला सुब्रमण्यम का। उन्हें प्यार से लोग एसपीबी या बालू के नाम से भी पुकारते थे और वो सिर्फ हिंदी सिनेमा के ही पार्श्व गायक नहीं थे बल्कि उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों में भी काम किया और कुल 16 भाषाओं में 50,000 से अधिक गीत गाए। आइए दोस्तों आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हम सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म से उस गीत को जिसे एसपी बालासुब्रमण्यम के साथ आवाज दिया है लता मंगेशकर ने। गीत को लिखा है देव कोहली जबकि म्यूजिक दिया है राम।

दोस्तों, एसपी बालासुब्रमण्यम का जन्म ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रांत के नेल्लोर में हुआ था। एक मजबूत संगीत पृष्ठभूमि वाले तेलुगु परिवार में उनका जन्म हुआ था। शुरुआत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बावजूद संगीत के प्रति उनके जुनून ने उन्हें पार्श्व गायन में एक सफल करियर की ओर प्रेरित किया। इसकी शुरुआत 1966 में तेलुगु फिल्म से हुई और उसके बाद उन्होंने अपने करियर में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी में अपने प्रदर्शन के लिए कई बार सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के पुरस्कार जीते। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म से एक और गीत को, जिसे फिर से एक बार गाया है लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम ने। संगीत है राम लक्ष्मण का और गीत को लिखा है देव कोहली।

दोस्तों, भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्मश्री, 2011 में पद्म भूषण और 2021 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। दोस्तों, कोविड-19 से संबंधित जटिलताओं के कारण 25 सितंबर 2020 को चेन्नई में उनका निधन हो गया था। आइए दोस्तों, सुनते हैं उनकी एक और हिट फिल्म एक दूजे के लिए से एक गीत, जिसे फिर से एक बार एसपी बालप सुब्रमण्यम के साथ आवाज मिलाया है लता मंगेशकर ने। गीत को लिखा है आनंद बख्शी और संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: பரவாயில்லையே, நீ நல்லா பாடுற.
1: கியா
0: தும்
1: தேரே மேரே பீச் மே.
2: ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर. दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट से. आइए दोस्तों अब सुनते हैं देशभक्ति गीतों का हमारा कार्यक्रम देश गान. देश गान के तहत हम सुनेंगे कुछ देशभक्ति गीतों को. तो सबसे पहले आइए सुनते हैं उस गीत को जिसे हमने लिया है बोस द फॉरगॉटन हीरो फिल्म से. इस फिल्म के निर्देशक हैं श्याम बेनेगल, जबकि संगीतकार हैं A.R. रहमान. गीत को लिखा है जावेद अख्तर साहब ने, जबकि इसे आवाज़ दिया है विजय प्रकाश.

दोस्तों, देशभक्ति गीत के इस कार्यक्रम में आइए फिर से एक बार सुनते हैं बोस द फॉरगॉटन हीरो से एक और गीत। दोस्तों, इस गीत के खास बात यह है कि इसके मूल बंगला लेखक है कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिसे हिंदी में अनुवाद किया है जावेद अख्तर साहब ने। इसे म्यूजिक तो दिया है, यानी कि इसके संगीतकार हैं A.R. रहमान, जबकि आवाज़ से संवारा है सोनू निगम और नचिकेता ने।

आइए दोस्तों, देश गान कार्यक्रम में हम फिर से एक बार सुनते हैं बोस द फॉरगॉटन हीरो फिल्म से जावेद अख्तर के लिखे और एआर रहमान के संगीत दिए हुए उस गीत को, जिसे खुद एआर रहमान ने अपने साथियों के साथ आवाज से भी संवारा है।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे देशगान, ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए बारी बारी से जुड़ते हैं दिल्ली और मुंबई केंद्र से, जहां से हम सुनेंगे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार, उर्दू समाचार और विविध भारती से प्रस्तुत आज के फनकार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
3: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं, चले नहीं देते। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत, खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
4: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि ये संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
4: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
1: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
5: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है। पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप News on AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। यूपीआई ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
6: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
7: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देश भर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज का ये कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार किशोर कुमार को।

सन 1929 के अगस्त महीने की चौथी तारीख को जन्मे किशोरदा ने तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता, भूमिका की समझ और अदायगी, सब कुछ अद्भुत। सच तो ये है कि किशोरदा अपने आप में अभिनय और गायन की एक संपूर्ण संस्था।

मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। उन दिनों आभास कुमार गांगुली के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा का एक स्थापित नाम बन चुके थे। परिवार के सदस्य अब नियमित रूप से मुंबई आने जाने लगे थे। मुंबई में किशोरदा की नई पारी की शुरुआत हुई किशोर कुमार के नाम से। 1946 में आई फिल्म शिकारी में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसके दो बरस बाद सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्हें पार्श्व गायन का मौका मिला।

0: बंसुरी बजा।
1: किशोर दा की अभिनय यात्रा जारी थी। अभिनय के साथ साथ फिल्मों के लिए गायन भी जारी था। अपने आप पर फिल्माए गए गीत तो उन्होंने गाए ही, वहीं देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी गीत गाए। उस दौर में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने उनसे कई फिल्मों में गीत गवाए। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, नौ दो ग्यारह और पेइंग गेस्ट।

0: जमाना क्या सहेगा।
1: 70 और 80 के दशक में भी बरमंदा के सुमधुर संगीत से सजी अनेक फिल्मों में किशोर दा ने कई सुरीले गीत गाए।
2: गाता

किशोरदा की प्रतिभा अनूठी थी। उनकी फिल्में आज हिंदी सिनेमा की अमूल्य निधि हैं। अपने गीतों में भी स्वरों से वो अभिनय किया करते थे।

0: एक चतुर नार बड़ी होशियार।
1: हास्य व्यंग पर किशोरदा की गहरी पकड़ थी, लेकिन गंभीर भूमिकाओं को भी किशोरदा ने बखूबी निभाया। सुनिए, उन्हीं पर फिल्माया गया

किशोरदा खुद एक मंजे हुए शानदार अभिनेता थे, इसलिए जिन अभिनेताओं के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया उन अभिनेताओं के अंदाज को अपनी गायकी में बड़े असरदार तरीके से उतारा और दिलकश अंदाज में पेश किया। फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन।

अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोरदा ने गायन को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। सन 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना। फिल्म आराधना से भारतीय सिनेमा के आकाश में उदित हुए पहले सुपरस्टार के रूप में राजेश खन्ना।

फिल्म आराधना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और गायक किशोर कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म से किशोरदा के करियर में एक रचनात्मक बदलाव की भी शुरुआत हुई और बाद के दशकों में फिल्म संगीत की दुनिया में किशोरदा ने गायन की बुलंदियों को छुआ। किशोरदा ने कई दिलचस्प फिल्मों का भी निर्माण किया, इनमें से कुछ के नाम हैं: दूर गगन की छाव में, दूर का राही, दूर वादियों में कहीं, झुमरू, जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, शाबाश डैडी और बढ़ती का नाम दाढ़ी। आज किशोरदा की बनाई फिल्में अभिनय के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। किशोरदा की फिल्मों में जहां हास्य का अपना रंग था, वहीं उतनी ही गहरी संवेदना भी। उनकी फिल्म का ये गीत जितना अर्थपूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी।

0: एक कलाकार के रूप में किशोरदा बेमिसाल थे, हर फन मौला थे। उनके कद्रदानों ने उन्हें नट सम्राट भी कहा। उनकी प्रतिभा के रचनात्मक आयाम एक से कहीं ज्यादा थे। उनके भीतर हास्य व्यंग्य का एक चितेरा, एक दार्शनिक, एक नटखट बच्चा, एक बेहद संवेदनशील इंसान और एक शानदार कलाकार समाहित था, जिसने अपने अभिनय और गीतों से हमें जाने कितनी बार हंसाया और गुदगुदाया।
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए ओए।

0: ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।
2: 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोरदा ने सांसों की सरगम पर अपना अंतिम गीत छेड़ा और फिर चले गए महायात्रा पर।

किशोरदा को अनेक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फिल्मी गैर फिल्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किशोरदा भारतीय संगीत के अनमोल रत्न थे और रत्न रहेंगे। एक अभिनेता, गायक, संगीतकार और फिल्मकार के रूप में किशोरदा ने भारतीय सिनेमा में जो अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए फिल्म जगत, फिल्मों के दर्शक और उनके गीतों के श्रोता सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

0: श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत के महान कलाकार किशोर कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

श्रोताओं, आज की सायंकालीन सभा की कई पड़ावों को पार करते हुए अब हम आ पहुंचे हैं उस मोड़ पर जहां हम सुन पाएंगे एक के बाद एक कई खूबसूरत सदाबहार फिल्म गीत, क्योंकि अब हम सुनेंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से प्रस्तुत कार्यक्रम रजनी।

मैं हूं आपका रेडियो साथी साइका चैटर्जी। दोस्तों, आज रजनीगंधा की पहली पादान पर हम दस्तक देंगे सन 1969 की दहलीज पर, जब रिलीज हुई थी फिल्म आराधना। राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर की सुपर हिट जोड़ी पर फिल्माए गए जिस गीत को हम आपको सुनाएंगे, उसे लिखा है आनंद बख्शी ने, जबकि संगीत से संवारा है सचिन देव बर्मन ने और आवाजें हैं किशोर कुमार लता मंगेशकर की।

सन 1981 रिलीज हुई फिल्म प्यासा सावन। स्टार कास्ट थे जितेंद्र, रीना रॉय, मौसमी चैटर्जी, देवेन वर्मा, मदनपुरी, विनोद मेहरा। रजनीगंधा के दूसरे पादान पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस फिल्म के उस गीत को जिसे आवाज दिया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर ने। गीतकार है संतोष आनंद और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

रजनीगंधा की तीसरी पादान पर हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं दोस्तों। क्या आपको ठंड लग रही है? बताइए बताइए। पर कैसे बताइएगा, मैं हूं यहां आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र की स्टूडियो में और आप है अपने अपने घरों में। खैर दोस्तों कोई बात नहीं, आइए सुन लेते हैं उस गीत को जिसमें लीला चंद्रवारकर कह रही है कि मुझको ठंड लग रही है। और विश्वजीत कह रहे हैं नहीं, वो क्या कह रहे हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, आइए सुनते हैं उन्हीं से। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की।

रजनीगंधा की चौथे पादान पर हम चलेंगे सन 1964 में, जब रिलीज हुई थी फिल्म राजकुमार। इसके गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, और जो गीत आप अभी सुनेंगे उसे गाया है लता मंगेशकर।

बेहतरीन सदाबहार नगमों को गुनगुनाते हुए हम पहुंच चुके हैं रजनीगंधा की पांचवी पादान पर, जहां हम आपको सुनाएंगे आराधना फिल्म से आनंद बख्शी के लिखे और सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार उस गीत को, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोंसले ने।

दोस्तों, जब दिल झूमता है तो प्यार अंगड़ाई लेती है और बादल दीवाना हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, रजनीगंधा की छठे पादान पर हम बात कर रहे हैं शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर की बहुचर्चित फिल्म कश्मीर की कली की, जिसमें कुछ ऐसा ही एक गीत लिखा था SH बिहारी ने और उसे संगीत से संवारा था OP नैयर ने, आवाज दिया था मोहम्मद रफी और आशा भोंसले ने।

दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए हम आ पहुंचे हैं आज की रजनीगंधा की सातवीं पादान पर, और इस पादान पर आपको सुनाएंगे 1968 में आई फिल्म कहीं दिन कहीं रात से उस गीत को, जिसे पर्दे पर साकार किया था विश्वजीत चटर्जी और सपना ने, तो आवाज का जादू बिखेरा था महेंद्र कपूर और आशा भोंसले ने। गतकार थे एस एच बिहारी और संगीतकार ओ पी नैयर।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम रजनीगंधा, और मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी सैकत चैटर्जी। साथियों, अब हम पहुंच चुके हैं रजनीगंधा की 8वीं पादान पर, और यहां आपका इंतजार कर रहे हैं फिर से एक बार विश्वजीत। दोस्तों, यूं तो विश्वजीत बहुत ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया था, पर उनके हिस्से में कई सुपरहिट गीत आए थे। तो आइए हम आज की 8वीं पादान पर आपको सुनाते हैं विश्वजीत और शर्मिला टैगोर अभिनीत फिल्म ये रात फिर नहीं आएगी से उस गीत को, जिसे लिखा था SH बिहारी ने और संगीत दिया था OP नैयर ने। आवाज है महेंद्र कपूर की।

दोस्तों, रजनीगंधा आहिस्ता आहिस्ता पहुंच चुकी है अपनी पूरी शबाब पर और इधर रात भी गहराती जा रही है। ठंड इस रात को अपने आगोश में लेने को बेताब है। ठंड हवा के झोंके लहरा रही है उनके आसपास, जो अभी भी किसी न किसी काम से घर के बाहर हैं। तो आइए, ऐसे में हम रजनीगंधा की नवी पादान पर घर से बाहर जो है उनको सुनाते हैं यह प्यारा सा गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म दो बदन से। स्टार कास्ट है मनोज कुमार, आशा फारिख, आवाज है आशा भोसले की, गीतकार है शकील बदायुनी और संगीतकार है रवि।

रजनीगंधा के दसवीं पादान पर आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं 1970 में आई राजकुमार की सुपरहिट फिल्म हीर रांझा से उस गीत को जिसे आवाज दिया है लता मंगेशकर ने। गतकार हैं कैफी आजमी और संगीतकार हैं मदन मोहन।

दोस्तों 1970 में एक फिल्म आई थी आन मिलो सजना। स्टार कास्ट थे आशा पारेख, राजेश खन्ना और विनोद खन्ना। इस फिल्म के सभी गाने हिट साबित हुए थे। रजनीगंधा

ये 11वीं पादान पर अब हम सुनेंगे इस फिल्म के उस गीत को जिसे आवाज दिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा और हम आ पहुंचे हैं इसकी 12वीं पादान पर। इसके बाद हम रजनीगंधा से विदा लेंगे, पर दिल है कि मानता नहीं और इस सुरों के सफर से जाने का मन नहीं करता, पर जाना तो होगा। तो आइए इस सफर को यादगार बनाते हुए हम सुनते हैं फिल्म मेरे सनम से आशा भोसले के गाए उस गीत को, जिसके कथकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं ओपी नैयर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना

0: देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जाँच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOC के नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the Upper House, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 today.

ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र FM के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 11:10 हो गए हैं। समाप्त होती है हमारी आज की सायंकालीन सभा। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।